0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: और सारी दुनिया सीधी बात है कि वो बुराई की तरफ जाएगी, तकरीर सुनने के लिए कौन आए। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि मैंने आपको तकलीफ भी दी और कुछ लोग भी नहीं आएंगे। बस यही है कि आप इशा की नमाज वहां मस्जिद में पढ़ा दें और उसके बाद दुआ फरमा दें, बस। आप तो तशरीफ ले आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन जब आदमी ही कोई ना हो तो बंदा आखिर तकरीर किसको करे, और मस्जिद में वो दो चार आदमी जो होंगे वो तो पहले से आपके मुतकरीन में है, हमेशा दर्स सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं। बस हम कहा ठीक, मस्जिद में तशरीफ ले गए, इशा की नमाज पढ़ी। तो बाकी ठीक सी बात थी कि वहां यानी ज्यादा से ज्यादा 10 आदमियों के बजाय 20 आदमी हो गए। जब सलाम फेर के सुन्नतें वगैरह पढ़नी और दुआ का वक्त आया तो वाले साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, 10 हूं या 20 हूं, आप आए तो हैं, अल्लाह के नबी तो एक एक आदमी को जाके कुरान सुनाते थे, मेरे सामने तो कम से कम 20 आदमी बैठे हैं। तो अल्लाह ने वाले साहब को बड़ी आवाज दी थी माशाल्लाह। तो उन्होंने जब कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया तो एक गाने वाली जो थी वो गा रही थी, तो उसके कान में आवाज पड़ी। तो उसने लोगों से पूछा कि ये क्या आवाज है। उन्होंने कहा एक आलिम है और वहां भी तकरीर है, मौली शौली मुल्ला शुल्ला किस्म का आदमी है, कुरान पढ़ा है। उसने कहा कि मैं तो कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती, आप लोग जहन्नम जा सकते हैं, तो क्या है? मैं तो अल्लाह के कुरान का मुकाबला नहीं। और उसने कहा कि देखे नहीं, मुझे पैसे दें या न, गाना बंद, जब तक अल्लाह का कुरान पढ़ा जाएगा और तकरीर होगी मैं नहीं गाऊं किसी भी शक्ल। अल्लाह के कुरान के मुकाबले पे शैतान का काम। और उसके बाद फिर वो बाकायदा वहां से मजलिस

कि बीबी मरियम जब अलहदा बैठी थी, देखा कि कोई बंदा आ रहा है, तो बीबी साहबा ने कहा कि मैं अपने अल्लाह के नाम पे, उस रहमान के नाम से पनाह पकड़ती हूं, तुम अल्लाह से डरने वाले हो तो मेरे करीब बताओ कि मैं एक औरत हूं, तुम जवान हो, इधर कैसे आ रहे। तो अब सैयदना जिब्रील ने फरमाया कि इन्नमा अना रसूल रब्बिक, बीबी मरियम क्यों घबराती हो, मैं कोई बंदा नहीं, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ कासिद हूं। ले अहबला के गुलामन ज़किया, और मैं तुम्हें खुशखबरी देने आया हूं कि अल्लाह तुम्हें बहुत पाकीजा बच्चा देंगे। बीबी कहने लगी कमाल की बात करते हो, कैसे हो पाकीजा बच्चा, मुझे बच्चा दे। कालत अन्ना यकून ली गुलाम फलम यमससनी बशर फलम अकुबगिया। बीबी मरियम ने कहा क्या कहते हो आने वाले, मुझे कैसे बच्चा होगा, मुझे तो आज तक किसी इंसान ने छुआ भी नहीं। ये है सिफत, ये है इफ्फत, ये है कमाल। याद रखो मेरे अजीज कि औरत का हुस्न जमाल जो है उसकी इफ्फत व हया। जब औरत का हया चला जाए वो हुस्न नहीं बाकी रहता, वो जमाल नहीं बाकी रहता, वो कमाल नहीं बाकी रहता, वो मासूमियत नहीं बाकी रहती। असल जो औरत के लिए अल्लाह ने ब्यूटी बनाई है ना, वो उसकी इज्जत है, उसका असमत है। कि अब देखें कि सबसे पहली बात जो बीबी मरियम कहती है, जिब्रील से मुखातब है, कहती है क्या कर रहे हो, लमियम ससनी बशरन, मुझे तो किसी बंदे ने हाथ तक नहीं लगाया। और अल्लाह ने जो बीबी मरियम की कुरान में तारीफ की है, अल्लाह ने जो कुरान में बीबी मरियम की सिफत बयान की है, यानी आप सूरत तहरीम उठा के देखें तो क्या है, व मरियम अबनत इमरान अल्लदी अहसनत फरजहा फनफखना फीहि मिन रूहिना। अल्लाह फरमाते हैं कि बीबी मरियम इमरान की बेटी, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, यानी सबसे बड़ी वस्फ जो अल्लाह ने, ये नहीं कहा कि वो खूबसूरत थी, ये नहीं कहा वो पढ़ी लिखी थी, ये नहीं कहा कि बड़ी रोजे रखने वाली थी, बल्कि कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपने नफ्स की हिफाजत की थी। कि जिना तो जिना, किसी के साथ निकाह भी नहीं हुआ था, उसे तो किसी गैर मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया। इसी तरह अल्लाह पाक ने जो कुरान में फरमाया है, आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान में फरमाते हैं कि हमने बहूरुन इन का अम्साल लुलुइल मकनून। अल्लाह फरमाते हैं हमने जन्नत में जो हूरें रखी हैं, बड़ी बड़ी आंखों वालियां, और ऐसे हैं जैसे मोती सदफ में छुपा होता है, जिसको किसी ने हाथ ना लगाया हो। और आगे कुरान फिर बस बयान करता है कि लम यतमिसुन इंसुन कबलहुम वला जान, कि वो हूरें ऐसी पाक होंगी कि मेरे जन्नत वाले शख्स जिसको वो मिलेंगी

जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा बीबी मरियम गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, ये तो तेरे रब का फैसला है और तेरे अल्लाह को बगैर तेरी शादी के बगैर किसी चीज के बच्चा पैदा करना मुश्किल नहीं, बड़ा आसान है। और अल्लाह तो चाहते हैं कि उसको एक निशानी बनाए अपनी कुदरत की, कि कोई ये ना कहे कि अल्लाह बना तो सकता है लेकिन जब तक मियां बीवी ना हूं वो भी नहीं बना सकता। अल्लाह चाहते हैं कि मैं अपनी कुदरत के तमाम नमूने दिखा दूं, मैं चाहूं तो नूर से मलाइका पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो नार से जिन पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो मिट्टी से आदम पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो आदम से हव्वा पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो मरियम से ईसा पैदा कर दूं, यखलुकु मा यशा, मेरी मर्जी में जो चाहूं जैसे चाहूं। यही तो उसकी शान। अच्छा जी, उन्होंने कहा कमाल है तो ठीक है। और ने कहा बीबी तुम बात कहो ना कहो, का ना अमरम मकजिया, ये तो अल्लाह की तकदीर का फैसला हो चुका है, अब वो तब्दील थोड़ा होता है। अब जनाब यानी हमल भी हो गया, बदा अमल भी हो गई, अब बच्ची बिचारी बैठी रो, या लैतनी मित्तु कबला हाजा व कुंतु नसियम मनसिया, रो रही है फिर भी, हालांकि जिब्रील बातें करके गए, कहती है हाय काश मैं तो पैदा ही ना हुई होती, कम से कम चलो ठीक है मैं बेगुनाह हूं, मेरा दामन साफ है, लेकिन कौम तो नहीं जानती ना। जिब्रील की बात हुई तो मेरे साथ हुई है, पूरी बिरादरी के साथ तो नहीं हुई ना, बिरादरी मुझे जब आएगी तो मैं कैसे मुकाबला करूंगी। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें मुकाबले की जरूरत नहीं है, जब कौम सामने आ जाए तुम चुप करके सिर्फ ईसा की तरफ इशारा कर दो, हम जाने हमारा ईसा अलैहिस्सलाम जाने। कौम आ गई, गुस्से में भरी हुई है, कहती या उख्ता हारून मा कान अबूक इम्रा सौइन वमा कानत उम्मुक बगिया, के भाई हारून की बहन, बाद लोगों ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के जो भाई थे हारून उनकी बहन, ये मुराद नहीं है, बल्कि मुराद ये है कि कान रजुलन सालिहन, उस इलाके में एक बहुत बड़े आबिद गुजार थे, तो उनका नाम हारून था जिसकी तरफ निस्बत की गई। उनने कहा तेरा बाप अच्छा, तेरी माँ अच्छी, ये क्या है? फअशारत इलैही, अब बीबी ने इशारा किया, कालू कैफ नुकल्लिम,

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरानी इस्लाम, मोहतरम भाइयों, अजीज नौजवानों, सीरत पाक के सिलसिले में कुछ अरसे से ये सिलसिला दुरूस जारी है और हमने सीरत मुबारका के कुछ हिस्से, कुछ अहवाल, कुछ हालात पढ़े, बयान किए और सुने। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का की सरजमीन तंग हो गई तो आप ताइफ तशरीफ ले गए। ताइफ वालों ने भी इस्तकबाल के बजाय बड़ा शदीद रद्द अमल जाहिर किया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक को जख्मी किया। सुफहाए ताइफ ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आवाजें कसे, आपके पांव मुबारक खून से भर गए। उसी आलम में फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस सरजमीन हरम मक्का मुकर्रमा को लौटे तो आपके लिए ये दिन जो थे बड़े शदीद हुमूम और गुमूम के दिन। एक तरफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह परेशानियों का और दुखों का आलम था, आमुल हुज़्न था। मुआविनीन वफात कर गए, मुसाइदीन के पास इतनी कुव्वत और ताकत नहीं कि वह दुश्मनों का मुकाबला कर सकें और अल्लाह के नबी अल्लाह की दावत के लिए हर वक्त बेचैन हैं। अल्लाह की कुदरत अपने फैसले फरमा रही थी कि अल्लाह ने एक फैसला फरमाया कि अपने नबी के लिए इसरा और मेराज, ताकि एक तो हुजूर की शान में और ज्यादा बुलंदी हो, दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्मीनान कल्ब हासिल हो और आपके गमों का बदावा हो और पूरे आलम पर ये चीजें जो हैं जब आश्कारा होंगी तो फिर उन्हें शान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म होगा। और साथ एक गुना तसल्ली थी कि मेरा मदनी, सिर्फ मक्का और ताइफ से आप घबरा रहे हैं कि ये आपका साथ नहीं दे रहे, हम तो पूरी दुनिया को, आसमान को भी आपके मुसख़र करने वाले, ये तो छोटे से शहर है। तो अल्लाह की तकदीर ने आपके इसरा और मेराज का फैसला। अब ये बात याद रखें कि आमतौर पर हमारे यहाँ इंडो पाक में लफ्ज़ मेराज ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफर मुबारक जो है इसके दो हिस्से, एक हिस्सा जो है वो इसरा है और एक हिस्सा मुबारक जो है वो मेराज है। इसरा का माना होता है सैर, और खास तौर पर वो सैर जो रात के किसी हिस्से में की जाए उसको कहते हैं इसरा। क्योंकि अरब में मुहावरात, अरब में कुछ कलिमात ऐसे होते हैं जो किसी खास वक्त के साथ ताल्लुक रखते हैं, वरना सैर का लफ्ज तो सैर है, लेकिन जब अरबी में इसरा का लफ्ज सैर के माने में, माना यह होता है कि रात की तारीकी में या रात के किसी हिस्से में जो सफर किया जाए उस पर सैर का इतलाक। इसी तरह पूरे कुरान मुकद्दस में आप नजर डालेंगे तो जहां जहां आपको लफ्ज इसरा मिलेगा, जैसे यहां पर मैं

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: तो उन्होंने एक बात का अफसाना कर, भाई अगर काबे के अंदर पैदा होना दलील खिलाफत है तो काबे के अंदर तो मोहम्मद मुस्तफा भी पैदा नहीं हुए, फिर वो नबी कैसे बन गए? ये क्या बात हुई? ये कोई दलील है कि जो काबे के अंदर पैदा हो जाए सिर्फ वही खलीफा बन सकता है? तो नबुव्वत तो खिलाफत से बदरजा आला चीज है, तो फिर अल्लाह के नबी तो काबे के अंदर पैदा नहीं हुए, वो कैसे नबी बन गए? तो असल वजह क्या थी कि किताबों में तो इतनी लफ्ज था कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत खाना काबा में हुई। अब उसका तर्जमा इन्होंने ये किया कि काबा शरीफ के अंदर हुई, हालांकि मुराद ये था कि हद्दे हरम में हुई। अब उसी को आप देखें कुरान में कि अगर हजूर बीबी उम्मे हानी के घर में थे तो वो भी हरम मस्जिद अल हराम, अगर हुजूर हतीम में थे वो भी मस्जिद अल हराम, अगर हुजूर जमजम के कुएं के पास थे वो भी मस्जिद अल हराम। कुरान ने तो एक लफ्ज बोल के सारे अकवाल को जमा कर दिया कि ज्यादा बहस की तुम्हें क्या जरूरत है, हुजूर हरम में थे बस मस्जिद अल हराम में थे, बैत उम्मे हानी में हूं तब भी मस्जिद अल हराम है, दार अरकम में हूं तब भी मस्जिद अल हराम है, इंद बेरे जमजम हूं तब भी मस्जिद अल हराम है, और दाखिल अल हतीम हूं तब भी मस्जिद अल हराम है। कुरान तो एक ऐसी क्या में बात करता है कि जिसके अंदर फिर किसी सोच की, किसी बहस की, किसी अकली मुशगाफियों की बात की जरूरत ही नहीं रहती। पर मैं

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, मोहतरम भाइयों, दोस्तों, अजीज नौजवानों, हमने अपने इन दुरूस के सिलसिले में जो सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअल्लिक हैं बात पहुंची थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरा और मेराज तक, और ये बात अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ ली, समझ ली कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज मुबारक जो है और इसरा जो है वो आपके रूह माल जसद के साथ और बहालत बेदारी, यानी ये ख्वाब का वाकया नहीं, ना ये कोई रूहानी मेराज है, बल्कि ये हकीकतन जिस्मानी मेराज है और आपका सफर मुबारक जो है वो रूह माल जसद है, मक्का से बैतुल मक़द्दस तक और बैतुल मक़द्दस से आसमानों तक। इसी पर जमहूर सहाबा हैं, इसी पर जमहूर ताबईन हैं, मुहद्दिसीन हैं, अइम्मा फुकहा हैं, उलमा हैं, औलिया अल्लाह हैं, जमहूर की राय जो है वो यही है। बाकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज मुतअद्दद मरतबा हुए हैं, कभी ख्वाब में, कभी रूहानी तौर पे, उससे किसी को इनकार नहीं। लेकिन ये वाकया है मेराज

ऐलान कर रहे हैं और रोज़े क़यामत पर यकीन का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार नहीं कर रहे। ये उस दौर के यहूदियों का रवैया था। और ये कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार ना किया जाए, किसी भी बात का यकीन कोई मानी नहीं रखता। सूरत अल-बकर की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इनके दिलों में कुफर का मर्ज था, खुदा ने इनका मर्ज और ज़्यादा कर दिया और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। सामईन मोहतरम, इस आयत से ज़ाहिर होता है कि झूठ बोलना कोई छोटा मोटा मामूली गुनाह नहीं है, बल्कि झूठ वो गुनाह अजीम है जो एक मोमन को मुनाफिक बना देता है। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह हज की आयत नंबर 30 में झूठ का बुत परस्ती के साथ जिक्र फरमाते हैं। इरशाद होता है कि अपने आप को बुत परस्ती और झूठ बोलने से बचाओ। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में मजीद फरमाता है, सूरतुल बकर की आयत नंबर 11 और 12 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना डालो तो कहते हैं हम तो इसलाह करने वाले हैं। देखो ये बिलाशुबा मुफसद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल बकर की आयत नंबर 13 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए हैं तुम भी ईमान ले आओ, तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ़ ईमान ले आए हैं इसी तरह हम भी ईमान ले आएँ। सुन लो कि यही बेवकूफ़ हैं लेकिन ये नहीं जानते। मोहतरम सामईन, ईमान की कसौटी ये है और काबिल कबूल ईमान सिर्फ़ वो है जो कि सहाबा कराम की तरह का हो। गौर फरमाइए कि सहाबा कराम की कितनी इज़्ज़त अफजाई है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की एक और किस्म इस तरह बयान फरमाई, सूरतुल बकर की आयत नंबर 14, 15 और 16 का तर्जमा, और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो इनसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं और हम तो उनसे हंसी किया करते हैं। ये मुनाफिकों से खुदा हंसी करता है और इन्हें मोहलत दिया जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत छोड़कर गुमराही खरीदी, तो ना तो इनकी तजारत ही ने कुछ नफ़ा दिया और ना ही वो हिदायत याब हुए। बस अल्लाह ताला मुनाफिकीन को मोहलत दे रहा है कि वो मुनाफ़कत से बाज आ जाएं, और इसने इन्हें मोमिनीन की दुश्मनी के अंधेरे में भटकता हुआ छोड़ दिया है। ये लोग वो हैं जो हदायत के बदले गुमराही खरीद रहे हैं और ये सिर्फ़ नुकसान का सौदा है। इसके बरक्स आइए देखिए कि अल्लाह ताला मोमन मर्दों और मोमन औरतों के बारे में कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 12 का तर्जमा है कि जिस दिन तुम मोमन मर्दों और मोमन औरतों को देखोगे कि इनके ईमान का नूर इनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है, तो इनसे कहा जाएगा कि तुमको बशारत हो कि तुम्हारे लिए आज बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और इनमें हमेशा रहोगे, और यही बड़ी कामयाबी है। मोहतरम सामईन, यहाँ कई बातों की वजाहत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि मोमन मर्दों और मोमन औरतों के अजर यकसा हैं। रोशनी उनके दाहिनी तरफ होगी, यानी इनका आमाल नामा इनके सीधे हाथ में दिया जाएगा, और रोशनी या नूर का सामने होना तो यूँ भी सही मालूम होता है कि जब हम तारीकी में रास्ता तय कर रहे होते हैं तो नूर या रोशनी अमूमन हमारे सामने होती है ताकि हमें रास्ता साफ नज़र आए। नूर या रोशनी का मोमन मर्दों और मोमन औरतों के आगे या सामने होने का मतलब ये है कि इन्हें उनके अच्छे कामों यानी दुनिया में नेकियों और तकवा इख्तियार करने का इनाम दिया जा रहा है। इस एक नुक्ता की वजाहत के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस का हवाला दिया जा सकता है। मसलन हज़रत उन्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जो रात की तारीकी में मस्जिदों में इबादत के लिए जाते हैं, क़यामत में उनके लिए एक ख़ास किस्म का नूर होगा। इबन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि फरमाया रसूलुल्लाह ने कि जो लोग 5 वक़्त नमाज बा जमात खुशू व खुजू के साथ अदा करते हैं उनको क़यामत के दिन एक ख़ास नूर अता किया जाएगा। जो लोग नमाज के सिलसिला में इसके बरअक्स होंगे उनका हशर कारून हमान और फिर उनके साथ किया जाएगा। अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई जुमा के रोज़ बाकायदगी से सूरत कहफ़ की तलावत करेगा क़यामत के दिन उसको एक नूर अता किया जाएगा जो उसके कदमों से शुरू होकर आसमान की बुलंदियों तक जाएगा। इसी तरह हज़रत अबू हरारा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुरान हकीम की एक आयत ही तलावत की उसको कुरान के इसको क़यामत के दिन एक नूर अता किया जाएगा।
حضرت ابو

बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रेवल करेंगे, सफर करेंगे, तो मैं आपको अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि मैं गवर्नमेंट के जो असूल है उसकी तरफ से आपको बता रहा हूँ जो कानून है। एक, अगर आप पेंशनर हैं, 40 पेंशनर हैं, बिफोर टाइम पेंशन आपने ली हुई है, तो आप अपने उड पे ट्रेलिंग डेनमार्क को जो है, जो आपका पेंशन का आधार है वो सब का है, उसको कहते हैं उड पे ट्रेलिंग डेनमार्क, आप उनको जरूर इन्फॉर्म करें। वो आपको एक, जब आप उनको डेट लिखाएंगे कि हम इस डेट से इस डेट के लिए हम फलानी जगह सफर करके जा रहे हैं, तो वो आपको ई बॉक्स में आपकी छुट्टियों का जो है ऑफिशियल वो भेज देंगे कि इस बंदे, ये बंदा जो है ये ऑफिशियल छुट्टियां गुजारने के लिए जा रहा है। उसके ऊपर मुल्क का नाम नहीं लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा होगा, लेकिन वो आपको ये बताएंगे कि आपको कितना अरसा तक बाहर रहने की, इस मुल्क से बाहर रहने की इजाजत है और किस तरीके से। एक पेंशनर जो है जब वो बता के जाता है, जैसे मैं फुल पेंशनर हूं, तो मुझे उन्होंने लिख के भेजा था, मैंने उनको कहा था कि मैं 1 माह के लिए जा रहा हूं, तो उन्होंने मुझे लिख के भेजा था कि तुम्हें 6 माह तक बाहर रहने की इजाजत है विद पेंशन, यहाँ की पेंशन, लेकिन उसके बाद अगर कोई ऐसा मसला हो जाता है तो वो उड पे ट्रेनिंग डेनमार्क को फिर बताना पड़ेगा और उसका फैसला वो करेंगे। और ये छुट्टियां जो है ये आपके लिए लीगल है, आपके पास एक बवीस आ जाता है अगर आपको कम्यून पूछती है या कोई पूछता है। इसके अलावा आप जो है बॉ सर्विस, जो आपके लोकल बॉ सर्विस है, आप उसको मेल कर दे, टेलीफोन कर दे। आप ये ना कहेंगे कि मैंने फ्राइडे नाइट को सफर किया तो कम्यून बंद थी, या सैटरडे या संडे को किया तो कम्यून बंद थी, नहीं, आप उनको मेल कर सकते हैं, आप उनको टेलीफोन कर सकते हैं, अगर वो टेलीफोन टाइम है तो वो सुनेंगे, नहीं तो मेल पे आप उनको मैसेज कर दें। तो क्योंकि जिस अदारे से आप पैसे ले रहे हैं उनको तो उड पे ट्रेनिंग डेनमार्क को तो पता है कि आप राइज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सर्विस को भी आप बता के जाएं। इसी तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप काम से छुट्टियों पे जा रहे हैं, ये याद रखें कि छुट्टियां तो आपका लीगल हक है, लेकिन आपका ये लीगल हक है कि जब आप इस मुल्क के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तो वहां पे प्रोटेक्शन देनी, वहां पे कानूनी तौर पे आपकी मदद करना इस गवर्नमेंट का, इस मुल्क का फर्ज है। आपके पास येलो कार्ड हो, आपके पास परमानेंट अपॉर्चुनिटी लेटर हो, लेकिन आपके पास अगर खुदा ना हासा नेशनलिटी है, मेक नो डिफरेंस, आपने अपने जो आपकी बॉस सर्विस है उसको आपने इन्फॉर्म करना है कि हम छुट्टियों में कहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वहां पे जाकर आपसे कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी चीज हो जाती है, आप बीमार हो जाते हैं, तो वो आपकी पूरी एम्बेसीज वहां की और गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क जो है वो आपकी मदद करते हैं। ये लीगलाइज चीजें हैं और ये आपको करते हैं। अब पाकिस्तान जो है वहां पे राइजे फसिकिंग जो है वो कवर नहीं करती, वो राइजे फसिकिंग इसलिए कवर नहीं करती कि आपका पूरा पाकिस्तान जो है वो रेड जोन और ऑरेंज जोन के अंदर है, और ये इस वजह से है कि कैटेगरी 5 उस पर लागू होती है। हालांकि ग्रे ग्रे जोन से पाकिस्तान निकल चुका है, और ग्रे जोन से निकलने के बाद ये हमारी एम्बेसीज और हमारे यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन थी इनकी वजह से यहाँ पे ये केस पुट अप नहीं हुआ, और इंशाल्लाह ताला इस पे आवाज उठाई जा रही है, कम्युनिटी के चेयरमैन भी हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये आगे लेके जाएंगे। लेकिन आप अपनी छुट्टियों पे अपनी इतला करके जाए ताकि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम किसी मुल्क में आ जाती है, एग्जाम्पल आप पाकिस्तान चले जाते हैं, आप बता कर नहीं जाते और वहां पे आपको फ्लाइट्स नहीं मिलती, मिडिल ईस्ट की वॉर की वजह से आपको फ्लाइट्स नहीं मिलती, आप काम पे नहीं आ सकते, आप फंस गए हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है डेनमार्क के अंदर। लिहाजा जब आप बताकर जाएंगे तो डेनमार्क से वहां जाने पे ये गवर्नमेंट जो है, एम्बेसी जो है, वो आपकी फुली मदद करेगी, बजाय आप वहां जाके ऑल फॉर बके और ये कह दियो जी स्कूल मुझे तो समझ नहीं।

0: न्याय में कानूनी, हम आपको बता रहे हैं और इस प्रोग्राम में आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे लीगल बताकर जाना आपका राइट्स है, आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। और अगर आप कम्यून से सोशल ले रहे हैं या आप ऑफिस लू से, फिर भी आपका राइट है कि आप छुट्टियां ले सकते हैं और आप उनको बताएं, वो आपको छुट्टियां देंगे और उन छुट्टियों में आपको बकायदा पैसे मिलेंगे। जी राजा साहब।
1: शाह साहब आपने तो सारी मालूमात दे दी। तो शाह साहब ये जो हमारे सिटी काउंसिलर साहिबान होते हैं जिस जिस कम्यून में बैठे होते हैं, मैं कोपेनहेगन की बात करूंगा, फ्रेडस्पिया की बात करूंगा, तो ये लोग क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन देते जब ये इलेक्शन आते हैं? तो ये माशाल्लाह सारे एक्टिव होते हैं, सब जो पाकिस्तानी नसाद जो डैनिश भी हैं और उनके पास परमानेंट अपर छलाल सा भी है, ये सारे लोग ग्रुपों में तकसीम हो जाते हैं, क्या बात है शाह जी?
0: राया साहब अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए, आप रेडियो पे ले लेते हैं हम लोगों को आपके थ्रू, आप हमें मुझे कहते हैं और हम एक दो बंदे हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन भी हैं, लेकिन अगर लोग सुनना नहीं चाहते, लोग सवाल जवाब नहीं करते, लोग आपको लिखते नहीं है कि हमें ये कानून के हमारी रहनमाई फरमाए, तो यहाँ पे इतने ज्यादा फैसिलिटीज हैं इस मुल्क के अंदर कि जिनको हम एंजॉय कर सकते हैं, जिनको हम सही मायने में उनको लेके चल सकते हैं। बाकी रहा ये काउंसलर्स और ये जो ये लोग एक पोस्टर हैं, ये बस आते हैं कि हमें हमें हमारी तस्वीर आ गई, हमारा पोस्टर लग गया कि हम काउंसलर बन के हमें हम जी बहुत हायर एजुकेटेड हैं। हमने ठीक है जी, आपको मुबारक हो, आप बहुत हायर एजुकेटेड हैं, मेक नो डिफरेंट, अच्छी बात है आप और हायर एजुकेटेड हो, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये लोगों को आकर आप खुद दें कि आपकी कम्यूनों के, क्योंकि हम बारहा पिछले 8-9 साल से आपके रेडियो पे ये बकायदा बता रहे हैं लोगों को कि हर कम्यून के अपने अपने जो अवाम है आप जो उस इलाके में रहती है उसके लिए डिफरेंट कानून है, उसके लिए डिफरेंट चीजें बनाई हुई है और आप उनको कैसे चलाते हैं, फिर ये इनका काम है आकर बताना। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स है कम्यून के अंदर और आपकी रसाई वहां तक नहीं हो सकती, तो फिर आप इन काउंसलर से बात कर सकते हैं कि भाई प्लीज आप हमारी मदद करें। अब काउंसलर जो हैं वो अपना काम करते हैं, प्राइवेट जो जॉब वगैरह करते हैं, उसके बाद वो जाते हैं 5-10 मिनट के लिए कोई प्रोग्राम, कोई अगर कोई इनकी अपनी जो छोटी सी पार्लियामेंट होती है उसके अंदर कोई बहस मुबासा, तो ये खुद पूरी वो चीजें पढ़ के नहीं गए होते, वो बजट को इनको पता नहीं होता, ये जाते हैं और मुंह उठा के आ जाते हैं, कहते जी हमने बस ये हाँ हाँ कर दी। तो हालांकि जो पार्टी के चुने हुए लोग होते हैं वहां पे बोलते हैं और ये बस साइन करके आ जाते हैं, तो ये आवाम को क्या बताएंगे, ये तो फोटो सेशन के लिए आते हैं और फोटो सेशन कराते हैं।
1: एनवायरमेंट होती है कि अगर आपने यहाँ डेनमार्क की सियासत ही नहीं करनी, लोकल जो सियासत होती है बड़ी पावरफुल सियासत होती है, यहीं लोकल जो है लीडर बनते हैं, यहीं से पार्टियां टिकट देती हैं, लेकिन जब हमारा इंटरेस्ट इस तरह का ना हो, हमारा इंटरेस्ट जो है पीछे की तरफ हो, तो हम जो है वो ऐसे लोग आ जाते हैं, वो उन्हें जाहिर है कि एक जगह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, खाना मुफ्त होता है, तो शाह साहब इससे तो बड़ी कोई अय्याशी नहीं है, जबकि हमारे बच्चे यहाँ हैं, इन्हें यहाँ पढ़ते हैं, इन स्कूलों में जाते हैं, यहाँ टैक्स देते हैं, इन्हें तो यहाँ की सियासत की तरफ तो जो देनी चाहिए।
0: राजा साहब आपका सवाल बड़ा रेलिवेंट है, इन सियासतदानों को मैं क्या करूं, मैं तो इनको दावत देता हूं आओ मेरा सर पाड़ो, मुझे मारो ताकि मैं बोलना छोड़ दूं, मेरे दांत दारा तोड़ो ताकि मैं बोलना छोड़ दूं, मैं बूढ़ा आदमी हो गया, मुझे समझ आए कि अब जवान लोग मुझे मार। देखिए पिछले 25-30 साल से जब से इनवादा के जो कानून जो है सख्त हुए उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि हजारों के हिसाब से लोग जो हैं वो विद फैमिली जो हैं वो ग्रीन कार्ड पे डॉक्टर्स इंजीनियर्स की और बड़े बड़े साइंटिस्ट की शक्ल में वो डेनमार्क में आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं ना हम अपने किसी रिश्तेदार को बुला सकते हैं, ब्लड रिलेशन को यहाँ बुला सकते हैं डेनमार्क के अंदर विजिट करने के लिए, ना ही हम अपने बच्चों की शादियां जो है वो अपनी मर्जी से वहां पे कर सकते हैं। ये जो ब्लडर कर रहे हैं इसकी इसकी वजूहात जो है ये हमारे काउंसलर हजरात हैं, क्योंकि हम इनको वोट देते हैं और ये कहते हैं जी हमारी बिरादरी। हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि यहाँ पे मुसलमान फिरकों में बटे हुए हैं, मसाजिद जो है वो फिरकों की अलामत होती है, और उसके अलावा यहाँ पे बिरादरी इज्म जो है वो बड़ा स्ट्रांग है, और गांव के अंदर और जी ये फलाने पिरदा अस्तफार अल्लाह ताला मुझे माफी दे, मैं अल्लाह ताला से माजरत करता हूँ और माफी मांगता हूँ और उन लोगों से माजरत करता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं कि ये फलाना कमी है, फलाना ये फलाने पिंड है, ये फलाना फलाने के मैं बड़ा बड़ा चौधरी हूँ, पीछे चौधरी साहब के पास उस वक्त मंजी बिस्तरा ही ना होता हो, लेकिन पैसा जब आ जाता है तो फिर सब चौधरी बन जाते हैं। तो बात असल में यह है कि हमें यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का ख्याल करना चाहिए। इस्लाम में सबसे बड़ी इस्लामी तलीमात में यह है कि हम सब बराबर हैं और सब कलमा गो हैं, हमें किसी का ये
1: क्या
0: काम नहीं
1: गाइडलाइन
0: देखना
1: देते
0: चाहिए।
1: हैं, यहाँ तालीम मुफ्त है, हर चीज जो है वो पढ़ने यूनिवर्सिटी तक की तालीम मुफ्त है, तो किस तरह बच्चों को जो है, बच्चे पढ़ते भी हैं जाते हैं इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा नाम है बच्चों का, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, गो के किसी भी महकमे में चले जाएं, हमारे बच्चे बड़े काबुल हैं, गैर मुल्की बच्चे बड़े काबुल हैं। शाह साहब कौन सी गाइडलाइन दी जाए कि जब 70-71 वाले लोग आज वही कुछ बुराना चाहते हैं जो 70-71 में आए थे, हमारी तरह बनो।
0: जब तक हम अपने कलमा को भाई को अपने बराबर का स्टेटस नहीं देंगे, ये सबसे बड़ी गाइडलाइन है। जब तक हम किसी को कमी और ये कह ये फलानी नस्ल का ये फलानी नस्ल का, जब तक हम इस चीज में ठीक है, अगर कोई बंदा शराबी है, नशा करता है, उसके अंदर कोई बुराई है तो एक वो अकेला सब्जेक्ट है, उस पर आप दूर है, एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई काम कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, या कोई पीछे कोई बेचारा जूतियां सी रहा था या कपड़े सी रहा था, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो दर्जी है या क्या था या नाई था, उसको इसके पेशे पे मत जाएं। ये देखिए कि उसके अंदर खानदान कौन सा है, उसका खून क्या है, उसके दूसरे लोग क्या करते हैं। आप ये असाब लगाएं कि मैंने खुद लोगों को देखा है गुजरात शहर के अंदर, जिस मोहल्ले से मैं आया हूँ वहां के बहुत बड़े लोग ऐसे थे जो कि टूटे हुए मकानों में रहते थे, लेकिन बाद में उनके बच्चों ने एजुकेशन हासिल की और उन्होंने टॉप में पाकिस्तान के वो लोगों में शामिल हुए। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को देखा जो मेरी क्लास में मेरे साथ पढ़ते थे, उनमें से मेजोरिटी जो है उन्होंने बड़ी बड़ी जॉबें की। तो कभी किसी की ये नहीं देखना चाहिए कि क्या था, मेरा बाप जो था मेरा बाप था, मेरा दादा जो था वो उनकी अपनी पोजीशन थी, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ के मैंने क्या किया, मैंने डेनमार्क के अंदर सारी उम्र टैक्सी चलाई और सियासत की और लोगों से बातें की।
1: तो क्या इसका मतलब आपको बहुत तजुर्बा है, ये जो टैक्सी के मामला था, लोग बड़े खुश हैं, उनको जो नया नई टैक्सी ब्रांच चली है खुली है तो लोग परमानेंट जॉब करते हैं, महीने के महीने उनको तनख्वाह आ जाती है, अगर खुद भी माल अपनी टैक्सी है तो फिर भी वो अपनी 2-3 घंटे चला लेते हैं, तो शाह साहब ये जॉब अच्छी नहीं है?
0: ये बिल्कुल जॉब करना ये बिल्कुल सही है। मैं आपको ये बता दूं कि अब क्रिसमस के बाद, दिसंबर के बाद, जनवरी फरवरी सबको पता है कि ये वर्ष सबसे बुरे तीन महीने होते हैं एक कैब ड्राइवर के लिए, एक लोगों के पास, क्योंकि दिसंबर का महीना वो क्रिसमस मनाने के लिए और न्यू ईयर मनाने के लिए वो इंतहा से ज्यादा अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम होती है उसको यूज कर चुके हैं, उसको इस्तेमाल कर चुके होते हैं। तो फिर लोग जो है वो इन पे सफर नहीं करते, कोई मजबूरी के आलम में हो तो वो सफर करता है, तो वहां पे इनकम जो है कम हो जाती है और ये अपने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो नई टैक्सी आई है, जो नया सिलसिला शुरू हुआ है कि आप 29-30 हजार आपको वेज मिल रही है उसमें से आप टैक्स दें, और फिर आपको कंपनी जो है वो आपको एज ए ड्राइवर जो है वो रख रही है और आप गाड़ी चला रहे हैं और आप अपनी जो आपको वो टूर देंगे उस पर आपने टूर लेने हैं, इसमें आपको कोई ये प्रेशराइज नहीं कर रहा, आपको जहनी तौर पे ये नहीं कह रहा कि आज पूरी दिन में से आपने 1,000 करोड़ बनाया, वो ये तो आप तो आपको तो अपनी तनख्वाह से है और तनख्वाह आपको मिल रही है और आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 7.5 घंटे जो है आपने काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपके जो है वो लंच ब्रेक वगैरह भी सब कुछ है। तो ये चीजें जो है ये ज्यादा महफूज है, इसके अंदर जो है हमारे टैक्सी बिरादरान का सबसे बड़ा खुद कसूर है। जब हमने इनको 2017 में ये कहना शुरू कर दिया था कि खुदा रहा इस चीज को आप आगे लेके ना जाए, इसको यहीं पर स्टॉप कर दे और अपनी वॉनमैन जो है इसको बचाए, लेकिन इन्होंने क्या किया उस वक्त, इन्होंने कहा कि ये जो रेडियो आपकी आवाज है इसके ऊपर शाह साहब बैठ के झूठ बोलते हैं और ये बस ऐसे ही बेकार करते हैं और हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, कोई हमारी वॉनमैनशिप छीन नहीं सकता, हम लोग महफूज हैं, हम लोग महफूज हैं। तो आज ये है कि कोई भी वॉनमैन नहीं है, कोई भी वॉनमैन जो है उसका स्टेटस जो है वो डेनिस जबान के अंदर वो एक आम गाड़ी का मालिक है, आम गाड़ी का जिसको इजाजत दी गई है टैक्सी चलाने की, जिस तरह ऊबर जो है वो इजाजत देती है कि भाई आप जो है आपके पास एक आम गाड़ी है तो आए हम आपको उसको एज ए टैक्सी चलाने की इजाजत देते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने भी ये किया है और ये इसलिए उन्होंने ओपन कर दिया हर चीज और इससे लोगों को।
1: शाह साहब एक बात सुनने में आ रही है, ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है कि मियां मुनीर साहब जो हैं वो फोरमैन रहे टेक्सा ब्रांच के, तो वो सुना है कि वो भी अपनी जो है वो गाड़ी वापस करने जा रहे हैं।
0: जी बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां वापस कर दी हैं और बहुत बहुत सारे लोग जो हैं वो सोच रहे हैं क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि गाड़ी के जो खर्चे हैं 30-35 हज़ार करोड़ का जो खर्चा है मंथली गाड़ी का वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जब आप इतनी मेहनत करें और अपनी अपनी तनख्वाह भी ना निकाल सकते हो तो कोई भी आदमी जो है जो सेंसेबल आदमी है वो इस चीज को नहीं देखेगा। और दूसरा ये चीज है कि आप देखें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लाख की और मिलियन मिलियन करोड़ की गाड़ियां थी, अब उनकी रीसेल वैल्यू कोई नहीं रही क्योंकि यहाँ पे तो अब नई गाड़ियां जो है अब आपने आप देखें कि चाइना ने मैं इसी हफ्ते में गया हुआ था चाइनीज गाड़ियां देख रहे, उन्होंने स्पोर्ट मॉडल और इतनी इतनी खूबसूरत गाड़ियां निकाल दी है जो 3 लाख से शुरू हो रही है इलेक्ट्रॉनिक और 3 लाख से शुरू हो रही है और उनके अंदर हर किस्म की फैसिलिटीज है, हर एक चीज है। तो ये चीजें जो है ये ज्यादा से ज्यादा सस्ती गाड़ियां आ रही है, लाख तक करोड़ में आप गाड़ियां छोटी से छोटी जो है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आप ले सकते हैं। तो ये गाड़ियां जो है अब सड़कों पे आ गई है और लोग अगर लेते हैं गाड़ियां, मेरे अपने बच्चों ने रखी हुई है, तो ये गाड़ी जब पुरानी हो जाती है तो फिर बैटरी जो है जब उसकी गारंटी खत्म हो जाती है तो फिर सबसे महंगी जो चीज है वो 1 लाख से ऊपर की जो बैटरी है वो जो है वो प्रॉब्लम करती है बंदे को, क्योंकि जब आप कारोबारी नहीं करते, आपके पास इतना बड़ा कारोबार नहीं है, आपके पास थोड़ा सा दो 1 लाख करोड़ से ऊपर की रकम जो है वो बैंक आपको कभी भी नहीं देगा अगर आपके पास सरमाया है
1: तो। शासन भाई आपकी गवर्नमेंट मदद नहीं करती, सब्सिडी नहीं देती,
0: कोई मदद नहीं जी। गवर्नमेंट जो है वो वसूल करने के लिए बैठी हुई है, गवर्नमेंट जो है वो आपको चेक में देती है, गवर्नमेंट जो
1: तो
0: है
1: शाह साहब शहर में पार्किंग ही नहीं है, लोग घूमते रहते हैं, जब इतनी गाड़ियां आ गई हैं कोई पाबंदी नहीं है कि आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो कितनी बड़ी लेनी है कितनी छोटी लेनी है, शहर के अंदर स्पीड जो है वो 30-40 तक हो गई है, तो गाड़ी की बड़ी गाड़ी की कोई पाबंदी नहीं, हर गाड़ी का मीटर 220-250 तक चला जाता है, तो शाह साहब ये पाबंदियां क्यों नहीं लगती?
0: देखिए लग रही है सारा कुछ हो रहा है, अब पहले 1 करोड़ की होती थी इनकी वोल्टेज इलेक्ट्रिक गाड़ी की, अब डेली अखबारों में आ रहा है कि 4.5 से जो है 5 तक चली गई है और दिन के मुख्तलिफ औकात में जो बिजली है वो महंगी हो जाती है फिर सस्ती। ये एक एक किस्म की इन्होंने लोगों को बिल्कुल पाकिस्तान की तरह इन्होंने भी ये कर लिया कि कमाई कराने करने का तरीका क्या है, पेट्रोल को महंगा कर दो, इलेक्ट्रिक को महंगा कर दो, कुछ चीजों में आप लोगों को छूट दे दो, फिर दूसरी जगह से आप पैसे पैसे जो है वो गवर्नमेंट अपने ले लेती है। तो ये जो मसाइल है गवर्नमेंट अपने अपने
1: टैक्स का निजाम है, फिर सहूलियात भी मिलती हैं, देख लेना सोशल की सहूलियात होगी, इसी तरह बूढ़ों की सहूलियात होगी, गाड़ियों की सहूलियात होगी, अस्पतालों की सहूलियात होगी, शाह साहब ये तो टैक्स से निजाम चलता है।
0: देखिए जी, टैक्स का निजाम जो है वो बड़ा ही गंभीर और गलत टैक्स सिस्टम है यहाँ पे। जो अरबपति हैं, जो करोड़पति हैं, अगर वो फ्रॉड करने लगे तो उनको करोड़ों अरबों का फ्रॉड कर जाते हैं और उनको टैक्स वाले नहीं पकड़
1: कानून
0: सकते।
1: फिर जो सजा भी देता है इससे बच को नहीं सकते।
0: नहीं, वो सजा जो है ज्यादातर उन लोगों को मिलती है जो थोड़े थोड़े पैसे की का हो जाता है, जो कोई मजदूरी कर रहा है अगर उसका।
1: तो शाह साहब, ऑन द होल इसका हाल बताएं, आपके पास 80 साल 50 साल का तजुर्बा है तो हमारे पास 2 मिनट है, हाल बताएं।
0: टैक्सी का
1: जो सारा निजाम, इसका हल बताएं हमें क्या करना चाहिए।
0: सबका हल ये है कि अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको राइट हासिल है कि आप हर साल अपने कम्यून के अंदर जाएं, आप उनको कहें कि जी मेरा कोबरा जो है, इसको कोबरा कहते हैं, आप मेरा जो है फाइनल जितना मैंने टैक्स दिया है, क्वा आप आवर्स की वो हो, क्वा आप नॉर्मल टैक्स पेयर है, तो आप वो अपना रिकॉर्ड निकलवाएं और उसको जो है आप जो है तो उस पर देख सकते हैं कि आपने कितना टैक्स दिया है, या आपके आवेश ने कितना आपका टैक्स दिया है, क्या वो जायज है, क्या आपको इस साल जो है टैक्स किसका देना है, उस पर आप टैक्स ऑफिसर से बात कर सकते हैं। और अगर आप आवेश हैं तो आप ये देख सकते हैं कि क्या जायज टैक्स आपने पे किया है या कोई नाजायज आपसे लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पिछले 30-40 साल से ऊपर जो टैक्स का मिनिस्टर है इस वक्त, उन्होंने खुद ये बयान दिए हैं और इसी तरीके से लिबरल अलायंस और दूसरों ने कि बड़ा शोर डाला है इस बात पे कि टैक्स के अंदर बहुत सारे होल्स हैं और बहुत सारे लोगों को के कारोबार जो है वो छीने गए हैं, बाज लोगों ने बहुत ज्यादा।
1: तो शाह साहब, ये जो टैक्स का निजाम जो करते हैं जिसे रिवीसा कहते हैं, तो ये 1 महीने के कितने चार्जेस लेते हैं?
0: देखे जी, रिवीसर भी दो तीन किस्म के हैं। एक रिवीसर है जो मैट्रिक करता है या फर्स्ट ईयर अपना जिमनेजियम करता है और उसके बाद वो रिवीसर बन जाता है कोर्स करके। एक जो सही रिवीसर है वो होता है अपना स्टेट रिवीसर, और स्टेट रिवीसर जो है वो इतने महंगे होते हैं, वो करते हैं बड़ी बड़ी फर्मों के लिए काम, और हमारा आम आदमी जो है वो स्टेट रिवीसर के पास जाने को सोचता ही नहीं। हम जितने भी रिवीसरों के पास जाते हैं वो असल में रिवीसर नहीं होते, वो झूठ बोल रहे होते हैं, वो होते हैं बुक करने वाले, यानी जैसे हम अपनी जबान में कहते हैं जी मुंशी, के हमारे मुंशी ने ये हिसाब किताब लिख दिया, वो माजरत के साथ वो असल में मुंशी होते हैं, उनके पास इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो आकर वो ये कर सकते हैं काम कि वो टैक्स को लिख सकते हैं कि भाई मुझे जो
1: कभी कभी इश्तिहार भी हमारी नजरों से गुजरता है कि आपको एक जो रिवीसर की जरूरत है, हम 600 करोने में 500 करोने में आपका महीने का हिसाब किताब किया करेंगे।
0: ये गलत चीजें हैं, इससे इंसान धोखा खाता है, वो एक किस्म के मुंशी होते हैं, और माजरत के साथ मैं इनसे, क्योंकि ये हकीकत है डेनिश कानून के अंदर, मैं खुद इस कानून को जानता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, जो स्टेट रिवीसर होता है वो असल में वो बंदा होता है कि जो टैक्स वालों को लिखता है कि जो चीजें मेरे सामने मेरे क्लाइंट ने रखी है, जो पेपर उसने मुझे सबूत दिया है, उसके मुताबिक जो कुछ मैं लिख रहा हूँ और ये मेरे हाथ से निकल के गया है, इसको मैं हल्फन जो है वो मैं इसको सही समझता हूँ। लेकिन जो छोटे रिव्यूसर होते हैं वो लिख देते हैं जी कि ये चीजें जो तो मुझे उसने प्रोवाइड की थी वो मैंने लिख दी, वो इसको अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता, वो कहता है कि जो मेरे क्लाइंट ने मुझे दिया वो मैंने लिख के आगे कर दिया। लेकिन जो पढ़ा लिखा स्टेट रिव्यूसर है वो कहेगा कि नहीं, मैं जो तो गलत पेपर है वो मैं कभी भी नहीं लिखूंगा, मैं उन चीजों को लिखूंगा जिनके पास तुम मुझे सबूत के तौर पे दोगे और जो पेपर होगा मटेरियल वर्क
1: तो
0: होगा।
1: शाह साहब, इससे साबित हुआ कि कानून का एहतराम करना चाहिए, कोई मुश्किलात नहीं आती।
0: बिल्कुल, आप कानून का एहतराम करें, फिर कानून भी जो है अगर उसके अंदर कोई ऐसी गलती आ जाती है तो वो कानून जो है वो रिवर्स होकर आपकी इमदाद को भी खड़ा हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को ये कहते हैं कि देखो ये जो कानून बना रहे हैं पार्लियामेंट में, आप इसकी तरफ ना जाएं, बल्कि आप उसको देखें जो आईन है, आईन के खिलाफ अगर ये कानून बने हुए हैं तो आप उसको कहीं भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप ऐसी वायलेशन ना करें कि जिससे आप कानून की गिरफ्त में आ जाएं, और अगर आप खुदा ना खासा आ गए हैं और ये झूठा ब्लेम है तो फिर आप आपको उसकी
1: कानून के मुताबिक
0: इंसाफ
1: सजा
0: की भी
1: मिलेगी। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, आपने मालूमात दी। सामान्य नाजरीन, हमारा किसी मुतफिक होना ज़रूरी है, लेकिन आप कोशिश करें कि जिस तरह वो फरमा रहे थे कानून कायदे का एहतराम करें तो मुश्किलात आपके सामने नहीं आएंगी। अगर कानून से कहीं ऐसी छोटी मोटी बात हो जाती है तो वो रिवर्स भी हो जाती हैं, वो आपको सबका बकाया जात भी मिल जाते हैं, तो लिहाजा सबसे बेहतर ये कानून का एहतराम करें।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
3: Then make the school rain. The one held elementary mentemon. Klokken var næsten 8. Og eleverne kom løbende ind på skolen. Nogle havde travlt med at snakke med deres venner, mens andre gabte og glædede sig til frikvarteret. Malik gik ind i klasseværelset sammen med sin bedste ven, Oliver. Jeg håber virkelig, vi ikke skal have matematik i dag, sagde Oliver. Malik grinede. Det siger du hver mandag. De satte sig på deres pladser. Kort efter kom deres lærer, Anna, ind i klassen, men hun så meget alvorlig ud. Godmorgen, sagde hun. Godmorgen, svarede eleverne. Anna lukkede døren og kiggede rundt på klassen. Der er sket noget mærkeligt. Alle blev stille. I morges fandt jeg denne nøgle på mit skrivebord. Hun holdt en gammel, sølvfarvet nøgle op. Jeg ved ikke, hvad den passer til, men der lå også en besked. Hun læste højt. Find døren, før klokken ringer. Eleverne begyndte straks at tale. Det er sikkert en spøg, sagde Oliver. Måske, svarede Malik, men lad os finde ud af det. De begyndte at løbe rundt på skolen. Først gik de til biblioteket. De kiggede bag bøgerne og under bordene, men fandt ingenting. Så gik de ned til musiklokalet. Døren hang der en lille sol. Hvis I vil finde døren, skal I følge lyden. Pludselig hørte Malik en svag lyd. Tik, tik, tik. Hørte I det? Spurgte han. Lyden kom fra gangen. De fulgte den og kom hen til en gammel del af skolen, som eleverne normalt aldrig brugte. For enden af gangen stod en gammel trædør. På døren var der et lille nøglehul. Malik tog nøglen frem. Skal jeg prøve? Gør det, sagde Oliver. Han satte nøglen i låsen og drejede den. Klik. Døren gik langsomt op. Bag døren var et lille rum fyldt med gamle billeder, bøger og kasser. På væggen hang der et billede af skolen, som den så ud for over 50 år siden. Midt i rummet stod en kiste. Malik åbnede den forsigtigt. Inden i kisten lå der gamle skolebøger, fotografier og et brev. Anna tog brevet og læste. Denne kiste blev gemt af skolens første lærer. Den indeholder minder fra elever gennem mange år. Husk, at din skole ikke kun handler om lektier og karakterer. Det handler også om venner, oplevelser og minder. Alle blev stille. Oliver kiggede på Malik. Okay, måske er skolen faktisk lidt spændende. Malik smilede. Det sagde du ikke tidligere i dag. Pludselig ringede klokken. Ding, ding. Eleverne løb tilbage til klassen. Men de viste, at de aldrig ville glemme den mærkelige skoledag. Og fra den dag af kaldte de det gamle rum for hemmelighedsrum. Tusind tak for, I lytter med.
2: Ye रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامع ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 20/9/2026 کا پروگرام ہے، تقریباً 12:30 بجا چاہتے ہیں. جس طرح ہم نے صبح انٹرو میں کہا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے اور ایک آدھ ہمارے اسپیشل مہمان بھی ہوتے ہیں. یہ بڑی دور سے ہیں، کسی تعارف کے یہ محتاج نہیں ہیں. یہ شاعرہ ہیں، یہ میڈیا کے ساتھ منسلک ہے، یہ آن لائن مشاعرہ بھی کرتی ہیں، اپنے پروگرام بھی بناتی ہیں. آپ انہیں یوٹیوب پر بھی دیکھتے رہتے ہیں، فیس بک پر بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور جو ہمارا میڈیا ہوتا ہے لوکل میڈیا پہ اس کی بھی یہ زینت بنتی رہتی ہے. میری مراد ہے ممتاز ملک صاحبہ، آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر اپنی ٹیم کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں.
4: جی وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ راجہ غفور صاحب، بہت عرصے کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. بہت اچھا لگا آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو میری جانب سے. السلام علیکم.
1: بہت شکریہ ممتاز ملک صاحبہ، میں نے آپ کا تعارف تو کرا دیا ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، میں چاہوں گا ذرا آپ اپنا تعارف بھی کرائیں. میں نے بہت ساری چیزیں اس میں شامل کی ہیں.
4: جی بہت شکریہ مجھے یہ موقع دینے کے لیے. میں نام تو جیسے آپ بتا چکے ہیں، ممتاز ملک میرا نام ہے، کرس فرانس سے میرا تعلق ہے، راولپنڈی پاکستان کی پیدائش ہے میری، اور میں یہاں پر فرانس میں تقریباً 28 سال سے مقیم ہوں، 98 سے لے کر آج یہاں پر نیشنل ہوں یہاں کی. میں نے لکھنا تو بچپن سے ہی لکھنا اور شاعری تو بچپن سے تھا، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ چھپواؤں گی. لیکن فرانس آنے کے بعد پھر میں نے ایک مذہبی ادارے میں جوائننگ کی، جس وقت اس وقت میں نے وہاں پہ پڑھانے کا کام بھی کیا. اس کے علاوہ بطور نعت خواں کے بھی، اسکٹ رائٹنگ کے بھی، اس کے علاوہ نعت گوئی بھی، اور اسٹیج سیکٹری، پھر جنرل سیکٹری کے طور پہ پھر میں نے لاسٹ میں جو اپنا کام کیا. تو یوں تقریباً 16 سال میں نے ہر چیز کے اوپر کام کیا اور بہت کچھ سیکھنے کو مجھے ملا. اس کے بعد پھر میں نے اردو کی جانب رخ کیا کہ ہم اپنی زبان کے لیے کام کرتے ہیں. تو پھر 2010 سے باقاعدہ میں نے اپنی کچھ چیزوں کو اکٹھا کرنا، دوستوں کے کہنے پر کہ اب آپ اس کو پبلش بھی کریں، تو پھر وہاں سے پبلشنگ کا بھی کام شروع ہوا. اور 2010 سے پھر میری پہلی کتاب کی تیاری، اور 2011 میں اس کی رونمائی، اور یوں 2011 سے لے کر 10 سے لے کر آج تک میری اب تک ماشاء اللہ 10 کتابیں آ چکی ہیں ان 16 سالوں میں. اس میں میرے پاس شعری مجموعہ کلام پہلا 2011 میں مدت ہوئی عورت ہوئے کے نام سے آیا، دوسرا مجموعہ کلام 2013 میں آیا میرے دل کا کلندر بولے کے نام سے، تیسرا مجموعہ پھر میرے آرٹیکلز جو چھپ رہے تھے مختلف موضوعات کے اوپر، سماجی اخلاقی موضوعات کے اوپر. یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے، گھریلو موضوعات، سماجی موضوعات، اخلاقی موضوعات. تو اس پر پھر جو کالم چھپ چکے تھے اس میں سے ہم نے چنیدہ کالم اٹھائے، اور سچ تو یہ ہے کہ نام سے میری کتاب شائع ہوئی 2016 میں. اس کے بعد میری اگلی کتاب جو تھی، کیونکہ میرا سفر صرف شاعری تک نہیں تھا، شاعری، نثر نگاری، کہانی، پھر بیچ میں پنجابی شاعری کے لیے بھی. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ پنجابی ہونے کے باوجود آپ نے کبھی پنجابی میں کچھ نہیں لکھا. میری پنجابی کوئی بالکل اچھی نہیں تھی، لیکن پھر بڑے دوستوں نے جب تانے وانے دیے تو سوچا کہ چلیں گھنگا لیں اپنے ذہن کو آگے پیچھے، تھوڑا بولنے بھی پریکٹس لاؤ، اور یوں پنجابی کا سفر کا آغاز ہوا اور اس میں بھی کام شروع ہو گیا تھا. لیکن تب تک 2019 میں پھر میرا پہلا نعتیہ مجموعہ کلام وہ تیار تھا، اے شہ محترم کے نام سے، الحمدللہ 2019 میں آیا. پھر 2020 میں میرا اردو شعری مجموعہ سراب دنیا، جس کے اوپر سوابی یونیورسٹی میں ایم اے کا مقالہ لکھا گیا، پہلا مقالہ میرا اس پہ لکھا گیا 2018-20 تک کا. اور اس کے بعد بی ایس بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے اس پر بی ایس کا مقالہ لکھا گیا، اور یوں سراب دنیا میری وہ پہلی کتاب جس کے اوپر یہ مقالہ جات ہوئے، اور بہت سارے کام ہو رہے ہیں آگے جو تب مجھ تک نہیں بھی پہنچے. تو اس کے بعد میری اگلی کتاب، کرونا شروع ہو گیا تھا تو کرونا کے زمانے میں پھر آن لائن پروگرامز ہونے شروع ہو گئے، تو وہ جو زمینی سلسلہ تھا وہ منتقل ہوتے ہوئے بہت ساری تنظیمات جو کہ انوائٹ کرتی تھی، اور وہاں پھر میں بطور شاعر کے شامل ہو رہی تھی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جب مجھے کہا کہ اب آپ کیونکہ زمینی کام سے فرصت ہے آپ کو، تو اب نظامت میں یہاں پہ آئیے نا، تو پھر کرتے ہوئے گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن کے ساتھ، اٹلی کی جو ادبی تنظیم ہے ان کے ساتھ مجھے 2023 میں نے پھر ان کو جوائن کیا باقاعدہ نظامت کار کے طور پہ. जनवरी से, तो वो जो सिलसिला था उसमें फिर मैं काफी लंबे प्रोग्राम भी हुए, 5-5 घंटे के मुशायरे भी होल्ड किए, उस वक्त मैं उन्हीं के टाइटल पे कर रही थी। इस बीच मेरी किताबों का सिलसिला जारी था जो मैं अपना काम कर रही थी। तो फिर मेरी अगली किताब जो तैयारी मुकम्मल हुई वो थी जनाब शराब दुनिया के बाद जो अगली किताब थी, वो भी मेरा अगला जो मेरा मजामीन का मजमुआ था वो तैयार हुआ लोहे गैर महफूज के नाम से 2022 में। उस वक्त का काम मुकम्मल हो चुका था, वही आर्टिकल्स जो मेरे प्रिंट हुए थे बाकी बाद में उनके ऊपर, ये मेरी दूसरी किताब थी। तो लोहे गैर महफूज 22 में आई, फिर उसके बाद जनाब 24 में मेरी किताब फिर से एक उर्दू पंजाबी शेरी मजमुआ, सॉरी वो मेरा इस दौरान आ चुका था 2023 में, उसका नाम था ओ झलिया, जो माशाल्लाह बहुत पसंद की गई, जिसके गीत भी माशाल्लाह गाए गए और टाइटल सॉन्ग ओ झलिया के नाम से अभी रिलीज भी हुआ यूट्यूब के ऊपर, दोस्तों ने बड़ी मोहब्बत से नवाजा, आप जरूर सुनिएगा ओ झलिया, आपको यूट्यूब पर जरूर मिलेगा। मुमताज मलिक पेरिस के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल मौजूद है, तो जो दोस्त सुनना चाहें उनको यकीनन अच्छा लगेगा, जरूर सुनिएगा, टाइटल सॉन्ग है मेरी किताब का। उसके बाद और वो चला गया 2024 में आई, और उसके 2024 में छप चुकी थी जनवरी में, और फिर उस दौरान फिर मेरी किताब सच्ची कहानियों का मजमुआ कतरा कतरा जिंदगी के नाम से, जो कि यूरोप में और खुसूसन फ्रांस में पहली किताब है जो कि किसी गैर फ्रेंच ने, पाकिस्तानी नजाद ने या किसी गैर फ्रेंच ने यहाँ पर कहानियां जो सच्ची कहानियां हैं उनके नाम और जगह बदल के वो कहानियों का मजमुआ 2024 में मेरा शाया हुआ, और यहाँ भी उसकी रुनमाई हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं मैं फ्रांस में काम करने वालों में वो पहली खातून हूँ, जब वो पहली पाकिस्तानी खातून हूँ जिसने उर्दू जुबान में या पंजाबी जुबान में पहली जिसकी पंजाबी किताब शाया हुई, जिसका पहला पूरा महफिल नात जो होती है हम मिलाद बुक बोलते हैं, ऐशे मोहतरम के नाम से पहले ही नातिया मजमुआ कलाम शाया हुआ, मुझसे पहले ये रिकॉर्ड में किसी के पास भी नहीं है। उसके अलावा मैं ही वो पहली खातून हूँ जिसकी नसरी किताबें सच तो ये है या और वो सॉरी लोहे गैर महफूज, ये दो किताबें आई। शायद वजह ये भी है कि हमसे पहले अभी तक हमारी आबादी इस वक्त 1.5 लाख पाकिस्तानी हम यहाँ आबाद हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चियों को या खवातीन को हैं शायद मुझसे भी कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी खवातीन यहाँ पर होंगी, लेकिन जो लोग उनको ब्याह कर लेकर आए वो खुद पहले तो इतने तालीम याफ्ता नहीं थे, जिनके साथ बीवियां उनको शायद ग्रेजुएट मिल गई या मास्टर्स मिल गई पेरिस के नाम पर, तो उन्होंने फिर उनको लाकर बस उनको कहा कि बस भाई अब रोटी गोल होनी चाहिए और ब्रोस्ट जड़ा है वो जो परफेक्ट होना चाहिए, तो उन्होंने उनको उस चीज में ऐसा लगाया कि वो मेलों में सारी रात गुजारे उन्हें एतराज नहीं है, वो सारी रात शादियों में नाचती रहे उन्हें एतराज नहीं है, गले में दुपट्टा लटका के भी घूमे उनको कोई एतराज नहीं है, पैसे कमाने कहीं चले जाएं उनको कोई एतराज नहीं है कि पैसे आने चाहिए इनके पास, लेकिन कहीं अदबी काम में आना, क्योंकि इसमें पैसे नहीं ना, इसमें कमाई नहीं है हमारे पास, हम तो बल्ले से लगा के करने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे अदबी महाफिल में प्रोग्राम अटेंड करने के लिए भी आने को तैयार नहीं, फिर हमारे मजहबीदारों ने जो लंगर की आदत डाली हुई है उस लंगर की आदत से निकलने को कोई तैयार नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम जहाँ पे आपको 10-20 अपने पास से खर्च के अपना खाना खाना पड़े, हमारे मर्द भी जाने को तैयार नहीं होते, और खवातीन तो बिल्कुल उनके लिए तो अछूत की बात है, तोबा तोबा तोबा, मर्द बैठे होते हैं वहां नहीं जाना। तो ये सारी जो सिचुएशन है इसके साथ जिहाद करते करते मैंने यहाँ 28 साल गुजारे हैं, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑनलाइन 4 प्रोग्राम्स कर रही हूँ सारी दुनिया के साथ मिलकर। इस वक्त 2023 से जो मैंने सफर ऑनलाइन के साथ बाकायदा निजामत में शुरू किया था, अब मैं ग्लोबल के साथ नहीं हूँ बल्कि ग्लोबल के बगैर अपने हम लोग प्राइवेट अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं और सारी दुनिया से शोरा कराम इकट्ठे होते हैं। अब मैं 4 मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रही हूँ, इसमें पाकिस्तान वक्त रात 8 बजे हर बुध को उर्दू मुशायरा, राहे अदब फ्रांस मेरी तंजीम है रजिस्टर्ड उसके तहत, और हर जुमे को पंजाबी मुशायरा पाकिस्तान टाइम रात 8 बजे। दुनिया भर के शायर जो शरीक होना चाहे अपनी शायरी लेके आना चाहे वो वेलकम किया जाता है, 20 शायर मैं उसमें लेती हूँ, 2 घंटे की हमारी ये नशिस्त होती है हर बुध और जुमे को, यानी ये उर्दू और पंजाबी मुशायरा। इसके अलावा कल सोमवार है तो हर सोमवार को अब मैंने प्रोग्राम शुरू किया है कुछ गल्ला बातां, ये पंजाबी प्रोग्राम है, इसमें हम चार मेहमान लेते हैं जो खुद को आना कंफर्म करते हैं। और इस प्रोग्राम में हम लोगों ने जो शुरू में मौजू रखा था, हमारा ख्याल था हम हर प्रोग्राम में अलग मौजू रखेंगे, लेकिन ये मौजू इतना टची था और हर इंसान को इतना इसने करीब किया कि लोगों ने कहा कि हम और भी लोगों को सुनना चाहते हैं कि वो अपने बचपन की पैदाइश से लेकर 10-12 साल की उम्र तक जो भी उनकी यादाश्तें हैं उस जमाने की खेड़ा यादा, इर्द गिर्द का माहौल, करंसी क्या चलती थी, कितने पैसे मिलते थे, टिफिन में क्या लेके जाते थे, अम्मी जी सुबह क्या बनाती थी वगैरह, बड़ी मजेदार गुफ्तगू होती है ये। तो सब एक कथार्सिस शो है, ये पहला पंजाबी कथार्सिस शो है जिसमें हम वो टाइम पीरियड 10 साल तक का जो है वो दोस्तों के साथ जीते हैं, 20-20 मिनट सबको बात करने को मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। जो भी शामिल हुए उनको बहुत उन्होंने अच्छा सुनने और कहने वालों ने रिस्पांस दिया। फिर हर मंगल को कशीद लम्हे के नाम से एक इंटरव्यू शो, 1-to-1 प्रोग्राम्स है, 1-to-1 दो लोग हम बात करते हैं, कोई भी एक मेहमान जो मेरे कन्फर्म होते हैं उन्हीं का पहले पोस्टर भी बनता है और इसके अलावा फिर उनके साथ मैं कुछ सवालात भेजती भी हूँ, फिर उसी में से बात निकलती है और हम उनसे ही वाबस्ता कुछ और सवालात बीच में शामिल करते हैं। ये भी एक 1.5-2 घंटे के बीच के दौरानिया का एक इंटरव्यू शो होता है, ये उर्दू प्रोग्राम है और हम अपने मेहमान की जिंदगी से कुछ खास लम्हात को कशीद करते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल हो, जो कुछ वो कहना चाहते हैं हम बाय फोर्स कुछ नहीं निकलवाते किसी से, जो वो अपनी खुशी से अपनी समझदारी के साथ अपना जो भी अहवाल सुनाना चाहें, दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें, उनको पूरी हम उनको पूरी प्लेस देते हैं, जगह देते हैं इस बात के लिए। इसके अलावा आप बताएं ये दो मुशायरे, तो यूं ये चार प्रोग्राम मेरे चल रहे हैं, 10 किताबें मेरे भी हाफ पे इस वक्त मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ और किताबों के काम हो रहा है जो कि थोड़े थोड़े किसी की प्रूफ रीडिंग बाकी है, किसी की कुछ है, तो बस वो तबात के मरहले में जा रही है, जैसे जैसे इंशाल्लाह जल्द आपको मेरा और भी मुनफरिद काम देखने को मिलेगा। तो ये है जनाब मेरा सफर।
1: बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहिबा, आपने बड़ा तफसीलन हर चीज़ के बारे में बताया। तो अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं यूरोप में रहते हुए तो फिर आपने तो लाखों यूरो कमा लिए होंगे।
4: काश काश काश काश कि हमारा उर्दू या पंजाबी लिखने वाला भी, क्योंकि जब हमारे लोग किताब ही नहीं खरीदते। आप ये बताएं कि जिस मुल्क में लोगों का ये रुझान हो कि वो 3,000 यूरो पे कर देंगे कहीं जाकर किसी नाश्ते के लिए, कि मैंने इससे पाकिस्तान में ना सियासी टिकट खरीदनी है, इसलिए यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके लंगर खिला दो, एक होटल पे अच्छी सी महफिल कर दो, तो वो लोग 10 यूरो की आज तक, यहाँ कितने बड़े नाम है, कितने बड़े बड़े नाम है ना फ्रांस में जनाब, ये यहाँ इतने बड़े बिजनेसमैन और फोरम और ब्ला ब्ला ब्ला, आज तक उनमें से किसी एक ने 10 यूरो की एक किताब नहीं खरीदी, नॉट ओनली मी, किसी से भी नहीं खरीदी कभी। तो जो लोग इतनी खिदमत कर रहे हैं ये कल चौक में बैठ के आपको बताएंगे कि जी ओहो हो आसानी तो जबान खत्म नहीं गई, और कोई आपको कहेगा कि जी उर्दू खत्म होगी, जी उर्दू कोई नहीं बोलता, तो आपने उर्दू कब बोली थी अपने बच्चे के साथ, आपने अपने घर में पंजाबी कब बोली थी, आपने कब कोई किताब खरीद के लाकर उनको 2 सफ़े पढ़ के सुनाए थे कि उनका शौक पैदा होता, आपने कब उनको अलिफ बे सिखाने की कोशिश की थी। तो ये ड्रामा जो है ना, हम ड्रामेबाज कौम है असल में, हमारा कॉल कुछ होता है, हमारा फेल कुछ होता है, हम जिंदगी यूरोप में गुजारना चाहते हैं और मरना चाहते हैं मक्का मदीना में, तो आप सोचें इतना बड़ा कॉम्बिनेशन जब हमारी जिंदगी में मुनाफकत का शामिल हो, तो वहां पे आपके साथ जो भी हो जाए काम हुआ, मैं तो बिल्कुल अब इतनी जिंदगी गुजारने के बाद मैं कहती हूँ कि अपनी डगर पे मैं काम कर रही हूँ, मैंने हार नहीं मानी और अल्लाह ताला ने मुझे जो कामयाबियां दी हैं सारी दुनिया में, जो नाम या पहचान जो भी कुछ 2-4 लोग मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब क्योंकि समाजी मौजूदात पर पहले सिर्फ कॉलम्स लिख रही थी, अब तो मैं टिकटॉक कॉलम्स में एक तरह से वॉइस मैसेज के तौर पे टिकटॉक पर इस वक्त मुमताज मलिक को आप सुन सकते हैं, वहां पे तो मैं अच्छी इनकी लेटर परेड करती रहती हूँ, जो जो वो मौजूदात जो टैबो समझे जाते हैं जिन पे बात होनी चाहिए। देखिए जब भी जिस मौजू को आप तकलीफ समझते हैं उस पर बात नहीं करेंगे तो हल कैसे होगा, बात करेंगे तो उसका कोई ना कोई आंसर निकलेगा, कोई हल निकलेगा। तो मैं उन मौजूदात को जानबूझकर छेड़ती हूँ। मुझे यहां तक कहा गया तुम्हारे बच्चों की शादियां नहीं होंगी, तुम्हारा ये नहीं होगा, तुम्हारा वो नहीं होगा, तुम तो ऐसे खुलकर बोलती हो बात करती हो। मैंने कहा जब मेरी शादी जिससे हुई है ये भी मेरी किसी किताब में नहीं लिखा हुआ था, ना मैंने उसके साथ इश्क लड़ाया था, ना मैं उसको जानती थी। अगर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ ना बगैर जाने पहचाने दूसरे शहर और दूसरे मुल्क तक, तो ये मेरा नसीब था। तो मेरे बच्चों का भी जहाँ नसीब होगा ना, अच्छा है तो हो जाए, नहीं अच्छा तो ना हो। ये जिस किस्म की शादियां हो रही हैं, जिस किस्म के रिश्ते हो रहे हैं हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटीज के, चाहे पाकिस्तान में चाहे बाहर, जिस किस्म की गंदगी शादी के नाम पर परोसी जा रही है और खानदानी गुलामी लड़कियों को दी जा रही है, नहीं चाहिए ऐसी शादियां। तो ना मुझे चाहिए ना मेरे बच्चों को चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, खुश है अपनी जिंदगी में। तो हमें इस किस्म के रिश्ते नहीं चाहिए कि जो रिश्ता एक गले का फंदा बन जाए। निकाह नामे को आज आपने फंदा बना दिया है, कहीं लड़की के लिए कहीं लड़के के लिए। तो शादी को एक रिस्पेक्टेड, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दो लोगों के बीच में है, वो अपना घराना शुरू करते हैं, अपनी फैमिली शुरू करते हैं। ये नहीं कि घर के 25 लोगों के लिए लड़का एक दुल्हन लाकर उसके बाद माँ के कदमों में रख देता है और खुद बाहर अयाशी करने, जिना करने चला जाता है कि जी वो कहीं गया हुआ फलानी जगह पर। ये रोज की कहानी है हम यहाँ देखते हैं कि बेटा बहू ला के वो अम्मी जी के लिए छोड़ जाता है। तुमने नौकरी नहीं करनी, तुमने कुछ नहीं करना, अगर नौकरी करती हो तो तनख्वाह मुझे दो और हमारा घर पालो और अम्मी जी की फरमाबरदारी करो। वो अम्मी जी के निकाह में आती है, पाकिस्तानी लड़कियां अम्मी जी के निकाह में आती हैं या लड़के की बाजियों के निकाह में आती हैं, वो सबके निकाह में आती हैं माँ सिवाय अपने शौहर के। उनके शोहर को नहीं पता होता कि ये औरत हमारे निकाह में, ये लड़की मैं ब्याह के लेकर आया हूँ, इसको अल्लाह ताला के आगे मैं जवाब दे हूँ। तो लानत भेजे ना फिर ऐसी शादी के ऊपर। ऐसी शादी से तो ना शादी बेहतर है। अपनी बेटियों को पढ़ाने पे फोकस करें, हुनर सिखाने पे फोकस करें, उनको रोटी कमाने पे फोकस करें। उसके दिल में जैसे हमारे माँ बाप ने खौफ डाल के हमें जूते खाने के लिए एक खानदान में छोड़ दिया ना कि तुम्हें अब रोटी कौन देगा, बेटी तेरा जनाजा उत्थों निकले, बेटी क्यों भाई अगले का जनाजा क्यों ना निकले, थोड़ी बेटी का जनाजा क्यों निकले, तुसी ते बड़े बेगैरत हो। फिर जो तुसी अपनी धियां दे जनाजे वास्ते तुसी लोगों नू नौकरानियां सप्लाई कर दियो, वो शादी तो होती भी नहीं है। जब लड़की इंडिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ बाप और भाई के मुंह को देख कर सर हिला देना कि जा बेटा ये जिना है, ये शादी नहीं है, ये निकाह नहीं है। निकाह दो लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को अपनी मर्जी से कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है, मैंने तुम्हारे साथ अपनी इज्जत बेइज्जती को शेयर करना है, वो होता है निकाह। पता नहीं हमारे यहाँ जितनी शादी एक सबसे बड़ा मजाक और सबसे बड़ा एक खौफनाक ख्वाब बना दी गई है। लड़कियां ये सोचकर बाप के घर से निकलती हैं कि आगे जाएंगे तो अपनी मर्जी से कुछ पढ़ने का, कुछ सीखने का, कुछ करने का मौका मिलेगा। वहां आके पता चलता है तेरे प्यो दा घर नहीं है, चल चूल्हे ते खलो। चल भाई 35 साल की नंद जो होती है वो छोटी काकी होती है, 11 बजे उठती है और वो सास से बड़ी सास होती है अपनी भावज के लिए। वो ऑर्डर दे रही होती है और वो जो 20-22-24 साल की लड़की आती है वो समझती है अब ये 45 साल की औरत की तरह पूरा घर संभाल और मुंह से उफ नहीं करनी, अब ये तेरे बाप का घर नहीं। जिसको कहते हैं ना बहू अपना घर नहीं समझती, कैसे समझे? तुम लोगों ने उसे अपने घर की फीलिंग कब दी? तुमने कब कहा कि बेटा ये तुम्हारा घर है? और आके तो हर बंदा उस पे हुक्म चला के जो समझता है कि जनाब अब ये हम सबके जूते के नीचे है, कोई महरम नहीं, कोई ना महरम नहीं घर में, मुंह उठा के देवर आ रहा है, जेठ आ रहा है, नंदोई आ रहा है, हर कोई आंखबाजी कर रहा है। कहते ना बाहर तो सड़क पे तो ठरक झाड़ते ही, हमारी तो कौम अपने घर में अपने घर की औरतों पर ठरक झाड़ने से बाज नहीं आती। वो बेचारी क्या करे, सारा दिन तंबू पहन के फिरे। जब वो किसी एक के चक्कर में अपने आप को सेफ करने के लिए किसी के हाथे चढ़ जाती है, क्या चढ़े ना चढ़े, लेकिन उसके ऊपर सबसे पहले इल्जाम डाला जाता है कि ये ऐसी है ये वैसी। तो तुम लोग गाजी नमाजी थे तो तुम अपने घर का माहौल ऐसा रखते ना, ये मुंह उठा के सांड रिश्ते घर में क्या करते थे? लोगों की बेटियों के साथ मजाक है, शादी के नाम पर मजाक है। और लड़का वो कहेगा जी मेरे अब्बा जी नु खुश कर, मेरे भाई को खुश कर। वो कितना बेगैरत आदमी है, तो मुझे उनको खुश करने के लिए लेकर आया है। हमारे मर्द ने जिस तरह से शादी की धज्जियां उड़ाई है ना, हमेशा उड़ाई है, लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से वो धज्जियां हवा में उड़ उड़ कर हमारे मुंह पे लगती हैं आकर, तो हमें पता चलता है कि अब औरत बोलने लगी है। क्यों ना बोले भाई, रोटी कमाना सिखाओ। जिस औरत को यहाँ पे मैंने ये मेरे साथ रोजाना यहाँ ये ऐसे वाकयात मुझे देखने सुनने को मिलते हैं, क्योंकि बतौर राइटर जब खवातीन अपनी बातों को शेयर करती हैं, या मेरा एक ग्रुप भी है जो मैंने बना रखा है सिर्फ काम की बात के नाम से व्हाट्सएप के ऊपर, तकरीबन 4 से 5 साल हो गए। वो बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तानी खवातीन बहुत झिझकती थी 5 साल पहले, जाए आपको तो आपको उस हालत में और आज में बहुत फर्क लगेगा यहाँ की खवातीन के कॉन्फिडेंस लेवल में, जो बहुत बूस्ट किया है माशाल्लाह। उस वक्त तक वो यहाँ शॉपिंग तक करने से कहती थी नहीं, पाकिस्तान से इतने का आता है, यहाँ से इतने का आता है। जब उन्हें पता चला कि एक ही जोड़ा जो आप खरीद रही हैं, अगर आप 25 यूरो का जोड़ा 30 यूरो का खरीदते, नहीं ये तो पाकिस्तान में 10 यूरो का मिल जाता है, तो उस 10 यूरो के पीछे जो आपने 15 यूरो बचाए, उसके पीछे 1500 यूरो जाके वहां पर टिकट लेकर खर्च करके वहां पे पूरे पूरे खानदानों को पाल के और फिर उन सबकी जेबें भर के जो कुछ आप खर्च करके आएंगी, तो क्या 15 यूरो बचाना बेहतर है या यहाँ से मकामी तौर पर खरीद के सुखी हो जाना बेहतर है? ये चीजें उनको समझानी पड़ी, ये उनको ये एक तरह से उनको एक तरह रोजाना डोज देनी पड़ी कि भैया यहाँ का और वहां का पहले मुकाबला करो, फिर देखो कि तुम्हारी जिंदगी जहां आसान होती है। और पाकिस्तान का दौरा करने के बाद कोई शायद आटे में नमक के बराबर, जिनकी कोई माँ या बाप जिंदा हो उनको छोड़कर कोई ऐसा नहीं जो कि खुश होकर पुरसुकून होकर आता है। अक्सर मैं ऐसे देखती हूँ जिनको जहाज से ही स्ट्रेचर पर लेके जाया जाता है कि दिल का दौरा पड़ गया, इनको ये हो गया, इनका वो हो गया, इनकी दिमाग की शरियान फटने वाली, इनको ये हो गया, क्या डॉक्टर्स तक वो बेचारे कहते हैं कि ये अपने इन रिश्तेदारियों से और पाकिस्तान के अलावा भी भैया दुनिया में जगह हैं सुकून के लिए, छुट्टियां होती हैं, तुम लोग जब छुट्टियों से आते हो एक नया स्ट्रेस, नई बीमारियां, नई परेशानियां लेकर आते हो, इससे निकलो, से निकलो, दुनिया में और भी बहुत कुछ है। इधर आते जाते छुट्टियां होती हैं तो खान साहब का सबसे पहले हुक्म होता है कि अच्छा चलो पाकिस्तान हो बिजार है, उसके बहन भाइयों को भराओ, उसके रिश्तेदारों को भराओ, जाकर वहां जाकर पाकिस्तान जाना पाकिस्तानी के लिए ठीक है, किसी और मुल्क का बंदा जाएगा जिससे लोग बिल नहीं लेते, जिससे लोग मुफ्त खाने खिलाते हैं, हमें तो भैया कोई चाय भी मुफ्त नहीं पिलाता, हमने तो चाय भी पीनी है ना, तो पहले पूरे खानदान के 50 लोगों को हम खिला पिला के फिर वो चाय का प्याला हमारे सामने आएगा, हमें कोई नहीं खिलाता। हम एयरपोर्ट भी कोई लेने आता है ना तो उसकी गाड़ी का पेट्रोल हम भरते हैं और वापस आने तक गाड़ी के पेट्रोल की टैंकी फुल करवाएंगे और फिर भी मेहरबानी होती है 80 तोनू रखिया किराए पे मकान, वहां पे जब आप मकान वहां पे छोड़ के आज किसी को के रहने के लिए निगरानी में दे दो, वो वहां मालिक बन जाता है। आपके पास क्या है? ये रिश्ते सब फ्रॉड है। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त रिश्ते जितना बड़ा धोखा है, जितना बड़ा फ्रॉड है, जोंके हैं जोंके जो छिपकी हुई है मुसलसल परदेशियों, उन परदेशियों का खून चूसने के लिए जो हमारे मर्द बाज नहीं आते। औरतों को तो शायद अकल आ चुकी है, वो तो वापस इस तरह हर जगह जाने को तैयार नहीं। अब फ्रांस की औरतों ने भी एक चीज ढूंढ ली है कि मर्द धक्के खाने जाना चाहता ना तो जाके होके आए। हम लोग यहाँ अपने समझते हैं कि पैकेज लो, बच्चों के साथ है, ये दोस्तों के साथ है, अकेले भी जो तो क्या, अब जबानें भी आती हैं, सब आती हैं, यहीं जाके 2-3-4 दिन कहीं जाकर घूम फिर के खा पी के आराम से रिलैक्स होके इंसान वापस आ जाता है कि चलो जी आना तो वापस उसी घर में है।
1: ये बिल्कुल तो आपने बजा फरमाया, आपने इतनी तफसील से बताया, लेकिन ये शायर तो शायराना जो तबीयत होती है, यहाँ तो लोग घूमते हैं, छुट्टियों का मौसम है, गर्मियों का मौसम है, यहाँ शायर और सियासतदान जो हैं वो सारी दुनिया घूमते हैं, तो आपसे तो पता चलता है कि सारे अखराजात आप खुद बर्दाश्त करती हैं।
4: हाँ बिल्कुल, हम सारे अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं। ये जो पाकिस्तान से आते हैं ना, जैसे पाकिस्तान से बुलाए जाते हैं, जैसे अभी नौमान एजाज साहब पिछले दिनों इंडस हॉस्पिटल की जानिब से इनवाइटेड थे, तो उनका था, जहरी बात है उनका तो टूर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, इंडस वालों ने, हॉस्पिटल वालों ने किया, हम लोग भी थे उस प्रोग्राम में यहाँ। तो इसी तरह से जो बाहर से वहां से बुलाए जाते हैं वो तो यहाँ पे आते हैं, उनको तो धैर्य दिया जाता है, लेकिन हम जो यूरोप वाले ना, हमारी तो सिर्फ जेबें झाड़ी जाती हैं, हमें नहीं भैया कोई देता, हमें कोई पैसा वैसा नहीं देता। और पाकिस्तान में भी बाकी जो जो मीडिया तक पहुंच चुके हैं शायद, जिन्होंने एक ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर उन्होंने लॉक कर लिया खुद को, वो अपने ही ग्रुप के चार छनकड़े बजाते रहते हैं, भाई आज ये इस टीवी पे है, आज ये उस टीवी पे है, आज गौहर हुकूमत की ग्रांट आ रही है, कुछ आ रहा है, वो उन्हीं चार छनकड़ों में जाके बटती है, वो पांचवें बंदे को नहीं जाने देंगे अंदर, वो कभी आपको, हम वहां जाते हैं ना पाकिस्तान में, अगर हम में से किसी को अगर टीवी पे किसी ने बुलाया है, इंटरव्यू किया है, तो वो भी पहले हमारी जेब से वो रकम निकालेगा, 20,000 दे दे, 25,000 दे दे, 50,000 दे दे, आपको 10 मिनट बात करनी है, वो टाइम खरीद के आप वहां पर जाओ। तो ये यानी हर जगह से हम लोगों को झाड़ा जाता है, निकाला जाता है कि आप वहां पब्लिसिटी करें, निकालें, जैसे पता नहीं हमारी किताबें खरीद खरीद के पता नहीं हम मिलियनर्स हो गए हैं और पता नहीं कितना कुछ हो गया, हम पल्ले से किताबें छुपवाते हैं, अपनी जेब से लाते हैं, अपनी जेब से खाना खिलाते रहे। अब तो मैंने इस साल से तो मैंने फैसला कर लिया, आइंदा से मुमताज मलिक की किसी किताब में किसी को कोई मुफ्त खाना यहाँ पे नहीं मिलेगा। मैं जो अपनी किताब प्रेजेंट करूंगी आपको अपने खाने के बिल खुद देने हैं, जो आना चाहता है आए, ना आए तो मेरे कहते ना किसी फरिश्ते को भी फिक्र नहीं है इस बात की कि कोई नहीं आया। अकेले बैठकर मैं अपने चार दोस्तों में उस किताब को ओपन कर लूंगी, लेकिन ये लंगरगिरी जो है ना, ये लंगरगिरी جو ہماری قوم عادی ہو گئی ہوئی ہے, کروڑوں کی جائیدادیں بنائی ہیں لیکن 10-20 یورو اپنے کھانے پہ جو قوم خرچ نہیں کرتی ہے, میں ان کو خیرات کیوں کھلاؤں؟ کیا وہ خیرات کے مستحق ہے؟ لنگر خیرات میں آتا ہے نا, میں خیرات اس کو کھلاؤں نا جو اس کا مستحق ہے. میں ان بڑے بڑے بکروں کو خیرات کس خوشی میں کھلاؤں جنہوں نے نہ کتاب خریدنی ہے, جن کو نہ الف سے بے کی سمجھ ہے. وہ چھڑوں کا ایک گروپ کوئی لے آئے گا 10-12, دوسرا کوئی آ کے آ جائے گا تو کہے گا جی میرا ایک حال بھر گیا, چلو جی 40-50 بندے ہو گئے, واہ واہ. ذرا سوال کرے گا ان سے آپ, جو آپ نے اتنی گفتگو کی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے, کسی کے پلے ککھ پڑا؟ ان کا صرف یہی دھیان ہوتا ہے روٹی کدھر کھلنی ہے, چلو جی روٹی کھل گئی, چلو جی کھاؤ پیو, واہ جی واہ تصویر بن گیا, 20 بندے نظر آ گئے, 25 بندے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا کبھی بھی. آپ کو ضرورت ہے جو آپ کے کام کو سمجھتی ہیں.
1: ہم نے تو دیکھا ہے شاعر آتے ہیں, ان کو جناب سہولیات ملتی ہیں, کھانے ملتے ہیں, ناشتے مل رہے ہیں, دوپہر کا کھانا مل رہا ہے, رات کا کھانا مل رہا ہے, اچھی گاڑیوں میں گھمایا جاتا ہے, اچھی جگہوں کی سیر کرائی جاتی ہے, اسی طرح سیاستدانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو کیا اوورسیز کا یہی کام رہ گیا ہے؟
4: نہیں تو میرے بھیا یہ کب, آپ کو کس نے کہا کہ یہ سب مفت ہوتا ہے؟ وہ جن کو پھراتے ہیں گھماتے ہیں ان کے کانٹیکٹ یوز ہوتے ہیں پاکستان میں. یہ جو یہاں سیاست دانوں کو بھی گھمایا جاتا ہے, تو میری بات سنیں, یہاں لا کے ان کو کھلانے پلانے والا پیچھے اپنے لیے اپنے بھانجے بھتیجوں کے لیے وہاں ٹکٹ لیتا ہے, وہاں پر بیوروکریٹس تک رسائی لیتا ہے, وہاں پہ کہتے ہیں نا تارے ملاتا ہے, وہاں پہ کاروباری فائدے لیتا ہے, سیاسی فائدے. مفت کوئی نہیں کسی کو کھلاتا, اور اسپیشلی پاکستانی. میں دوسرے لوگوں کو نہیں جانتی, میں اپنے ملک کے لوگوں کو جانتی ہوں. یہاں پہ کوئی کسی کو مفت روٹی نہیں.
1: یہ سہولت کار ہوتے ہیں,
4: یہ سہولت کار ہوتے ہیں بالکل, یہ ایجنٹس ہوتے ہیں صرف. اگر وہ خود یہاں ہے نا, اب اگر کوئی وہی جلسہ لے گیا ہے کہیں کچھ لے گیا, تو کوئی ملک و قوم کی خدمت شدمت اگر ہوتی اتنی, تو آج 70 سال میں ہمارا ملک کوئی جنت کا نمونہ نہ بن چکا ہوتا. اگر یہاں پہ سارا کچھ خیراتی میں ہوتا اور فی سبیل اللہ ہوتا, اور ہر انسان یہ سوچتا کہ بھئی میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ سے میں نے بدلہ لینا ہے, میں نے لوگوں کے لیے اچھا کرنا ہے, اس کے بدلے میں خود یہاں ہے تو وہاں کوئی بھانجا ہوگا, بیٹا ہوگا, بھتیجا ہوگا, کوئی چاچا ماما ہوگا, اس کے لیے ٹکٹ لیے جائیں گے. اور ٹکٹ لینے کا مطلب ہے کہ آپ نے سرکاری خزانے میں اپنا پنجاب گھسیڑ دیا ہے, پھر آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ کاروبار ہے سب, گند ہے.
1: اچھا کاروبار ہے, سہولت کار ہیں. تو پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے کی بات ہے, ہم نے دیکھی کوئی بسیں گئی ہیں, فرانس سے بھی بس گئی اور دوسری بلجیم سے بھی گئی, اٹلی سے بھی لوگ آئے, جو تو 300-400 یا 500 کے قریب لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہوئے احتجاج کیا. تو اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہیں؟
4: جی معلومات کیا, میں خود وہاں عوام میں شامل تھی, میں خواص میں شامل نہیں تھی, میں عوام میں شامل تھی. کشمیر کے ہاتھ میں تھی بات, اور اقوام متحدہ کے جو دفتر ہے جنیوا کا, اس کے بالکل سامنے کے گراؤنڈ میں, جہاں کہتے ہیں ٹوٹی کرسی لگی نا جتھے, او تین ٹنگا والی, وہ ماشاء اللہ ٹوٹی کرسی صحیح, بڑی اچھی علامت ہے, مجھے تو بہت اچھی لگی کہ یہ وہ انصاف کا دربار ہے جہاں پر انصاف لولا لگڑا آپ کو ملتا ہے. تو اقوام متحدہ کا بھی وہی حال ہے جو ہماری عدالتوں کا حال ہے یا ہمارے یہاں کے اداروں کا حال ہے, تو یہاں بھی انصاف اسی طرح ایڑیاں گھسیٹتے ہوئے اور چوتھی ٹانگ کا محتاج ہے. وہاں پہ ہوا اور اچھا احتجاج تھا اور لوگوں نے اچھا کھل ڈل کے حصہ لیا, اور اچھا تھا کہ جو شک ختم کی گئی 700 اور کچھ نمبر کی, جو ہندوستان نے اسے اپنا حصہ بنانے کے لیے جموں کشمیر میں اسے اپنا صوبہ قرار دینے کے لیے, اس کے 7 سال مکمل ہو رہے تھے, تو اس سلسلے میں یہ ایک احتجاجی مظاہرہ تھا. لوگوں نے اچھی محبت سے اس میں حصہ لیا. بالکل یہاں سے زاہد ہاشمی صاحب کا یہ قافلہ گیا تھا, ایک بس تھی پوری فرانس سے, تقریباً میرا خیال ہے 70-75 کے قریب لوگ ہوں گے, اس میں بھری بھی بس تھی, فیملیز تھیں اس میں, یعنی کہ خواتین بھی تھیں, ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ بھی تھے, بچے بڑے بچے بھی تھے, جوان بچے جن کے تھے وہ بھی ساتھ میں تھے, تو ایک اچھا مظاہرہ تھا ماشاءاللہ. اور باقی ملکوں سے بھی, میرا خیال دوسرے نمبر پہ اٹلی کا شاید وفد تھا جن کے شاید, میرا خیال 63 کے قریب افراد ان کے بھی تھے, ایک خاتون سے بات یوں بتا رہی تھی. تو اچھا تھا مظاہرہ, تو اچھا تھا یہ کہ اللہ کرے کہ یہ کاوش قبول ہو, کیونکہ میں وہاں گئی تھی, میں اپنا دن پورا ایڈجسٹ کر کے, میرا جمعہ کا اپنا براہ راست مشاعرہ ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ इनकी तरफ से इन लोगों की तरफ से जब दावत थी तो ये था कि हमने कहा चलें ठीक है कश्मीर के लिए आवाज में हम अपनी भी आवाज एक शामिल करते
1: तो
4: हैं।
1: खुद कश्मीरी तो, सारे गए या के बाकी लोग जो हैं वो यकजहती के लिए?
4: कश्मीरियों का मसला ये कि कश्मीरी खुद नहीं निकलते, उनको सब कुछ तैयार चाहिए। मुझे मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाकया याद आता है कि जब आपने कहा कि बनी इसराइल चलो हम फिरौन के साथ हमने जंग करनी है और मुकाबले का वक्त आ गया, तो उन्होंने कहा था जो मूसा तुम और तुम्हारा खुदा जाकर जंग करो, जब जीत जाओगे तो हमें बताना हम आ जाएंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने वैसे ही तो उस कौम पर लानत नहीं भेज दी थी ना कि जिनको हर चीज पेट में प्लेट में चाहिए, मनो सलमा सलवा प्लेट में चाहिए, कपड़े बदन पे बड़े होते चाहिए, चश्मा अलग अलग चाहिए और फिर उनको हीरो भी बनना है। जब तक जो कौम खुद शामिल नहीं होती, आप अपनी छुट्टी को घर में बारबेक्यू पार्टियों के लिए मुख्तस करते हैं, आपके घरों की औरतें शामिल नहीं होती हैं। अब जिस बस में जितने लोग थे, जितने खड़पैंच थे, उनमें से किसी की बीवी शामिल नहीं थी, आप इस बात से अंदाजा लगाएं। और बाकी औरतें अगर शामिल हैं तो ये नहीं हो रहा था ना। अभी 2016 में हम लोग गए थे, मैं अपने तीन बच्चे लेके गई थी, छोटे थे सारे, और हमने वहां पे ब्रसल्स

0: हवस है खाने की जो खत्म नहीं होती है, या जो चरगों से दिल नहीं भरता, जो बिरयानियों से दिल नहीं भरता, जो निकलो यार कुछ प्रैक्टिकल मैदान में आओ। उनकी बुनियादी जो है ना कश्मीरी बहन भाइयों के साथ गिला ये बनता है, उनकी जिंदगी का मेन मकसद है पैसा पैसा पैसा पैसा, बस जितना मर्जी आए, चिट्टा आए काला आए, पैसा आना चाहिए। भैया पैसा आपके नसीब में जितना है अल्लाह उसके लिए रास्ते बनाता है, वहां तक आपको खुद पहुंचाएगा। आप पैसा जरूर कमाएं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिंदगी में कुछ और मकासद भी होते हैं। मरने के बाद मैंने फरिश्ते को जवाब ये नहीं देना कि मैं इतनी कोठियां छोड़ आया, मैं इतने करोड़ ना जेवर छोड़ आया, मैं इतने करोड़ ने प्लाट छोड़ आया, मैं फलाना सियासी टिकट लैके भांजा भतीजा डॉक्टर बना के कुर्सी ते बिठाए। नहीं, जिंदगी के मकासद में आपने इंसानियत की भलाई के लिए क्या काम किया है, ये सवाल का जवाब जिंदगी किन मकासद में गुजारे, किन कामों में। मैं भी इन्हीं कामों में, फजूल कामों में पड़ी हूँ ना, लिखना लिखाना छोड़ो यार, जाके इसी में मैं एक जॉब करके, अगर मैं 2000 यूरो तक 1500 यूरो तक भी कमाती तो मैंने 28 साल इस चीज में लगा दिए, तो क्या आज मैं कितने घरों की जाती तौर पर नकद के ऊपर मालिक होती, मैं किराए खा रही होती, मैं ऐश करती, लेकिन मेरे पास क्या होता ये सोचने के लिए कि अगर अभी मेरी जान निकल जाती है तो मैं अल्लाह को क्या कहूंगी, मैं दुनिया में क्या करके आ रही हूँ।
1: नहीं, आपके लिए तो बड़ा आसान था कि आप शायरा हैं, राइटर भी हैं, आप कहती जी मैं फलाम मुशायरे में आ रही हूँ, मेरी रहाइश का बंदोबस्त करें, तो आपको जो गुलाम तो हर जगह मिल जाते हैं।
0: बिल्कुल, अगर मैं ये कहती कि हाँ मिले, लेकिन उसके साथ मुझे जो मखसूस दोस्तियां डालनी पड़ती ना, मखसूस दोस्तियों पे आपको ये रिहाइशें मिलती हैं और आपको पैसे मिलते हैं। अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती हूँ कि मैं अपना एक दिन या दो दिन यहाँ से अपना काम रोक कर आ रही हूँ, पर डे मुझे आप इतने पैसे अगर देते हैं, मुझे 100 यूरो पर डे भी अगर आप देते हैं, और देना चाहिए अगर आप किसी को बुलाते हैं तो दूसरे शहरों से दूसरे मुल्क से 100-150 यूरो और सफर का खर्चा दें, उसको रहने के लिए रिहाइश दें। ये अगर दूसरे मुल्क से बुलाया जाता है तो चले दो दिन के लिए, क्या भी हम 2 दिन या 3 दिन आपको हम ये सहूलत देंगे, उसके बाद आप कयाम करना चाहें तो आप जाती तौर पे करें, तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अगर कोई जाती दौरे पे आ रहा है, उन दिनों में आप प्रोग्राम रखते हैं, अब मैं स्पेन आई हूँ या मैं डेनमार्क में हूँ और आपको पता चलता है कि मुमताज मलिक आ रही है, तो आप मुझे कहते हैं कि चले बाजी आपके साथ प्रोग्राम करना चाहते हैं, वो एक और चीज है कि फिर मैं एक अपने एक विजिट पे हूँ, मैं आपके साथ शामिल हो जाती हूँ। लेकिन अगर आप बुला रहे हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको जरूर अगले बंदे का करना है। यहाँ पता है ग्रुपबाजी पड़ी है। वो किसी ने बड़ा अच्छा जुमला बोला था बहुत साल पहले कि अदब की दुनिया ही बेअदब है। तो अदब की दुनिया में अगर अदब होता ना तो फिर हक भी होता, इंसाफ भी होता, और फिर ये मुतशायर ना होते, गंद ना होते। आज उसको मशहूरी का सबब बना के लोग AI से बना के खरीद खरीद के राइटर से किताबें ला के एक एक साल में 10-10 किताबें मार्केट में, अभी एक एक दिन में आप एक किताब बना सकते हो, लेकिन क्या वो आपकी है? अपना बच्चा और सेरोगेसी में बड़ा फर्क होता है। ये सेरोगेसी के बच्चे ला ला कर अपने नाम से लोग फेंक रहे हैं कि लो जी ये मेरा बच्चा है, ये मेरा, ऐसे नहीं होता, आपकी वल्दियत आपकी ही रहेगी। तो यहाँ पे तो अब ये ड्रामा भी शुरू हो गया, पता नहीं क्या मशहूरी लेने के लिए, सिर्फ जिसके पास 4 पैसे हैं वो किसी भी शायर को वहां से हायर करके उसका कलाम खरीद के अपने नाम से उसकी किताब शाया करवा के आ गए जनाब मार्केट में। लेकिन बात ये ना कि जब राजा गफूर बोलेगा उसके अपने अल्फाज हैं तो पता चलेगा कि ये राजा गफूर के अल्फाज हैं। जब मुमताज मलिक बात करेगी, शेर पढ़ेगी या नसर, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे पास कोई पर्चे तो नहीं लिखे हुए, महफिल बदी बात इसलिए कर रही हूँ कि मेरे पास मुताला भी है, मेरे पास तजुर्बा भी है, मेरे पास मुशाहिदा भी है। 28 साल मैंने यहाँ पे झक नहीं मारी, मैंने 28 साल से यहाँ प्रॉपर लगातार काम कर रही हूँ फील्ड के अंदर, लोगों के साथ, फैमिलीज के मसाइल में। काउंसलिंग के लिए औरतें जब बात करती हैं, अपने मसाइल बताती हैं, तो पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। कहीं भी जाएं लोग एतमाद से बात करते हैं, हम उनके नाम पते उछालने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर, हम समझते हैं कि अपने तजुर्बात की रोशनी में उनके लिए कुछ अच्छी काउंसलिंग हो सकती है, बात हो सकती है, तो करें। बहुत सारे लोगों के मसले अब तक हल करवाए जिन्होंने, इसलिए कि मुझे मेरा नाम नहीं चाहिए कि मैंने कोई आपसे ये लेबल लेना है, लेकिन बात यह कि मुझे खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि उस शख्स का एक मसला हल हुआ, आज वो खुश है, मुतमईन है, इत्मीनान से, या उनके बच्चे अपनी जगह पर इत्मीनान से हैं, महफूज हैं, मुझे बहुत खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ख्याल है कि ये जो होती है ना बगैर लेबल के कोई अच्छा काम करने की कोशिश, या कोई आपके हाथों अल्लाह ताला कुछ करवा दे, तो ये खुशी, ये इत्मीनान इस दुनिया से जाने के लिए बहुत होता है, बहुत होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़े फखर से अपने बच्चों को कहती हूँ कि जिस वक्त मैं दुनिया से जाऊँ ना तो उस वक्त यकीनन मौत पर हक है, हम सबको वापस जाना है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। 50 साल से ऊपर वैसे भी हमारे पास सिर्फ बोनस टाइम होता है कि हम जितना जी रहे हैं ये एक बोनस है, आप जितना कमा

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सामो नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है। जिस तरह हमने बताया था कि हमारा स्पेशल प्रोग्राम होगा और ये इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है, इसमें वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हर मरीज चाहता है। मरीज हर तो मरीज नहीं होता, लेकिन जानकारी जो है वो चाहता है। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत है, इससे मीडिया से भी इनका ताल्लुक है, तालीम के शोबे से भी इनका ताल्लुक है, और ये स्टेट सेक्रेटरी अक्सर जो हैं वो नज़र आते हैं, और इनको जो है स्टेट सेक्रेटरी के नाम पर एक लोगो इनका बन गया है कि ये अच्छे स्टेट सेक्रेटरी होते हैं। मेरी मुराद है रिजवान भाई। रिजवान भाई, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़े कीमती अल्फाज बोले आपने, मैं इस काबिल तो नहीं था, लेकिन
1: नहीं रिजवान भाई, आप डिजर्व करते हैं। आप एक पढ़े लिखे हैं, मेरे लिए तो जवान नौजवान ही हैं, गो कि आप खुद बच्चों वाले हैं, लेकिन मेरे लिए नौजवान ही हैं। आप जो है ना काम करते हैं और दर्दे दिल भी रखते हैं, सोशल काम करते रहते हैं, लोगों की हाथ बंद करके मुट्ठी जो है इमदाद भी करते रहते हैं, लेकिन एक मर्ज, एक ऐसा मर्ज है जो कि मूजी मर्ज है। मूजी मर्ज के लिए जो है बहुत कम लोग जो है बहुत कम अस्पताल बनाए जाते हैं
2: जी।
1: तो कैंसर भी एक ऐसा मूजी मर्ज है जो ला इलाज है। अब तो इलाज इसका होता रहता है, लेकिन एंड दे आफ्टर एंड पे जाके जो है ना ये इलाज जो है फिर मुश्किल पड़ जाता है। तो रिजवान भाई, ये फंड रेजिंग के प्रोग्राम चलते रहते हैं। शौकत खान में एक बड़ा नाम है, छोटा नाम नहीं, इसको सियासत की नज़र से नहीं देखना चाहिए, इसको शौकत खान की नज़र से देखना चाहिए, कैंसर अस्पताल की नज़र से देखना चाहिए। शौकत खान को भी छोड़ दे, लेकिन इसमें जो मरीजों का इलाज होता है उस चीज़ को देखना चाहिए। तो यहाँ हमेशा हर साल फंड रेजिंग होती है, और अब हमेशा आप फंड रेजिंग में जो है वो स्टेज सेक्रेटरी ही नज़र आते हैं। आप बताना पसंद करेंगे जो फंड रेजिंग का प्रोग्राम हुआ है कहाँ आजकल में?
2: हाँ जी, आजकल में ये सुबोग में हुआ है, ये 17th को सितंबर को ये प्रोग्राम हुआ है, और इसमें जो है वो पाकिस्तान से जो गेस्ट आई हुई थी हमारी, जो इसके रिप्रेजेंट कर रही थी शौकत खानम को, उसमें एक डॉक्टर साहब आए हुए थे, मोहम्मद आलम साहब, और एक जो टीवी आर्टिस्ट हैं हरीम फारूक, वो आई हुई थी, जिन्होंने मिल के हमारे साथ ये प्रोग्राम किया है। और ये प्रोग्राम भी माशाल्लाह बाकी प्रोग्राम्स की तरह अच्छा गया है, लोगों ने बहुत इसको सराहा भी है, और लोगों ने इसमें जो है हमारे साथ फंड रेजिंग में हमारे साथ तावन भी किया है।
1: रिजवान भाई, हमेशा अच्छा होता है, इस दफा अच्छे से क्या मुराद लेते हैं आप?
2: इस दफा अच्छे से, जैसा मैंने कहा, जिस तरह हर दफा होता है, इस दफा भी अच्छे से मुराद मैंने यही ली है कि लोग बड़े, जो हमारे ऑडियंस हैं माशाल्लाह, इन लोगों में तो हम इतने सालों से रह रहे हैं, इन्होंने बहुत ही सुकून से वो जो डॉक्टर साहब ने प्रेजेंटेशन दी थी वो सुनी, और पाकिस्तान में जो इस वक्त कैंसर के पेशेंट्स की जो तादाद, बढ़ती हुई तादाद है, और उसके बारे में सुना, साथ ये भी उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि इसकी वजह से हमें कितने जो है वो अस्पताल के अंदर जो है वो अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, और हमारे जो पूरी दुनिया से जो शौकत खानम को फंडिंग जा रही है, और इंटरनली पाकिस्तान से जो लोग फंड कर रहे हैं उसकी कितनी अहमियत है। तो ये कुछ फिगर्स उन्होंने दी थी, जिसमें मतलब सिर्फ एक जो फिगर मैं ये बताऊंगा कि 4,300 करोड़ रुपया साल का बजट है शौकत खानम का।
1: एक बार दोबारा रिपीट करें,
2: 4,300 करोड़, यानी 43 बिलियन रुपीस
1: साल का बजट है। अच्छा खासा बजट है, बड़ा मजबूत बजट है,
2: और ये इतना महंगा इलाज है कैंसर का, इतना महंगा इलाज है कि मतलब आम बंदा इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। तो ये मतलब हमारे सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसके साथ वो चलें। अगर आप डेनमार्क की बात करते हैं, तो मैं अगर आपको डेनमार्क के बारे में कुछ बताऊं, तो वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो इसको लीड कर रहे हैं मिशन को, वो अयूब, मोहम्मद अयूब साहब हैं, ये प्रिंटो प्रेस वाले, और इनकी सरबराही में हमारी पूरी टीम काम करती है, और मुझे इतनी खुशी है कि इस तरह के लोग राजा साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इनिशिएटिव लेते हैं, हालांकि खुद भी ये सब हम लोग मसरूफ हैं, काम करते हैं, लेकिन हम एक छतरी के नीचे सारे जो है हम काम करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हमने यहाँ से फंड रेजिंग करके लाजमी तौर पे पाकिस्तान भेजनी है, अदरवाइज यहाँ सारे मुल्कों की तरह।
1: रिजवान भाई, बड़ा अच्छा काज है, लेकिन ये छतरी जो है ये पीटीआई की छतरी क्यों होती है? ये तो सबके लिए छतरी होनी चाहिए।
2: ये बिल्कुल ही इंतहाई गलत परसेप्शन क्रिएट की हुई है लोगों ने शौकत खानम का। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट हैज नो कनेक्शन विद पीटीआई। नो, ये जरूर है कि पीटीआई के जो लोग जो पीटीआई में काम करते हैं या उनके चाहने वाले हैं जो उनके कारकुन हैं वो शौकत खानम के टीम में भी काम करते हैं, लेकिन अगर आप एक दो दफा तशरीफ लाएं तो आप देखें कि कितने ज्यादा लोग हैं जो कि दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं।
1: जो आपकी ये फंड रेजिंग टीम है जो इसमें शौकत खानम की जो ऑफिशियल टीम यहाँ की बनी हुई है चौधरी अयूब साहब की छतरी के नीचे, जरा इनके नाम तो सुनाए हमें।
2: इनके मेन जो नाम है वो चौधरी अयूब साहब से तो मैं स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद जो है वो आता है आमिर दुरानी साहब का नाम आता है, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, इमरान महबूब हैं, मोहसिन मलिक हैं, जुल्फकार अली सिंधु हैं, जवेद इकबाल साहब हैं, और इसके अलावा मजर मलक साहब हैं जो कि बड़े प्रोमिनेंट फिगर हैं हमारे पीटीआई के काम करने वालों में से। फिर दो खवातीन हैं और इस तरह तलत साहब हैं, इस तरह फैसल साहब हैं, और भी काफी ऐसे लोग हैं जो नया इंक्लूजन हुआ है जिनके
1: फैसल
2: बारे में
1: अपना क्या नाम है रिजवान भाई। अगर इन चीजों सबको देखा जाए तो ये सारे पीटीआई के सरकर्दा लोग हैं। अयूब साहब तीन बार सदर बने या चार बार सदर बने, आमिर साहब जो है वो सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के बने या भी हैं, इसी तरह इमरान महबूब साहब हैं ये सबका सदर हैं, जो भी आप नाम लेंगे तो ये सारे पीटीआई के लोग हैं।
2: नंबर एक तो ये जी के दो तीन ऐसे लोग हैं जिनके मैं नाम भी नहीं ले सकता, मुझे याद नाम याद नहीं, जो नया इंक्लूजन हुआ है वो बिल्कुल वो पीटीआई के नहीं, उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपको नाम भी उनके भेज दूंगा। नंबर एक। नंबर दो, बात यह है कि पीटीआई के जो लोग हैं वो शौकत खानम में, अगर आप प्रोग्राम में तशरीफ लाते तो आप देखते प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में पीटीआई का पी का भी जिक्र नहीं हुआ ना किसी का। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जिन्होंने जिन्होंने ये शौकत खानम को बनाया है वो कितना अजीम आदमी है। देखिए, जब शौकत खानम में लोग इलाज कराए, ये बिल्कुल आप वही बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताऊं। जब शौकत खानम में मैं फर्ज करें मैं मुस्लिम लीग का जो हूं, मैं कारकुन हूं या मुस्लिम लीग को पसंद करता हूं, तो मुझे अगर खुदा ना खासा या मेरी फैमिली में से अगर किसी को ऐसा मर्ज हो जाता है तो जब मैं शौकत खानम जाऊंगा तो वो मेरे से ये नहीं पूछेंगे कि तुम पीटीआई के हो कि मुस्लिम लीग के हो कि काफ लीग के हो कि डी लीग के हो कि जी लीग के हो। उन्होंने मुझे वेलकम करना है और उन्होंने मेरा जान बचाने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। तो बायसनेस का अगर आप जिक्र कर रहे हैं राजा साहब, तो मुझे आप ये बताइए क्या आपके नजदीक ऐसी कोई, आप भी माशाल्लाह साफी हैं, कोई ऐसी मिसाल है कि कोई शौकत खानम में इलाज कराने गया और उसको सिर्फ इस वजह से निकाल दिया गया कि वो किसी दूसरी सियासी जमात से ताल्लुक रखता था? योर आंसर विल बी बिग नो। मुझे आप बताइए,
1: कैंसर का जो मरीज है ना उसके लिए कोई पार्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो कैंसर के लिए देखे, एक होता है बेनिफिशरी जिसके नाम से बनता है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने अपना कोई अभी अस्पताल बनाया, पैसे गवर्नमेंट के या उनके अपने जेब से लगे, इसी तरह कुछ चंदे से अस्पताल बना उनकी जेब से लगे या दूसरे लोगों ने पैसे दिए। कोई अस्पताल जो हुकूमत की तरफ से जो है ना वो नहीं बना, तो हुकूमत वजारत उजमा में रहे, इमरान खान साहब भी रहे, नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म रहे, इसी तरह पीपल्स पार्टी के पास भी वजारत उजमा रही और दूसरी जमातों के पास भी पावरें रहीं, ताकतें रहीं, तो उन्होंने कुछ सरकारी सतह पर कोई जो है ना इस तरह का अस्पताल नहीं बनाया। अगर किसी शख्स ने अपनी माँ के इलाज से मुतासर होकर चंदा इकट्ठा किया तो अस्पताल बनाया, बहुत अच्छी बात है, सब ने सराहा इसको, कहीं भी इसकी कोई मुखालफत करता है तो मैं नहीं समझता कि कैंसर अस्पताल की मुखालफत करनी चाहिए। अगर आपके पास चंदा देने के लिए एक रुपया है तो आप एक रुपया दें, दो रुपये हैं दो रुपये दें, फालतू जितने हैं आप ज़रूर दें, ये इंसानियत का इलाज है। लेकिन सरकारी सतह पर यह इलाज नहीं होता, इसके सारे बेनिफिशरी जो भी ये काम करते हैं बेनिफिशरी वही लोग होते हैं।
2: अल्लाह ताला ऐसे बेटों को हमारी कौम में बार बार पैदा करे। और मैं सिर्फ आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि ये शौकत खानम जो आपके पास बहुत नॉलेज, ये कितने सालों में बना था, आपके पास फिगर्स होंगी, कितने साल लगे थे?
1: बड़ा टाइम लगा जी, यहाँ तो बच्चों ने खड़े होकर, स्कूल के बच्चों ने खड़े होकर चंदा दिया, लाइन में खड़े होकर चंदा दिया।
2: तो आप मुझे बताएं कि अगर, अब मैं सियासत तरफ ऐसे बात लेके जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर सिर्फ 3.5 साल के लिए इमरान खान साहब हुकूमत में आते हैं, वो 3.5 साल में ऐसा कौन सा नया अस्पताल हुकूमत की तरफ से खड़ा कर सकते हैं, जबकि सारे उनके अपोजिशन तो हर जगह ही खैर होती है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे हैं, ये टाइम टेकिंग हैं। इसी वजह से जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है, जो भी हुकूमत में आता है, जिन लोगों के पास लंबी भी हुकूमत रही है, जिनके पास इतने सालों से रही है, वो क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये क्विक वोटिंग नहीं है सर, वो बनाते हैं इधर उधर के ब्रिज वगैरह ये बना दिए, तो उसमें उनको जो है वो एक्स्ट्रा जो एक वो मिल जाता है कि उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा आता है, फायदेमंद भी है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स इनसे भी ज्यादा फायदेमंद हो सकते थे, जिस तरह हेल्थ है, जिस तरह आप कह रहे हैं एजुकेशन है, तो मैं अभी भी ये कहूंगा। लेकिन हम बहरहाल, मेरा चूंकि आजकल पाकिस्तान की सियासत से इतना ताल्लुक नहीं है
1: नहीं, आप
2: और ना
1: सियासत नहीं
2: ही
1: करते। आप देखे ना, हाल ही में जो है वो नून लीग की वजीर आला है पंजाब की, तो उन्होंने 3 करोड़ या 3.5 करोड़ का जहाज जो है वो किराए पे लिया, किराया उसका दिया, तो उन्होंने उसकी पेमेंट भी कर दी। अगर लीडरान अगर इतने अमीर हो जाते हैं तो फिर ये फंड रेजिंग वगैरह छोड़ देनी चाहिए।
2: हाँ जी, फंड रेजिंग तो हम इसलिए कर रहे हैं ना कि हमें पता है कि मतलब मेरे पास कुछ फैक्ट, मेरे कुछ दोस्त वहां पे डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में, जिनसे जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे शौकत खानम के लिए, मुझे नहीं बल्कि हम सबको काम करना चाहिए, दुनिया में जो पाकिस्तानी जहां जहां है वहां पे उनको काम करना चाहिए। उनकी वजह से मुझे कुछ थोड़े बहुत ऐसी इत्तला मिली जिसकी वजह से पता लगा कि शौकत खानम हॉस्पिटल डेस्परेटली डेस्परेटली नीड्स आवर सपोर्ट, और इसमें हमारे ही अपने भाई बंद, अल्लाह ताला सबको सेहत याद रखे, तंदुरुस्त रखे, लेकिन जब जाते हैं तो उनका किसी पार्टी से कुछ नहीं पूछा जाता, किससे ताल्लुक है, उसको दाखिल कर लिया जाता है और उसका इलाज करने की पूरी। इसमें एक एक केस मेरी फैमिली में है और भी बहुत सी फैमिलियां हैं पाकिस्तान में और यहाँ पे डेनमार्क में जिनके पास ऐसे टेस्टिमोनियल्स मौजूद हैं। तो मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं ना किसी को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, मैं सिर्फ खुदा ताला की रजा के लिए कर रहा हूँ और उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनका और कोई भी नहीं है, अगर पैसों के हिसाब से देखा जाए, अगर हम उनकी हेल्प ना करें। अब अगर आप मतलब मेरा ये जो डिटेल है मैंने बताई है कि मैं इसके लिए क्यों काम कर रहा हूँ, शौकत खानम के लिए मैं क्यों काम कर रहा हूँ।
1: चलें, आप बताएं आप क्यों काम कर रहे हैं।
2: जी, मैंने यही तो बताया कि इस वक्त हमारी सपोर्ट की जरूरत है, अगर मेरे किसी अच्छे
1: चलें, आप
2: अल्फाज
1: दर्द दिल
2: से।
1: रखते हैं, ये अस्पताल बनने चाहिए और हर शहर में बनने चाहिए। अगर अल्लाह ताला तौफीक दे, गवर्नमेंट को दे तौफीक दे, पढ़े लिखे लोगों को, अमीर लोगों को तौफीक दे,
2: जी
1: जो अरबों की गाड़ियां रख सकते हैं, खरबों के घर बना सकते हैं, बैंक बैलेंस बना सकते हैं, अगर वो जगह जगह हर शहर में हर जिला में जो है ये बनने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको इससे आपकी सपोर्ट करता हूँ, फुली सपोर्ट करता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हाल ही में जो प्रोग्राम हुआ है, जब भी प्रोग्राम फंड रेजिंग का होता है तो उसमें पैसे बताए नहीं जाते, कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं और वो कहाँ गए हैं, किसको भेजे हैं। हर दफ़ा इतना, आजकल तो इतना मॉडर्न ज़माना है, जिस तरह ये DMC वाले करते हैं, आप 10 करोने देते हैं, सामने आपको स्क्रीन पर लिखा आ जाता है कि आपने 10 करोने दिए, कैश आपने दिया है वो सामने लिखा आ जाता है, तो एंड से प्रोग्राम जो है हर चीज़ सामने आ जाती है। लेकिन जब यहाँ शौकत खानम के लिए होता है तो इसके लिए जो है वो बैलेंस नहीं बताया जाता।
2: बिल्कुल, ये एक आपका सवाल बड़ा वैलिड है और ये आप अगर आप यूब साहब से पूछें तो वो आपको ज्यादा तफसील से बताएंगे। मेरे पास जो नॉलेज है वो ये है कि ये क्योंकि हर साल शौकत खानम का प्रोग्राम होता है, तो अभी मेरे ख्याल 2 इवेंट हुए हैं। मैं एक बार खुद, मेरे पास भी कुछ पैसे थे जो लोग दे जाते हैं और वो नाम भी नहीं बताते अपना, वो मैं यूब भाई को गया देने, उनके दफ्तर गया, तो उस वक्त वो पैसे भेज रहे थे, तो मेरे सामने जो एक बार, तो मेरे सामने ही मुकम्मल जो अमाउंट है वो भेजी गई है। तो मैं इसका तो मैं मतलब खुद चश्मदीद गवाह हूँ कि खुदा माफ करे, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस कोई गलत बात सोचे भी। और मैं अगर आपके सामने, चूंकि आपने जो मेरा तारुफ कराया, मैं उसकी रोशनी में कह रहा हूँ, अगर आप मुझे इस गहराई तक जानते हैं तो फिर आप ये भी जानते हैं कि मैं किसी बेईमान आदमी के साथ काम नहीं कर सकता। हमें इतना एतमाद है अपनी पूरी टीम पे और अयूब भाई पे, तो हम लोग फ्रेंटिकली काम भी इसलिए उनके साथ करते हैं कि वो बड़ी नीयत से बड़े उसे, और मेरा ख्याल है अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको सराहना भी चाहिए। और मैं तो चूंकि मैं बहुत आउटस्पोकन हूँ इसलिए मैं अभी
1: नहीं,
2: ऑन
1: नहीं
2: एयर
1: अय्यूब
2: कह,
1: साहब देने वालों में लेने वालों में नहीं।
2: हाँ जी बिल्कुल, तो इसीलिए मुझे, मैं उनके साथ, मैं तो एक किस्म का उनको बड़ा भाई भी समझता हूँ, कभी कभार मुझे उनसे डांट भी पड़ जाती है, लेकिन ये कि मैं यही समझता हूँ कि जिसना जो है मेरे सीनियर है, जिस इसमें माशाल्लाह आप भी शामिल हैं, अगर वो किसी बात पे मुझे बताते हैं या सजेस्ट करते
1: चलें
2: हैं तो मैं
1: रिजवान
2: पूरी
1: भाई
2: तरह।
1: आते हैं, जो प्रोग्राम हुआ 17 तारीख को प्रोग्राम हुआ तो तादाद कितनी थी।
2: करीबन जी थे मतलब 250 के करीब लोग तो थे,
1: तो फी टिकट कितना था पर पर्सन।
2: बड़ा ही नॉमिनल था, देखें जिसमें 200 ग्राम का टिकट था, जिसमें हमने खाना भी दिया है और कुछ अखराजात जो है वो भी अदा किए हैं जो सेपरेट थे, उनकी अभी फिगर मेरे पास नहीं आई, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें यही रहा है कि फायदा हुआ है, लेकिन ये कि काफी इकोनॉमिकली हमें चलना पड़ता है
1: मोबाइल
2: अपने तौर पर।
1: पेमेंट कितना हुआ है।
2: ये जी अभी फिगर मेरे पास अभी नहीं आए, میرا ابھی ان سے رابطہ نہیں ہوا ہے اس معاملے میں.
1: کیش پیمنٹ جو آپ کے ہوتے ہوئے دی گئی ہو؟
2: ہاں جی میرے ہوتے ہوئے دی گئی تھی, ہم ایک باکس میں کلیکٹ کر رہے تھے. تو اب یہ ہے کہ مجھے اگر میں باکس میں دیکھ کے آپ کو بتا دوں تو بڑا غلط ہوگا, اس میں گننے پڑتے ہیں پیسے. لیکن یہ جو سب کچھ ہے
1: ہر چیز کا گیس کیا جاتا ہے. اگر موٹی موٹی بات کی جائے 300 گیس تھے, لوگوں نے جو ہے وہ ٹیلی فون موبائل پہ بھی کیا, کیش بھی دیا, تو راؤنڈ اباؤٹ کتنی فکر بن جاتی ہے گیس کیا جائے؟
2: میرا خیال سب سے پہلے تو یہ کہ 250 کے قریب گیس تھے, تو اس میں آپ حساب لگا لیں, 200 کراؤن کے جو ٹکٹ ہے اس کے حساب سے آپ لگا لیں کتنا بنا, 40,000 ایک بن گیا, اور میرا خیال ہے 50 آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں 200 سے, تو یہ تقریباً یہ کوئی 50,000 کے قریب یہ تو ٹکٹ کا میرا خیال ہے بکے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل فگر جو ہیں وہ ابھی ہمیں میٹنگ ہماری نہیں ہوئی ہے, میٹنگ ہوئی گی تو اس میں پتہ لگے گا. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایوب بھائی کے پاس ایگزیکٹ فگر ہوں گے تو آپ ان سے بھی پتہ کر سکتے ہیں, ان کو بھی آپ آن ایئر لے لیں, وہ آپ کو پورا تفصیل بتائیں گے, کیونکہ ہماری پوری ٹیم اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو کوئی ایسا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کوئی ڈسکرپنسی بیچ میں آ جائے.
1: تو کیا یہ اکاؤنٹ یہیں ہیں, یہیں بینک میں چلے جاتے ہیں؟
2: یہ اپنا جو ہے یہ آپ ایوب بھائی سے پتا کریں. میں ایکچولی آپ سے اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں فائنینس گائے نہیں ہوں, میرا کام ہے پروگرام کو ہوسٹ کرنا, فنڈ ریزنگ کرنا, لیکن میرا کام یہ نہیں ہے کہ پیسوں کو مینیج میں نہیں کرتا ہوں. وہ ہمارے چونکہ اتنے لوگوں کو میں نے آپ نے نام لیا ہے, ان میں سے ایک دو لوگ جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں ایوب بھائی کے ساتھ مل کے جو کام کرتے ہیں, اور وہ ان کے پاس پورے فگرز ہوں گے. میں اگر کوئی فگر دے دوں تو وہ یا کوئی ایسا بیان دے دوں جو کہ مجھے نہیں پتا, تو وہ میرا خیال ہے زیادتی ہوگی.
1: تو چلیں رضوان بھائی, چونکہ اسٹیج سیکرٹری کے پاس بہت انفارمیشن ہوتی ہے تو میں اس لیے زیادہ سوال آپ پہ کر رہا ہوں.
2: اچھا ہاں, بس اس میں یہ ہے کہ اسٹیج سیکرٹری میرے علاوہ راجہ بابر صاحب بھی تھے, اور ظاہر ہے ہم نے بہت سے پروگرام اکٹھے کیے,
1: حالانکہ وہ بھی حساب کتاب کے بڑے تگڑے ہیں.
2: ہاں جو پھر ان سے تو آپ ہی از دا بیسٹ مین, اور ایوب بھائی ٹو آسک دیز کوسچنز. میں بڑا ایک فری لانس کے طور پہ کام کرتا ہوں, اور صرف شوکت خانہ میں نہیں اور بھی
1: چلے آتے ہیں. آپ کرتے ہیں اکثر, آپ جو ہیں وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, چلے بھی جاتے ہیں, چھوڑ بھی دیتے ہیں, پھر یہ آپ کو ہائر کر لیتے ہیں.
2: ہاں جی یہ ایک میں نے ایک دو بھائیوں نے اور بھی یہ پوچھا ہے, میں بالکل ناراض نہیں ہوا. جس طرح اب میں نے جتنا ان لوگوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا, اس سے آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ میں ناراض بالکل ان سے نہیں ہوں, کیونکہ یہ ہمیشہ ہی بڑی محبت ان کی محبت ہے کہ میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں, میں صاف کہوں گا. تو پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ یہ میرا لاسٹ, جب حمزہ عباسی صاحب آئے تھے میں نے کہا تھا کہ یہ میرا آخری پروگرام ہے, اس کے بعد میں ہوسٹ نہیں کروں گا. لیکن اس دفعہ دوبارہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ پروگرام ہوسٹ کریں, میں نے پروگرام ہوسٹ بھی کیا, سو آپ کا کام ہے. لیکن اصل جو وجہ ہے چھوڑنے کی وہ دو ہیں. اگر آپ کو تھوڑا ٹائم ہو تو میں آپ کو بہت تفصیل سے بتاتا ہوں کہ یہ وجوہات ہیں وہ کیا ہیں. نمبر ایک, میرا اس وقت جاب چینج ہوا ہے فروری میں, اور میں اب بہت زیادہ مصروف ہو گیا ہوں. مطلب اتنا ٹریول ہے میری جاب میں کہ سم ٹائمز مجھے خود یہ احساس ہوتا ہے کہ میں شاید اپنے آپ کو زیادہ I am putting more efforts on my body. یہ ایک میرا مین جو ہے کہ میرے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے. میں اگر پروگرام ہوسٹ کرتا ہوں تو بڑے دل سے کرتا ہوں, میں بڑی تیاری کر کے اس کی آتا ہوں تاکہ لوگوں کو میں محسوس کر سکوں. لوگ ظاہر ہے اگر جو آ رہا ہے 200 کراؤن خرچ کر کے, اس کی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ اس کو اچھا سننے کے لیے ملے, اس کو اچھا بیچ میں, اس لیے میں ایک دو لطیفے بھی وغیرہ سناتا ہوں, تو وہ اسی وجہ میں پروگرام تیار کر کے آتا ہوں. وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اب بالکل بھی. اب جس دن میرا پروگرام تھا میں اس دن اوڈینسے سے ڈائریکٹ آیا ہوں, اور بڑا مطلب اوور سپیڈنگ کر کے آیا ہوں کہ میں نے پروگرام میں پہنچنا ہے, گھر آ کے تیار ہونا تھا جانا تھا. یہ ایک میرا بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے. ابھی آپ کا جب فون آیا اس سے پہلے بھی میں ابھی دفتر کا کام ہی کر رہا تھا گھر بیٹھے ہوئے. ظاہر ہے جاب از یور بریڈ اینڈ بٹر, ہم کوئی فیکٹریاں ہماری تو ہماری چل نہیں رہی ہیں.
1: مجھے پتا ہے آپ مصروف ہوتے ہیں, میں نے آپ کو فون کیا, میں نے آپ سے ٹائم لیا. ظاہر ہے جس کے پاس ٹائم مصروف ہوتا ہے, قیمتی ٹائم ہے, آپ نے اپنے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے ٹائم دیا, آپ کا بہت مہربانی ہے آپ کی.
2: سر نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے. انسانوں نے کیا دینا ہے, انسانوں کی اوقات کیا ہے, میری کیا اوقات ہے کہ میں کسی کو اجر دے دوں, یا کسی کی کیا اوقات ہے؟ یہ اجر من جانب اللہ ملتا ہے, یا ان لوگوں کی شاید دعائیں مجھے لگتی ہیں کہ میں اپنا زندگی میں ترقی کر رہا ہوں, میں فلورش کر رہا ہوں, یہ شاید ان بے بس لوگوں کی دعائیں ہیں جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. اچھا, اب یہ ایک وجہ تو میری مصروفیت, بے انتہا مصروفیت ہے. دوسری وجہ جو مین ہے وہ یہ ہے کہ میں ہر دفعہ اپنا پروگرام جو ہوسٹ کرتا ہوں اس میں ہمیشہ یہ پیغام دیتا ہوں کہ اب نئے چہروں کی ضرورت ہے. इसलिए कि हम जब ये कहते हैं कि हमने इस मिशन को लेके चलना है और ये चलता रहेगा। देखिए राजा साहब, आज आप यहाँ मौजूद हैं,
1: आप जरा नए चेहरे बताए, क्या ये कंप्यूटर पे बनाए या किस तरह बनाए नए चेहरे लाए?
2: हाँ जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ सर। सवाल तो आप बड़ा मजेदार करते हैं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, आज मैं और आप यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह ताला सेहत याबी दे, सेहतमंद रखे, लेकिन आखिर कितने साल? मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब मैं 1998 में यहाँ पे आया था, तो मेरे जो इन लॉज हैं, वो उन सारों ने, मेरे ससुर साहब ने मिलके, वो जो लाहौर क्लब या लाहौर वेलफेयर आप जानते हैं, वो जो क्लब, वो मेरी दास्तान रही है कहीं ना नसाब में ना किताब में, वो जो थी उसके जेरे इंतजाम एक प्रोग्राम किया ईद मिलन पार्टी का। ये बात है 1998 दिसंबर की, ईद मिलन पार्टी का बंदोबस्त किया, या मेरे ख्याल मार्च अप्रैल की होगी 99 की, लेकिन बहुत साल हो गए हैं। अब उस वक्त जितने वहां मेहमान बैठे हुए थे, जितने लोग बैठे हुए थे, जाहिर है वो उसी एक एज के थे। अब वो जितने भी हैं उनमें से काफी जो हैं वो तो मौजूद नहीं है हमारे में, लेकिन जो हैं अब वो एज उनकी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो अपने घरों तक ही रहते हैं, वो ऐसे इवेंट्स में नहीं आते। तो अगर आप इससे इतना ही साल, अगर 20-25 साल आगे लगाएं, तो क्या हम लोगों में इतनी हिम्मत होगी? अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या आप में इतनी हिम्मत होगी कि आप ये प्रोग्राम कर रहे होंगे, या आप ये जो सामाजिक काम करते हैं वो कर रहे होंगे, या मैं कर रहा हूँ? तो देखें, देर इज ऑलवेज अ चेंज एंड नथिंग इज परमानेंट। मैंने इस बात पे जोर दिया है कि मैं बारिश का पहला कतरा बनता हूँ, मैं स्टेज से नीचे आ जाता हूँ, आप मेरी जगह किसी यंग को ढूंढें। यंग मैं इसलिए यंग कह रहा हूँ जो कि फटाफट, जो एजुकेटेड हो और डेनिश अच्छी बोलता हो,
1: जो भाई आप यंग की बात करते हैं, तो यंग के हवाले जब सारी तंजीमात हवाले की जाती हैं, जिस तरह ये एम्बेसी के सामने डेमोंस्ट्रेशन होती है, तो देख लिया यंग जो डेमोंस्ट्रेशन करते हैं वो कितने लोग इकट्ठे करते हैं। पिछली दफ़ा अयूब साहब ने अपने हाथ में ये काम लिया, तो उसकी तादाद भी देख लें। तो इसलिए हर चीज़ को यंग से साथ और उम्र सीधा के साथ नहीं तोलना चाहिए।
2: जी, ऐसी बात नहीं है, मेरा ये मतलब है कि आज अगर हमें यंगस्टर्स ज्वाइन करते हैं तो वो हमसे सीखेंगे, हम मौजूद हैं, ठीक है, ये ट्रेनिंग होती है बकायदा, और उसके बाद वो इस प्रोग्राम को अकेले हैंडल करेंगे। उसके दो फायदे होंगे, एक तो ये कि हम लोग जो आज यहाँ हैं वो कल नहीं होंगे, लेकिन शौकत खाना में तो चलते रहना है ना, अल्लाह ताला इसको आबाद रखे, कायम रखे, तो ये सफर कैसे चलता रहेगा? हम जब मतलब रिटायर हो जाएंगे तो फिर कौन शौकत खाना को चलाएगा? जब तक कि हमने ही आगे इसकी, इसको ट्रांजिशन कहते हैं, जब तक हमने इसको आगे ट्रांसफर ना किया नई जनरेशन में, मेरी बात नहीं समझने की कोशिश की।
1: मुझे खतरा महसूस हो रहा है कि आपने छोड़ दिया, आप जा रहे यंग के हवाले करने के लिए, मेरा आपका आखिरी प्रोग्राम है।
2: मेरा तो ये कम से कम आखिरी प्रोग्राम था, मैंने बता भी दिया है वहां पे, अयूब भाई को भी बता दिया है कि अब मेरा एक तो दफ्तर का टाइम, एक मेन वजह ये है कि मेरा मसरूफियात बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात यह है कि मैंने तो पिछले साल अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कह दिया था कि अब मेरा ये आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये प्रोग्राम करना पड़ा, और मैंने इनसे इस बार कहा कि हाँ ठीक है ये है, लेकिन इस दफा आखिरी है, आप किसी नए होस्ट को लेके आए, रिप्लेसमेंट लेके आए, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, अगर आप समझते हैं कि आपको मेरी हेल्प की जरूरत है मैं जरूर करूंगा, लेकिन ये है कि नाउ
1: तो राजा बाबर जो है उनसे अच्छा तो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो बहुत अच्छा जो है वो शेर व शायरी भी करते हैं।
2: हाँ जी, मेरी राजा बाबर साहब के साथ मैंने,
1: वो भी यंग है,
2: वो तो बिल्कुल यंग है ना जी, तो इसलिए उनका तो मैंने इसलिए जिक्र इसलिए नहीं किया कि वो ही आपको बताएंगे कि क्या उनकी फीलिंग है, क्योंकि वो
1: अपना रिजवान भाई आपसे दिल लगी कर रहे हैं, क्योंकि गपशप की शक्ल में ये प्रोग्राम में मैंने आपसे टाइम लिया है, तो उतना टाइम तो मैंने आपको पहले बता दिया था, मेरा इतना टाइम आपसे लूंगा, तो आप बताएं जरा आंखों देखा हाल बताएं, क्या हुआ, किस तरह आप दाखिल हुए, किस तरह लोग आए स्टेज सेक्रेटरी पे, क्या स्टेज सेक्रेटरी ने क्या किया, किस तरह वेलकम किया? जी आंखों देखा हाल,
2: इस दफा बहुत मैं बड़ा पॉजिटिव एक वाइब्स मुझे ये आई कि मैं नॉर्मली एज ए होस्ट जल्दी पहुंचता हूँ, लेकिन चूंकि मैं उडेंसे से आ रहा था तो मुझे थोड़ा डिले हुआ, लेकिन जब मैं पहुंचा हूँ तो तकरीबन आधी से ज्यादा जो कुर्सियां हैं वो भर चुकी थी, लोग आ चुके थे, और आहिस्ता आहिस्ता मतलब समझ लें कि 15-20 मिनट में पूरा हॉल जो है उसमें मेरे ख्याल मुश्किल से कोई कुर्सी खाली मिल रही थी, काफी लोग थे, और ज्यादा तादाद जो है वो ख्वातीन की थी, क्योंकि एक खातून जो गेस्ट है वो आ रही थी, तो उसके बाद फिर ये पता लगा कि वो भी तशरीफ ले आई हैं, हमने उनको रिसीव किया, और माशाल्लाह डॉक्टर साहब को रिसीव किया, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी हमें जो प्रेजेंटेशन दी, और पूरे लोगों के लिए लंबी प्रेजेंटेशन थी, नॉर्मली लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन हर एक बड़े ही उसको गौर से सुन रहा था, और इट वॉज एक्चुअली अ वेरी अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, आई वुड अप्रिशिएट, क्योंकि इससे जानकारी हमें ये मिली है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये मिशन। तो ये डॉक्टर साहब ने बताया, काफी लंबी प्रेजेंटेशन थी लेकिन बहुत ही ज्यादा शेर हासिल गुफ्तगु रही, बड़ा उन्होंने बताया। उसके बाद फिर हमने रहीम जो हरीम साहब को स्टेज पे बुलाया और फिर बाकायदा प्रोग्राम का आगाज हुआ।
1: कौन थी
2: ये? एक जनाब टीवी आर्टिस्ट हैं, ड्रामा में काम करती हैं और कुछ मेरे ख्याल एक दो फिल्मों में भी काम कर रही हैं, उनकी फिल्में भी शायद एक दो आने वाली हैं।
1: कोई ड्रामा किया या कोई नगमे सुनाए या क्या किया?
2: नहीं जी, बिल्कुल उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से फंड रेजिंग को ही जो है वो हाईलाइट किया और इसकी इम्पोर्टेंस बताई। और जो खवातीन आ रही थी, हमारी बहनें जो ऊपर फंड देने के लिए आ रही थी, डोनेशन देने के लिए आ रही थी, वो उससे हर एक से बिल्कुल उसी तरह मिली है जिस तरह एक अगर 1,000 दे रहा है और एक अगर जो है वो 100 क्राउन दे रहा है, वो उसी तरह ही अच्छे तरीके से वो मिली हैं, बहुत मोहब्बत से मिली हैं। और मैं फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम कह लें, मैं इंप्रेस हुआ हूँ एक तो अब्बासी साहब से और एक इनसे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के जो यंग जनरेशन आ रही है वो पढ़े लिखे घरानों से आ रही है और एजुकेटेड है और बहुत
1: रिजवान भाई, सबसे ज्यादा किसने दिया जब उन्होंने मांगे डोनेशन के लिए, तो सबसे ज्यादा किसने दिए?
2: सबसे ज्यादा किसने दिए, बड़ा अच्छा सवाल किया है। कुछ लोग अपना नाम नहीं बताते हैं लेकिन मैंने जो देखा है चंद लोगों ने 3,000 से 5,000 दिए हैं, लेकिन उनकी तादाद कुछ इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन जिन्होंने कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कह देते हैं जी कि हमारा नाम ना बीच में आए,
1: तो पैसे कुछ लोग लिखा भी देते हैं,
2: कुछ लोग लिखा भी देते हैं। अब वो बॉक्स और वो जो लिस्ट है, वो जैसे मैंने बताया कि अभी हमारा इस सिलसिले में कोई मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन बॉक्स में इस दफा सारे जो कैश था वो डाला गया है ओपनली ना, ट्रांसपेरेंट बॉक्स था, उसमें पैसे डाले गए हैं ताकि सबको पता लगे कि फंड्स जो हैं वो।
1: अक्सर हुआ रिजवान भाई, लोग लिखा देते हैं, देते नहीं है, वो लिस्ट जरा हमें भेज दे ताकि हम पढ़ते रहे, याद आनी कराते रहे।

0: है, उनके साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं, तो वो मेरे ख्याल काफी हैं इस पूरे इवेंट के लिए। और अगर हम किसी यंग को ट्रेन करना चाहते हैं, मेरे पास अगर टाइम होता तो मैं कभी भी ना छोड़ता, मैं इसको, इससे मोहब्बत है मुझे मेरे अपने काम से, जितना भी छोटा मोटा मुझे आता है, लेकिन मुझे
1: तो जिस
0: काम
1: तरह
0: की
1: ये
0: वजह
1: देखे ना,
0: से।
1: ये फंड रेजिंग के लिए मेहमान आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं जो वहाँ के एक सिस्टम से हायर किए जाते हैं, तो इसी तरह आप परमानेंट यहाँ को बंदा भी हायर कर लें।
0: परमानेंट ये है ना जी कि नथिंग इज परमानेंट, तो उसमें जो यंग आएगा ना बंदा, मैं दोबारा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने इस मिशन को लेके चलते रहना है, हमारे बाद भी इसको चलते रहना चाहिए। और देर इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग दिस कि हमारी जो पूरी टीम है वो एक छोटी टीम को अपने साथ यंगस्टर्स को लेके उनको ट्रेन करना शुरू करें। देखिए बहुत चीजें हैं, सिर्फ होस्टिंग तो एक बहुत इसका छोटा सा हिस्सा है, जो मैनेजमेंट है जो इसमें ज्यादातर इसको, जिसको अयूब भाई अभी चला रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा इस प्रोग्राम में भी के तौर से भी मैं यही कहूंगा कि अब कोई एक नया जो है, जिसको अच्छी यहाँ का कल्चर पता है, डेनिश लैंग्वेज में उसका अबूर है, उसको अयूब भाई के साथ समाबाइत करना चाहिए, उनके साथ मिलके काम करना चाहिए, ताकि उसको पता लगे कि क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, किन किन चीजों की तरफ ध्यान देना है, वहां से स्टार कैसे बुलाना है आगे आने वाले। आपको क्या पता है कि शायद आगे आने वाले टाइम में हम पाकिस्तान से कोई स्टार बुलाएं ही ना, 25 साल बाद यहीं का कोई लोकल स्टार आया हो, कोई इंग्लिश स्टार आया हो, और उसके तौर से जो है, जो हमारी अगली जनरेशन है वो ये प्रोग्राम अरेंज करे। क्योंकि शौकत खान हमको, मैंने अपने बच्चों को ये बताया है और ये कहा है, वो भी हर प्रोग्राम में डोनेट करते हैं, मैंने उनको ये कहा कि बेटा मैं रहूं या ना रहूं, डेफिनेटली एक दिन आएगा जब मैं नहीं हूंगा, लेकिन शौकत खान का ध्यान रखना, और बेटा इसके लिए जो भी है वो काम करते रहना जिस तरह भी हो। एक बात मैं आपको मजीद बताना चाहता हूँ, ये जो फंड रेजिंग है ये हम क्यों करते हैं जबकि ऑनलाइन खुली हुई है, मेरे ख्याल आप भी, आपके जिन भी ये चीज होगी कि
1: बिल्कुल,
0: ऑनलाइन
1: लाइनें खुली हुई हैं, अकाउंट्स बने हुए हैं।
0: जी बिल्कुल, और समवन कैन डायरेक्टली डोनेट टू शौकत खानम पाकिस्तान। तो अपरेंटली लगता तो ये है कि इस तरह के प्रोग्राम्स की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डोनेट कर सकते हैं, लेकिन वजह, अब मैं आपको इसकी मेन वजह बताता हूँ कि हम ये प्रोग्राम क्यों अरेंज करते हैं। देखें ये जो ऑनलाइन है इस पे लोग 100 भेज देंगे, 200 भेज देंगे, 500 भेज देंगे, कुछ भी, लेकिन फंड रेजिंग में कलेक्टिवली सारे एक ही तारीख में पैसे जो हैं वो डोनेट करते हैं, और हम लोग जो के स्टेज पे होते हैं या हमारे जो स्टार आए होते हैं, मेनली उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो अपना लोगों को जब इसकी अफादियत बताएंगे, इंसानी दिमाग इस तरह राजा साहब काम करता है कि एक वक्त में आपका दिमाग एक फैसला करता है और अगले ही वक्त में वो उस फैसले को चेंज करके दूसरा फैसला कर लेता है कुछ खास चीजों में। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताया जा रहा है कि जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, आप इसको इसमें 1,000 दे दें, मैं कहूंगा यार मेरे हालात तो ठीक नहीं है लेकिन मैं 1,000 दे देता हूँ, लेकिन राजा जब वो मोमेंट खत्म होता है ना, तो उस वक्त मेरा माइंड भी चेंज हो गया होता है। ये इंसानी बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूँ, और ये आप कहीं भी नेट पे चेक कर लें, इंसानी माइंड काम ही इस तरह करता है। तो फंड रेजिंग के प्रोग्राम में ये होता है कि जब हमारे जो गेस्ट हैं जो, और या जो शौकत खान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जब आके इसकी अफादियत बताते हैं, वो जब आके इसके फवायद बताते हैं और ये बताते हैं कि इसकी कितनी जरूरत है, तो वो लोग मेरे जैसे लोग जो कि 100 करोड़ या 200 करोड़ महीने का, या कभी कभार 100, 150, 200 इतना महीने का हम ऑनलाइन भेजते हैं, उनमें उनको भी एक किस्म की एनर्जी मिलती है और वो बढ़ के डोनेट करते हैं। तो इसके ऊपर बकायदा एक, ये खान साहब जब माशाल्लाह नहीं थे, जेल में बाहर थे, तो ये बकायदा इसके ऊपर एक इंटेंसिव एक डिबेट हुई थी, तो उसे ये पता लगा था कि फंड रेजिंग इवेंट्स में लोग ज्यादा इंटेंसिटी से
1: अच्छा,
0: फंड
1: जिस
0: रेजिंग
1: तरह
0: करते
1: आप
0: हैं।
1: देखे ना, मस्जिद में जाते हैं तो हालांकि चंदा पहले इकट्ठा कर लेना चाहिए, कपड़ा फैला लेना चाहिए, लेकिन हमेशा जब जूं ही नमाज ख़त्म होती है, ला इलाहा पढ़ते हैं तो साथ ही कपड़ा शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब क्राउड जब मौजूद होता है।
0: देखें आपने बिल्कुल वही बात कही, आपने माशाल्लाह इसका जवाब दिया मुझे, कि जब आपके, मतलब सिंपल उर्दू में, जब आपके जज्बात को उभारा जाता है ना जनाब, जब आपको ये बताया जाता है, इसकी इफादियत बताई जाती है। कुछ लोग, कुछ काम मैं और राजा बाबर भाई मिलके करते थे, मतलब ये कि अब तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये कि हम लोगों के
1: लेकिन
0: बाबर
1: बाबर
0: को,
1: साहब से जब भी रابطہ कायम किया जाए तो वो कहते हैं मैं ख़त्म पे जा रहा हूँ, बस अभी ख़त्म पे आया हूँ, अभी फातिहा पे आया हूँ, तो अभी मैं शिकार पे जा रहा हूँ, अभी मैं शिकार कर रहा हूँ, अभी मैं जनाब, अभी ये तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके लिए तो टाइम चाहिए।
0: जी खत्म पे तो जाहिर है वो दुआए खैर करने के लिए जाते हैं, तो वो तो नेक आदमी है, तो जाहिर है उनका, मैं भी खुद भी उनका बहुत मद्दा हूँ। और जिस तरह मैं दोबारा ये बात कहूंगा ऑन एयर के मैंने और राजा भाई ने शौकत खान
1: तो
0: को
1: आप
0: करीब
1: जरा
0: चार से
1: मेरी
0: पांच
1: अर्जी आगे
0: प्रोग्राम
1: भेज दीजिएगा कि अयूब साहब को और अपना राजा बाबर साहब को कल इतवार के प्रोग्राम में हम दावत

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन और नाजरीन, इस वक्त हम फ्रांस की फजाओं से एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप पाकिस्तान में टीवी पर देखते रहते हैं, अखबारात में पढ़ते रहते हैं और जानी पहचानी शख्सियत है, मेरी मुराद है सेनेटर सलीम ज़िया साहब। इस वक्त फ्रांस की फजाओं में हमारे साथ कोपेनहेगन डेनमार्क की फजाओं में मौजूद हैं। सेनेटर साहब, हम आपको कोपेनहेगन की फजाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
2: बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब, आपको और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। सेनेटर साहब, यहाँ चूंकि हमारे पास पार्लियामेंटेरियन आते रहे तो यहाँ का एक रवाज आप कह लें, यहाँ की मतलब मीडिया अपने मौजूद मेहमान से कहता है आप अपना तारफ करा दें ताकि कोई बात रह ना जाए, आप क्या करते रहे, इस वक्त क्या कर रहे हैं और क्या क्या आप अपने जो तालीमी हवाले से, अपने पेशे के हवाले से, फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
2: मेरा नाम सलीम ज़िया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, सेनेट का मेंबर हूँ। सियासत मैंने नहीं बल्कि तालीम के हवाले से पूछे तो तालीम मैंने अमेरिका से खुद अपना MBA किया, फिर पाकिस्तान आ गया, फिर यहाँ पर आके कुछ अर्सा मुलाजमत भी की, प्रैक्टिस की, वकालत शुरू की और फिर 1990 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की। उससे पेशतर मैं 83 में काउंसलर इलेक्ट हुआ, फिर 87 में काउंसलर हुआ, फिर 90 में काउंसलर इलेक्ट हुआ और फिर हमारा क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड है कराची में, बलदियाती अदारा है, उसका 12 साल में वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुआ। फिर 97 में जो हमारे जनरल इलेक्शन हुए उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से MP इलेक्ट हुआ कराची से, MQM के सिटिंग हमारे मेंबर थे, उनको उनसे मैंने ये सीट हासिल की और उसी में जो कैबिनेट बनी 1997 में, जिसमें लियाकत जतोई साहब थे चीफ मिनिस्टर, उसमें मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से वजीर कानून और मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स बनाया गया। और क्या होता है,
1: माशाल्लाह
2: आपने वो मामला चल रहा है, 12 अक्टूबर आ गया। 12 अक्टूबर में जाहिर है वो बड़ा एक जरा सख्त वक्त था, उसमें ये था कि हमारे 21 मेंबर्स थे जी, सारे 21 मेंबर्स में से ज्यादा तो नहीं छोड़ के गए पार्टी 12 अक्टूबर को, 21 में से 20 छोड़ गए, तो सिर्फ मैं रह गया उसमें। इसी तरह हमारे कौमी असम्बली के मेंबर थे उस वक्त 12 में से भी 10 छोड़ गए, सिर्फ एक रह गए। तो ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो बाद में फिर इंशाल्लाह जो वक्त आया तो फिर हम पार्टी के साथ ही रहे। काफी सख्त वक्त था मगर हम ये देखते थे कि जो हमारी क्यादत जिस तरह की सख्ती बर्दाश्त कर रही है तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे ये भी एहसास हासिल था कि जो उनके लिए डिफेंस टीम बनी थी बड़े वकला के साथ, मियां नवाज शरीफ साहब को जो एक झूठे जाली और बेबुनियाद हाईजैकिंग केस में उन पर बनाया गया था, उस पर मैं उस टीम में, उस डिफेंस टीम में मैं भी शामिल था और उनके साथ फिर हमारी अदालत में और जेल में मुलाकातें भी होती रही, तकरीबन हर रोज ही होती थी और मैंने उनको जेल में बहुत मजबूत पाया, हमारी तमाम टीम को, अपने शहबाज शरीफ साहब को और मियां साहब को, तो खैर थी वो सबके सबके सरपरस्ती थे, सबको बहुत अच्छी तरह मैंने देखा जांचा और मैंने देखा कि बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं। और बस यही है इंटरव्यू
1: माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई आपकी बातें सुन के। और मैं कहता हूँ यहाँ चूंकि हम लोग डेनमार्क में रहते हैं, कोपेनहेगन में, तो यहाँ जो बंदे डिजर्व करते हैं, मैंने आपकी थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानता था, जो मेरे सामने वेबसाइट पे पड़ा उतना ही थोड़ा सा मैंने देखा, माशाल्लाह आप डिजर्व करते हैं अपनी सीट पर, आपने एक वक्त दिया अपनी सारी जिंदगी का हिस्सा तालीम के साथ, अपने पेशे के साथ, सियासत के साथ, आप ग्रास रूट से भी ऊपर आए और ये आपका राइट बनता था, आपको अगर पार्टी ने ये दी है सीट तो आपकी जात पर कोई एहसान नहीं किया, आप डिजर्व करते थे। अब बातें हैं चूंकि आपने आपका सारा स्ट्रगल का दौर है,
2: ये आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप क्योंकि भाई हैं, आप मेरी असला अफजाई भी कर रहे हैं और सच बात यह है वो मुझ जैसे आदमी के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। یعنی ہماری نہ وہ خدمات ہیں نہ وہ حیثیت ہے, مگر پارٹی نے جو ہمیں جو کچھ دیا وہ میں تو کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں میری صلاحیت قابلیت سے کہیں کہیں زیادہ پارٹی نے مجھے عزت اور احترام دیا ہے.
1: یہ آپ کی ذرا نوازی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پارٹیاں اپنے ورکرز کو اپنے ساتھیوں کو ڈیفینیٹ سیٹ دیتی ہیں. میں کہتا اگر آپ ڈیزرو نہ کرتے تو میں کبھی بھی نہ کہتا کہ آپ سینٹر سیٹ کے قابل ہیں. جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں, اور پارٹی کا رائٹ بنتا ہے, یہاں بھی پارٹی بھی اپنے لوگوں کو جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ 21 ممبر تھے 20 چھوڑ گئے اور آپ اکیلے, تو میں اس اینگل سے میں نے کہا تھا کہ آپ کی ذات پر کوئی احسان نہیں ہے جو ہے نا. پارٹی تو ٹھیک ہے, ساتھی آپ پارٹیاں نوازتی ہیں, لیکن اب میری یہ بات آپ سے گزارش ہے کہ ابھی جو موجودہ پاناما لیکس کا ایک نیا اسکینڈل بنا, ایک نیا میں کہوں گا پنجابی میں ایک نیا کٹا کھول دیا عمران خان صاحب نے, آپ کیا کہیں گے؟
2: کچھ نہیں, یہ تو اصل میں عمران خان پہلے تو پاناما لیکس کو تو خیر ہم کر لیں گے. وہ پہلا مسئلہ تو خان صاحب کا اپنا ہے کہ وہ میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی سیاست وہ کرنے کے خواہش مند ہے. وہ وزیر اعظم بننے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اس پر بیانات بھی دیتے رہتے ہیں, مگر ان کی میں نے یہ دیکھا کہ کسی ایک بات پہ کہیں ٹکتے نہیں ہیں. یعنی ابتدا جو ہے وہ کہیں سے شروع کر ہوتی ہے بات, پھر کہیں جا کر کہیں رک جاتے ہیں. ابھی اسی کو دیکھیں, بعد میں دوسری باتیں اور بعد میں کرتے رہیں گے کہ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ جی یہ, اور خود ان کے ریکارڈڈ سٹیٹمنٹس ہیں کہ جی وہ اس میں جب پہلے میاں صاحب نے کہا کہ جی ہم ریٹائرڈ چیف جسٹس کو بنائیں گے اور وہ تحقیقات کریں, تو انہوں نے کہا نہیں سٹنگ چیف جسٹس ہونا چاہیے. اب سٹنگ چیف جسٹس کو بنا دیا گیا ہے اس کے لیے, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ بھی قبول نہیں ہے, اس پہ جو ٹی او آر ہونے چاہیے, فلانے ہونے چاہیے, ٹمکانے ہونے چاہیے, صرف نواز شریف کا ہونا چاہیے. کیوں صرف نواز شریف کا کیوں ہونا, تو سب کا ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب کا نام ہی نہیں ہے اس پورے فسانے میں, اس کا ذکر نہیں ہے پورے فسانے میں. ذاتی طور پر ان کا کہیں ذکر کوئی نہیں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے, پورے خاندان کو پیش کر دیا ہے, چیف جسٹس کے حوالے سارا معاملہ کر دیا ہے. اس پر بھی عمران خان صاحب راضی نہیں ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی ادھر چھپتے ہیں کبھی ادھر چھپتے ہیں. اور اصل میں ان کو مشکل پڑ گئی ہے ہاتھ پکڑ کر چلنے کی اور پیچھے چھپنے کی, کبھی انگلی اٹھانے والوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, اور ابھی بھی وہ اسی چکر میں ہے کہ کوئی داؤ پیچ لگ جائے, جائز ناجائز, جس میں جناب ان کا کوئی ان کو پار لگا دے, مگر کوئی بھی ان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کی کوئی سیاسی پارٹی ان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جن کو یہ بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ شاید ان کی مدد کریں گے, وہ ان کو بار بار ان کو بتا چکے ہیں کہ ان کا ان کاموں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے, پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے. اب یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں, بائی الیکشن جتنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, صوبائی ہوں قومی ہوں, سوائے ایک آدھ کے سب انہوں نے لوز کیے ہیں. کراچی میں انہوں نے جو 2013 کا الیکشن تھا وہاں انہوں نے بھائی جان 800,000 کی ووٹ دیے, وہ 800,000 ووٹ لے لیے, اور ایک سال کے اندر اندر, زیادہ ڈیڑھ سال کے اندر اندر وہاں پر بلدیاتی الیکشن ہوئے, کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے جی. وہ کنٹونمنٹ کے الیکشنز کے, میری آپ بات کو چھوڑ دیں, آپ ابھی اعداد و شمار منگا لیں, آپ کے پاس ساری فنگر ٹپس پہ ہوتی ہیں آپ لوگوں کے, آپ دیکھیں کہ وہاں پر جن حلقوں میں کنٹونمنٹ میں الیکشن جہاں ہوئے, جہاں پر 2013 میں ان کو کتنے ووٹ ملے تھے, اور یہ بلدیاتی جو کنٹونمنٹ کے بلدیاتی الیکشنز ہوئے اس میں کتنے ووٹ ملے. میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ایک آپ کا 250 کو میں جانتا ہوں, جہاں سے میں نے انتخاب لڑا تھا, اور پی ایس 113 سے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 80% ووٹ جو ہے کم پڑا ان کو ایک سال کے ڈیڑھ سال کے اندر, کیونکہ اس کی ایک تو پارٹی میں گروپ بازی بہت زیادہ ہے, پھر ان کا کنٹرول نہیں ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں یہ جو کراچی میں دو معاملات ہوئے بڑے عجیب, وہاں پر ایک سیٹ خالی بھی تھی, جس کا آپ دیکھ بڑا نوٹ کر رہے ہوں گے, پڑھ بھی رہے ہوں گے, کہ کینڈیڈیٹ نے الیکشن کی رات کو ایم این اے کا جو کینڈیڈیٹ تھا ان کا, انہوں نے الیکشن کی رات کو اس نے पार्टी छोड़ दी, टिकट वापस कर दिया, मुंह पे मारा इनके, और जनाब उन्होंने कमाल साहब को ज्वाइन किया। इसी तरह इनके पास एक बड़े मंजे हुए पुराने कारकुन थे, सैयद हफीजुद्दीन साहब, एडवोकेट
1: जी जी,
2: वो एमपीए थे, सिटिंग एमपीए, अभी भी असेंबली के मेंबर हैं। वो सब चीजें छोड़ छाड़ कर इनको उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ मजीद में चल ही नहीं सकता, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। तो इनके साथ मसला ये है कि इनके पार्टी पे ग्रिप नहीं है। अभी कराची, ये अभी जो परसों जलसा हुआ है इस्लामाबाद कल, उसमें भी आप देखें हाजिरी की क्या हालत थी, जज्बे की क्या हालत थी, जोश की क्या हालत थी पहले के मुकाबले में। वो मतलब वो चीज थी नहीं जो आज से एक डेढ़ साल पहले थी। उसमें कमी आती जा रही है, कमी आती जा रही है, क्योंकि एक जगह टिकते नहीं है, एक जगह पे रुकते नहीं है, और दूसरा एक मशवरा तो लेते ही नहीं है बिल्कुल, और सिर्फ ये इस चक्कर में है कि कोई दाव पेच लग जाए, कुछ हो जाए, बस मुझे किसी तरह कल नहीं तो आज नहीं तो अभी इसी वक्त मुझे किसी तरह वजीर आजम बना दिया जाए। होता नहीं ऐसे ना, ये तो बड़ा ठंडा काम है, बड़ी ठंडा करके खाना पड़ता है इसमें। वो क्यों इतनी जल्दी में है वो शायद वो खुद ही बता सकते हैं, मगर मुझे एक बात समझ में आती है, इनको सबसे बड़ा जो खतरा है इमरान खान साहब को
1: जी,
2: वो ये कि अगर डिस्प्यूट से नवाज शरीफ साहब की पूरी पार्टी और उनकी गवर्नमेंट जो है जिस तरह वो मामलात को लेकर चल रही है, और यही अगर 2018 तक चलता रहा इसी तरह इसी स्पीड से मामला, तो उनको पता है कि 2018 में ये बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगे। अभी भी वाइप आउट ही है तकरीबन। पंजाब में देखें इनकी कई सीटें नहीं है, दूसरे सूबों में कई सीटें नहीं है सवाय खैबर पख्तूनख्वा के अलावा। तो इनको खतरा ये है कि यार 2018 तक अगर ये इनको हमने जाने दिया और इसी स्पीड से ये कार्रवाई करते रहे अपने, और इनकी मकबूलियत इसी तरह बढ़ती रही और बाय इलेक्शन इसी तरह ये जीतते रहे, तो 2018 में तो हमारा कोई टिकट भी नहीं लेगा। ये इनको खतरा ये है और कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये अगर थोड़ा सा हौसला कर लें, थोड़ी सी हिम्मत कर लें, तो इनके साथ मामला ठीक भी हो सकते हैं। मगर जो आदमी इतनी जल्दी में होता है ना जी, वो मैंने तो उसको आज तक आगे जाते हुए नहीं देखा। तो ये बहुत बड़ी एक एक्सेप्शन होगी अगर इनको कोई चीज हासिल हो।
1: सलीम साहब, आज बात चूंकि मैं मीडिया में हूँ, मैं एक बात आपसे शेयर भी कर रहा हूँ। इमरान खान साहब इतने उस वक्त पॉपुलर नहीं थे, मैं चंद साल पहले की बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड में मेरी इनसे एक जगह मुलाकात हुई, मैं भी गेस्ट था, मुझे इंग्लैंड से किसी ने बुलाया था, तो वीआईपीज हम बैठे हुए थे, तो मुझे कहने लगे राय साहब आप क्यों नहीं सियासत में हिस्सा लेते, तो आप एक ऑफिस खोले। तो हम बस आपको, मैंने कहा मैं ठीक है जो काम करता हूँ मैं इसमें खुश हूँ, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। तो मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि इमरान खान साहब ये बात क्यों कर रहे हैं कि आप लोग ऑफिस खोले। तो मुझे जब ये धरने की बात हुई, इस्लामाबाद की बात हुई, तब उसका जवाब मुझे मिला। तो इसका मतलब है कि प्लानिंग बहुत पहले की हो चुकी थी।
2: जी जी जी जी, ये प्लानिंग तो बहुत करते रहते हैं, ये प्लानिंग तो करते हैं। कभी मुशर्रफ के साथ बहुत अरसा चले, उन्होंने जब वजीर आजम नहीं बनाया ठुकरा दिया, उसको छोड़कर आ गए। फिर नवाज शरीफ साहब की भी बहुत नजदीक आने की कोशिश की, और फिर बहुत ही बहुत ज्यादा डिमांड कर दी सीटों की, जाहिर है वो भी इनको मना कर दिया गया। तो ये मुख्तलिफ हरबे मुख्तलिफ वक्तों पे कोशिश करते रहते हैं, और बस जाहिर है मगर इन चीजों में कामयाबी कहाँ होती है।
1: चलें देखें ना, जब मियां साहब की बात करते हैं कि मियां साहब के ऐसे है पैसे है, करप्शन की बात करते हैं, तो जब अभी इनकी जहाज पे तस्वीर नजर आ रही थी, एक तरफ अलीम खान बैठे हुए थे, दूसरी तरफ जंगी तरीन खान साहब बैठे हुए थे, तो जो लोग हम लोग
2: दो एटीएम जो है, जी जी जी जी, अच्छा मैं समझ गया, उनको आजकल एटीएम ग्रुप कहलाता है।
1: बिल्कुल एटीएम ग्रुप है। तो वैसे इमरान खान साहब जितने सर मतलब पैसे वाले लोग होते हैं और जिन्होंने पैसा किसी और तरीके से बनाया होता है, उनको अपनी पार्टी में लेते हैं, ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई है यूरोप में। सलीम साहब, हम आते हैं कि ये जो सारे हालात चल रहे हैं और मियाँ साहब जो अब खुल के बिल्कुल फ्रंट लाइन पर आ गए हैं खेलने के लिए, और अब ये जलसा जुलूस जो शुरू हो गया, और मियाँ साहब ने आज कोटली सतियां गए थे, उसके बाद एबटाबाद जा रहे हैं, फिर कराची जाएंगे, तो कहीं ये इलेक्शन की तैयारियां तो नहीं है?
2: नहीं सर, नहीं कतर नहीं। इलेक्शन तो मैं देखे राजा साहब आपसे मैं अर्ज कर दूं, आप तो भाई हैं, और मैं आपको बिल्कुल ये पार्टी से हटकर मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्शन 2018 में ही होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। ये क्योंकि एक एक्टिविटी उन्होंने शुरू की है, तो और ये खाम एक इन्होंने एग्जाम तराशी का सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये सिर्फ इसी हद तक महदूद है हमारी पार्टी की तरफ से। हमें कोई जल्दी नहीं इलेक्शंस पहले कराने की। हमारी पोजीशन हर जगह माशाल्लाह मजबूत है, ख्वाह पंजाब में हो, बलूचिस्तान में हो। अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह जो इंतखाबात होने जा रहे हैं आजाद कश्मीर में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखेंगे गिलगित बल्तिस्तान की तरह वहां भी हमें जबरदस्त कामयाबी होगी और वहां पर भी हमारा ही कैंडिडेट जो है हमारी पार्टी वहां पर हुकूमत बनाएगी इंशाल्लाह।
1: सलीम साहब, इसमें कोई शक नहीं कि अगर मुस्लिम लीग नवाज बिजली और ये गैस का बुरान जो है ये अपने आने अगले इलेक्शन 2018 से पहले पब्लिक को ये चीजें मिल जाती हैं तो पब्लिक बादर नहीं करती। देखिए पेट्रोल सस्ता हो गया, गैस भी सस्ती हो रही है, तेल भी सस्ता हो रहा है, तो पब्लिक को तो जो सहूलतें चाहिए। पब्लिक इतनी दूर की नहीं सोचती कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, सूबाई असेंबली में क्या हो रहा है, वो ऊपर वाले लोग
2: देखते हैं। आम आदमी तो देखता है कि यार मेरी जेब से पैसा निकल कितना ना रहा है, खर्चा कितना मेरा कम हो गया पहले से या ज्यादा हो गया है। वही आपकी बात दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि ये 2018 से पहले इंशाल्लाह इंशाल्लाह खुदा चाहेगा कि ये जो बिजली का मसला है और पानी का मसला है, ये बुनियादी तौर पर जो दो मसाइल हैं एनर्जी के और उसके, ये बिल्कुल कवर होंगे। और फिर ये जो बहुत बड़ा बीच में मामला आ गया है हमारा, ये चाइना के साथ जो हुआ है सी पैक जो हुआ है,
1: कोई शक नहीं
2: ये 47 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है। इसमें सड़कें हैं, रोडें हैं, पोर्ट्स हैं, ग्वादर पोर्ट है और बहुत सारे इसमें इंटरलिंक्ड प्रोग्राम्स हैं। और तब तक इंशाल्लाह वो भी बाय तकमील तक पहुंचने वाला होगा, यानी उसके नजदीक होगा। उसके जरिए बलूचिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट होगी, ग्वादर पोर्ट काफी स्टैब्लिश हो चुका होगा, सड़कें बन चुकी होंगी, हाईवेज बन चुके होंगे, मोटरवेज बन चुके होंगे और उसके लिए तो आए दिन यहाँ पर उसकी तशरीह भी हो रही होती है, बताया भी जा रहा होता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये इनको खतरा है, ये दूसरी जो पार्टीज है खुसूसी तौर पर ये इनको इमरान खान को खतरा है, ये बाकी और कोई बात नहीं है। बाकी ये जो आप समझ रहे हैं जो हमारी क्यादत इस मामले के लिए कि उन्होंने जरा तेजी शुरू की है, तो उसका जवाब दे दिया जाए कि जनाब ये सारा चीज झूठ झूठ का पलंदा है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखें या तो होता ना कि नवाज शरीफ साहब कह देते जी कोई कमीशन नहीं है, कोई जुडिशियल कमीशन नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस नहीं है, कोई सर्विंग चीफ जस्टिस नहीं है, मैं नहीं मानता किसी को, बस मैं जो जो है जिसने जाना अदालत वो खुद चला जाए। वो अप्रोच तो की नहीं। मियां साहब ने तो एक बहुत ही दिलेरी का भादरी का मजारा करते हुए ये कह दिया कि चलो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करेगा सारी चीज कार्रवाई करेगा और मैं अपने पूरे खानदान को पेश करता हूँ। अब इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है? चाहते क्या है ये नहीं समझ में आता। इमरान खान साहब या तो कोई ऐसा तरकीब कर दिया जाए, इमरान साहब आप मेरी मदद फरमाए, मेरी मैं इस बात की मैं भी सिफारिश करने के तैयार हूँ कि इमरान खान साहब कोई बना देते हैं चेयरमैन।
1: बिल्कुल, मैं आपसे ये बात कहने लगा था कि आप चेयरमैन से भी ज्यादा दें, चूंकि मियां साहब देने वाले हैं तो उन्हें कहें यार आओ। मैं इमरान खान साहब से मैंने बात की इंग्लैंड में, मैंने कहा खान साहब आप इस तरह करें, आप अगर मियां साहब के साथ मिलते, आप मियां साहब के साथ होते तो मैं डेफिनेट आज कम अज कम पाकिस्तान की बहुत बड़ी पोस्ट पर आप ही होते।
2: जी जी जी जी।
1: लेकिन आप
2: बस वो अपना ठीक है, आदमी का अपना नजरिया होता है, हम उनको और तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता उनके लिए, मगर जो कुछ मैंने देखा है ये 4-6 साल में उनको ऑब्जर्व किया है कि वो एक बहुत ही कंफ्यूज शख्सियत मैंने उनको पाया, बहुत ही वो
1: हालांकि ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, यूरोप में रहे हैं, उन्हें तो देखें जिस तरह वो पाकिस्तान में जलसे जुलूस में तकरीर करते खिताब फरमाते हैं तो पता नहीं चलता कि ऑक्सफोर्ड से गए हुए हैं।
2: नहीं, वो जाहिर उनके लबो लहजे में और बहुत ज्यादा बीच में गलाजत भी होती है, बेहूदगी भी होती है, पर आपने ये देखा कि हमारे लीडर ने कभी उसको जवाब नहीं दिया,
1: कभी भी नहीं, बहुत इसमें कोई शक नहीं।
2: यही कहा कि बल्कि ये बरमला कहा है, ये अल्फाज उन्होंने कहा है कि मुझे इमरान खान गालियां भी देता है और मैं उसके लिए हमेशा दुआ करता हूँ। अब ये देखा ना, कोई ये तो आदमी के जर्फ की बात है कि वो आदमी ये कह रहा है और मियां साहब कह रहे हैं कि मैं उनके लिए अभी भी हमेशा दुआ करता हूँ।
1: जहाँ डिबेट चल रही थी, उन्होंने कहा जी देखे मियां साहब ने इनको अस्पताल के लिए जगह दी, यूनिवर्सिटी के लिए जगह दी, क्रिकेट साथ खेलते थे, बहुत सारे अच्छे तलुकात थे, मियां साहब ने कौन सी ज्यादती की है खान साहब? चले छोड़े इन बातों को, आते हैं चूंकि आप आए हुए हैं, मेहमान हैं आप। सलीम साहब, आपको फ्रांस कैसे लगा? और मैंने देखा कि आपने पाकिस्तान एम्बेसी का भी विजिट किया।
2: बताऊंगा आपको, मैं एक बात कहना चाहता हूँ।
1: जी जरूर।
2: ये हमारी जो सियासी पार्टीज हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, हम समझते हैं कि हम तो सारा दिन भी अगर सिजदे में पड़े रहे ना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें सारा दिन, तो वो भी कम है, क्योंकि हमें जो ये पाकिस्तान मिला है ना अल्लाह ताला की तरफ से,
1: नेमत है
2: ये, मैं कहता हूँ इतनी बड़ी नेमत है कि जिसका कोई हिसाब कोई नहीं है। ये लोग अभी कई, अच्छा कई लोग तासुर ये देते हैं, हालांकि पढ़े लिखे भी हैं, बाशऊर भी हैं, वो तासुर ये देते हैं कि शायद पाकिस्तान ऐसी चलते चलते चलते चलते रात हुई और फिर सुबह उठे तो पाकिस्तान बन गया। नहीं, ये तो ये याद दिलाना पड़ेगा हमें अपने बच्चों को, अपनी औलादों को, अपने नए लोगों को कि भाई ये इस तरह नहीं बना है। या पुराने लोग भी हम देखते हैं, वो भी तो लगता है कि भूल गए कि पाकिस्तान बना कैसे। पाकिस्तान तो बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद बना है। इसमें तो कायद आजम मोहम्मद अली जिना और उनके जो रफ्तकार थे अलामा इकबाल साहब थे, सर सैयद अहमद खान थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर और ये सरदार अब्दुल रब नेश्तर, ये दुनिया जहान के जो लोग थे, मौलवी फरीद हक, ये लोग तो वो लोग थे। और फिर इन लोगों की कुर्बानियां, लाखों सैकड़ों जो वर्कर्स थे उनकी कुर्बानियां, और आखिर में जो तकरीबन 18 लाख के करीब जो लोग शहीद हुए थे पार्टीशन के वक्त, ये उनकी कुर्बानियों से पाकिस्तान बना है। ये कुर्बानियां दी गई हैं, लोगों ने अपनी जान का नजराना देकर पाकिस्तान बना है, खून देकर बना है। ये हमें किसी इंजीनियर ने, किसी डॉक्टर ने, किसी खिलाड़ी ने या किसी जनरल ने फतह करके नहीं दिया पाकिस्तान। हमें ये पाकिस्तान वहां मुसलमाना ने हिंद, जिन्होंने लाखों लोगों की वाकई कुर्बानी दी, अमली तौर पर कुर्बानी दी, उसकी वजह से हमें ये पाकिस्तान मिला है। और आज हमें कोई ये सबक सिखाए कि जनाब ये हो गया है और वो हो गया है। मैं समझता हूँ राजा साहब एक बात बिल्कुल तय है, पत्थर पर लकीर है कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, पाकिस्तान ने बहुत आगे जाना है
1: इंशाल्लाह,
2: और वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जाएगा कि अगर यहाँ पर जमहूरियत रहे,
1: इसमें
2: जमहूरियत रहेगी पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह,
1: इंशाल्लाह
2: कोई यहाँ पर निजाम नहीं चल सकता,
1: हाल ही दूसरा हल नहीं है।
2: जब भी जमहूरियत डिरेल हुई है पाकिस्तान में जबरदस्त नुकसान हुआ है, जबरदस्त किस्म का नुकसान हुआ है, ख्वाह वो बांग्लादेश के हवाले से हो, ख्वाह ये जिस तरह हमें आग में झोंक दिया गया, अफगानिस्तान वॉर में झोंक दिया गया, या फिर जो सबसे ज्यादा जुल्म और जबर जो किया जनरल मुशर्रफ ने किया, जिसने ये तमाम सारी चीजें जिसका आज हम कुमायदा भुगत रहे हैं, जिसमें तकरीबन हमारे 60,000 लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें 15,000 हमारे बहादुर फौज के लोग हैं, ये सारे ये इसी वजह से शहीद हुए कि ये गलत पॉलिसियों की वजह से। मगर आज देखें अभी आप ये बीच में बात रह गई, ये बातें करते हैं कि जनाब ये अभी दो बड़े मसले थे जब इख्तदार में आई पार्टी, शुमारी वजीरस्तान वहां को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। देखें बात इंसाफ की होनी चाहिए, वजीर आजम उस वक्त भी था कोई, उस वक्त जनाब सारे मामला थे, सारी चीजें थी, फौज भी थी, रेंजर्स भी थी, सिविल इंतजामिया भी थी, वहां पर कुछ काम नहीं किया गया। इसी तरह कराची में वहां पर तो पिछले 27 साल से दो पार्टियां हुकूमत कर रही हैं, पीपल्स पार्टी और MQM, वजीर आला भी था, गवर्नर भी था, मिनिस्टर्स भी थे, मुशीर भी थे, असेंबली के मेम्बरान भी थे, कौमी असेंबली के मेम्बरान भी थे, सेनेटर भी थे, रेंजर्स भी थी, फौज भी थी, नहीं किया कुछ किसी ने, क्योंकि एक पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं था। अब इस दौर में जब जैसी हुकूमत आई तो मियां साहब ने दोनों के मामले में, वो वजीरस्तान के हवाले से हो और कराची ऑपरेशन के हवाले से हो, उन्होंने तय कर लिया कि हमने इन दोनों मामलों को सही करना है। कराची जो है पाकिस्तान की शहर आ गया, ये तमाशा बना दिया गया है, वहां पर 20,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, टारगेट किलिंग में मारे जा चुके हैं, कत्ल किए जा चुके हैं, अगवा बराए तावान हर रोज का मामला था। इसी तरह शुमाली वजीरस्तान में अमाजगा थी, नर्सरी थी, हेडक्वार्टर था दहशत गर्दों का, वो हमारे बहादुर फौज ने, हमारे सिपाहियों ने, हमारे अफसरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। आज आप देखते हैं कि वहां पर मामला बहुत ठीक है। इसी तरह कराची में भी उन्होंने सिंगल हैंडेडली नहीं किया, ये नहीं किया कि मैं करूंगा, नवाज शरीफ ने कहा कि मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, सूबाई हुकूमत भी होगी, रेंजर्स भी होगी, आर्मी भी होगी, सिविल सोसाइटी भी होगी और दीगर पार्टीज भी होंगी, सबको साथ लेकर चलेंगे और हमने यहाँ पर नतीजा देना ही देना है, अक्रॉस द बोर्ड होगी, और वही आज उसका नतीजा देते हैं। वरना राजा साहब ईद के दिन हाजिरी कम होती थी नमाजों में, जुमे की नमाजों में कम होती थी, 6 सितंबर को कोई बाहर नहीं निकलता था, 14 अगस्त को लोग बाहर नहीं निकलते थे, ईद के दिन जो मेले होते थे वो उन्हें बंद हो गए थे कई सालों से। इस मरतबा पहली मरतबा ये हुआ है कि जनाब वहां पर खुलम खुला वहां पर सारी चीजें हुई हैं, लोग धड़ाधड़ बाहर निकले हैं। ये वोट इलेक्शन की बातें करते हैं आज, ये धरने ये बातें करते हैं जलसे जुलूस करने की, ये खुद कहते थे कि हमारे पास लोग नहीं, हम लोग लोगों को जनाजा कंधा दे सके, इतने इतना दहशत और इतना खौफ था।
1: इसमें कोई शक नहीं, इससे हुकूमत को क्रेडिट जाता है, हुकूमत की मर्जी ना हो तो फौज तो हुकूमत के साथ चलती है, फौज तो जो हुकूमत कहेगी फौज ने तो वो करना ओबे करना है। स्लिम साहब आप तो एक दो आखिरी सवाल करते हैं, मुझे पता है मसरूफ है। स्लिम साहब आपने विजिट किया, आपने गालिब साहब से आपकी मुलाकात हुई, गालिब साहब माशाल्लाह बड़े पॉपुलर हैं, जो मेरे पास नॉलेज है को वो पसंदीदा शख्सियत है, बहुत कम ब्यूरोक्रेट्स हमने देखे हैं, बहुत कम एम्बेसडर देखे हैं जिनसे हम लोग मोहब्बत करते हैं। तो आपकी मुलाकात हुई, आपने लोगों को अपने साथियों से या पार्टी के लोगों से या आम लोगों से आपकी मुलाकात हुई तो उनका क्या नजरिया एम्बेसी के बारे में, एम्बेसडर साहब के बारे में?
2: मैंने अपोजिशन की सियासत खासकर जनरल मुशर्रफ वक्त में इतनी ज्यादा की, मैं आज उनको भी कह रहा था कि किसी अफसर की तारीफ करना जो ना वो उससे जबान लड़खड़ाती है, या किसी की भी तारीफ करते हुए क्योंकि ट्यूनिंग ज्यादा अपोजिशन की हो गई है। मगर मैं आपको सच बात बताऊं, मैं यहाँ 4 दिन से आया हुआ हूँ। मैं आया तो था, हमारी कॉन्फ्रेंस थी वहां इस्लामाबाद में अपना वॉशिंगटन में, और फिर मेरे यहाँ पर कुछ चेकअप्स वगैरह थे तो मैं फ्रांस भी आ गया। तो मैंने यहाँ पर देखा कि आमतौर पर जिस जगह भी मुल्क में जाएं तो वहां लोग सफारत खाने की कार्रवाई पर जरूर अपना तबसरा देते हैं। मैं गया मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, तो यहाँ पर जब मैं आया, जब से मैं आया था मैंने देखा कि किसी ना किसी बहाने कोई ना कोई लोग, जो आसानियां पैदा हो गई हैं पिछले 3-4 सालों में, 3 सालों में खासतौर पर, उसका वो जिक्र जरूर करते थे एम्बेसडर साहब। मैं जानता नहीं, मुलाकात ही नहीं थी मेरी, मैं नहीं जानता उनको, तो उसका जिक्र जरूर करते थे कि जी बड़ा उन्होंने काम किया है। मसलन मैंने कहा भाई क्या क्या काम कर दिया, क्या तारीफें की है, क्या जो इतनी तारीफ कर रहे हो क्या वजह क्या है उसकी? उन्होंने कहा जी पहले तो ये था कि यहाँ पर कोई हमें पूछता नहीं था, पासपोर्ट रिन्यू कराने जाते थे, और क्या काम होता है वहां, लंबे चौड़े को काम होते नहीं है। कहने जी छोटे छोटे काम के लिए जाते थे तो कई कई दिन लग जाते थे, लाइनों में लगना पड़ता था, सुबह जाते थे रात को आते थे, सुबह जाते थे रात को वापस आते थे, और स्टाफ का जो रवैया था वो बड़ा खराब था। तो कहेंगे ये जब से ये आए हैं गालिब साहब, गालिब इकबाल साहब, तो इन्होंने सारी चीजों को बिल्कुल दुरुस्त करके रख दिया। मैंने कहा मसलन, उन्होंने कहा जी पहले दफ्तर पहले नीचे बेसमेंट में होता था, और वहां पर ना बैठने की सही जगह, ना उठने की, ना स्टाफ के लिए, और खासकर जो लोग जाते थे उनके लिए कोई हाल ही नहीं था, कोई पूछता नहीं था उनको। तो ये कहेंगे कि ये उन्होंने तब्दीली की, फिर उन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया कि उन्होंने सब, मेरे ख्याल यकीनी तौर पर उन्होंने स्टाफ को तंबीह की होगी, ट्रेनिंग दी होगी, उनको बताया होगा कि जनाब मेरे पास जो शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि वो खुद बता, मुझे जो वाकया जो पता चला कि जब पहले दिन जब ये आए तो ये बगैर किसी को बताए हुए लाइन में ये भी खड़े हो गए कि जी मुझे भी पासपोर्ट बनवाना है, देखना है, अगर मुझे एप्लीकेशन वगैरह दे दें। तो उस दौरान में जो इनको झिड़के पड़ी आधे घंटे में अफसरों की तरफ से, आ जाते हैं जी टाई कोट पहन के, अंग्रेजी बोलते हैं, बैठ लाइन में खड़े हो जाओ। तो कहने जी मैंने तो बर्दाश्त किया क्योंकि मैं तजुर्बा करना चाह रहा था कि असल में हो क्या रहा है, और कोई अच्छा आदमी को, खानदानी आदमी को, ट्रेंड आदमी है जिसके दिल में तरस होता है, हमदर्दी होती है, वही चीजें करते रहते हैं ऐसे लोग। तो कहना मैंने वो झिड़के सही, चलो जी अभी आप हमने काम को सीखना है, सही करना है, तो झिड़के तो सुननी पड़ेगी। तो उसके बाद फिर इनको सही पोजीशन पता चली कि यहाँ तो बिल्कुल ही बड़ा गर्क हुआ मामले था। तो उन्होंने ये सारी चीजें की, दुरुस्त की। आज लोग कहते हैं कि भाई वो हमारे ये राजा अली असगर साहब है,
1: जी जी
2: दोस्त हैं, भाई हैं हमारे, और यहाँ पर बहुत सोशल वर्क भी कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा आना जाना रखते हैं लोगों के साथ, जो खासकर नए लोग आते हैं उनकी बड़ी मदद करते हैं, क्योंकि खुद माशाल्लाह काफी इनका काम एस्टैब्लिश है, 30-40 साल से है, बल्कि पाकिस्तान में भी इनका सियासी असर रसूख खासा है, क्योंकि इनके अपने एरिया में अभी ये 2 UCs जीते हैं, बल्कि कई लोग तो इनको ये भी क्या मशवरा दे रहे हैं कि अगले इलेक्शन में भी हिस्सा लें MPA के लिए। تو یہ یہاں پر بہت ان کا اثر رسوخ ہے. کل بھی انہوں نے بہت یہاں 250 لوگوں کا ایک سلسلہ رکھا ہوا تھا اور اس میں دعوت بھی تھی, کھانا بھی تھا, مدعو بھی کیا ہوا تھا لوگوں کو, صحافی بھی تھے اور دوسرے مسلم لیگ کے اور سیدھا سیدھا پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے. تو ان سب کی رائے یہی ہے, مشورہ یہی ہے ان کا کہ بلکہ یہ تو بہت زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ٹرانسفر رک جائے کسی طرح, یہ جائے نہ, کیونکہ 3 سال پورے ہو گئے,
1: ٹینیور پورا ہو گیا.
2: میں بھی آج ملا ہوں, مجھے ان کی شخصیت بہت پیاری لگی, بہت با اخلاق, بہت دیر تک ہمارے ساتھ بیٹھے بھی رہے, باتیں بھی سنی, اور میں نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا کیونکہ ظاہر ہے اس عمر میں چھوٹے بھی ہیں اور ویسے بھی ہماری کیونکہ ذمہ داریاں ہیں حکومت میں, تو میں نے ان کی بہت حوصلہ افزائی بھی کی ہے, بہت حوصلہ افزائی کی ہے ان کے ساتھ. وہ ہمارے جو ایک افسر تھے ان کے ساتھ, وہ بھی جو یہ پاسپورٹ سیکشن کے انچارج ہیں, ان کو بھی میں نے یہی مشورہ دیا کہ جو آپ

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: इस वक्त तो आपके हमारे थिंक टैंक सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इनसे मौसम के हालात जानने की कोशिश करेंगे या डेनमार्क के हालात जानने की कोशिश करेंगे, बीमारियों के हालात जानने की कोशिश करेंगे, सियासी बीमारियों की तरफ जाएंगे। तो शाह साहब आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: आपको, आपकी टीम को, सबको अस्सलामुअलैकुम। और जैसे कि आपने कहा कि मौसम इस वक्त मैं खुद बाहर हूँ और इस वक्त ना सर्दी है ना गर्मी और लोग बाहर निकले हुए हैं, सेलें लगी हुई हैं हर जगह, बच्चों के कपड़ों पे, बड़ों के कपड़ों पे, हर चीज पे सेल लगी हुई है और लोग जो है वो मार्केटों की तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि कोई पता नहीं कि कब ये सेल खत्म हो जाए और कब दोबारा प्राइसेस जो है वो
1: सेलें लगी हुई हैं। लेकिन महंगाई किधर गई?
2: ये महंगाई, ये कौम जो है ये इंसाफ करने में देर नहीं लगाती। यहाँ पे कुछ चीजों में है कि आपको सियासी चीजों में इंसाफ नहीं मिलता या कुछ चीजों में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे खुसूसी तौर पे खाने पीने वाली चीजें, बच्चों के साथ रिलेशन, बूढ़ों के साथ रिलेशन, चीजें जितनी भी हैं वो क्योंकि टैक्स में इनको छूट मिलती है, टैक्स बकायदा इनको सेल लगाने की इजाजत देता है। सिर्फ हमारी दुकानों पे सेल नहीं लगती, वहां पे सेल लगती है जो चीजें पुरानी हो जाती हैं या बिल्कुल ही एंड पे जाने की डेट खत्म होने की होती है तो वो लगा देते हैं कुछ चीजों की सेल, लेकिन महंगाई वहीं पे है। लेकिन डेनिश शॉप्स पे आप चले जाएं तो आपको बिल्कुल हर चीज, आप देखें कि इस वक्त हर कपड़े वाली दुकान, किसी भी सेंटर पे चले जाएं, आपको फॉरनर्स का भी और डेंचो का भी रश नजर आएगा और लोग बढ़ चढ़ के जो है वो अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए कपड़े खरीद रहे हैं। जी राजा साहब,
1: शाह साहब क्या बात है, हमारे जो खाने पीने की चीजें हैं, आपने बताया कि टैक्स से छूट भी मिलती है अगर सेल लगाएं, नुकसान हो जाए, चीज जाया हो जाए, उस पर भी टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी दो नंबरी होती है।
2: वो इसलिए दो नंबरी होती है कि हमने दो डिफरेंट कल्चर में रहना होता है, एक कल्चर हमारा यहाँ का है और एक कल्चर हमारा वहां का है, जो हमारे जिस मुल्क से हम बिलोंग करते हैं। तो जब दोनों मुल्कों के लिए कल्चर के लिए हमने जाना है तो फिर हमें गाड़ियां भी बड़ी चाहिए, हमें अखराजात भी ज्यादा चाहिए, तो उनके लिए जो है वो दो नंबरी करने पर लोग जो है वो मजबूर हो जाते हैं कि वो बताना चाहते हैं कि हम तुमसे ज्यादा जो है वो बड़े हैं और हमारे पास ज्यादा पैसा है, हमारे पास ज्यादा कुवत है, इस तरह की बातें। लेकिन जो डेनिश होते हैं,
1: क्या ये कल्चर और दीन इजाजत देता है इन चीजों की?
2: नहीं जी, इस्लामिक कल्चर इसकी इजाजत नहीं देता। आप देख लेंगे डेनमार्क के अंदर बड़े बड़े डेनिश जो है, आज के दिन जब उनको छुट्टी होती है सैटरडे संडे, ख्वाब हो के ही बड़े ट्रैक्टर हो, मालिक हो, वो अपना गार्डन खुद साफ कर रहे होते हैं, अपने कारें खुद धो रहे होते हैं, अपने घरों में सफाई खुद कर रहे होते हैं, हर एक चीज, इवन अपने टॉयलेट तक वो खुद साफ कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग जो है इस चीज से भरा है, हम लोग समझते हैं कि ये हमारी हद तक है, तो हम मजबूरन ये करते हैं कि अपने ज्यादा से ज्यादा जो अपनी बच्चों या बीवियों को इस चीज पे मजबूर करते हैं कि आप करें। लेकिन जब हमें कहीं जाना है, कहीं हम कोई शादी ब्याह या कोई कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं तो वहां पे हमें ये देखना होता है कि भाई लोग हमें हमारी गाड़ियों के हिसाब से, हमारे कपड़ों के हिसाब से हमें जाने। तो ये चीजें जो है ये इस्लामी तालीम और ये टेनिश कल्चर जो है इसके अंदर
1: से कमतरी में आती हैं।
2: जी बिल्कुल, आप देखें कि यहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, सूट पहना हुआ है मामूली सा, नीचे टेनिस शूज पहने होते हैं। आप ये देखिए कि हमारी वजीर आजम आती है या कोई मिनिस्टर आता है तो वहां पे 5-10 आदमी बैठे होते हैं, या वो ऑन टाइम आते हैं, बिल्कुल ऑन टाइम आते हैं, वो ये इंतजार नहीं करते कि साहब आएंगे तो बदे फुल हो जाए फिर हम साहब को बुलाएंगे। तो यहाँ क्या होता है, हमारे कल्चर में क्या होता है, यहाँ पे ہم نے آج تک اس کلچر سے ڈینش کلچر سے یہ بات نہیں سیکھی جو ہمارے اسلامی کلچر میں ہے کہ آپ جب لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں تو سب کو برابر کا درجہ دے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا کون ہے اس کو آگے بٹھائے, چھوٹا کون ہے اس کو پیچھے بٹھائے, پھر صاحب کا انتظار کرو, گھنٹوں لگ جاتے ہیں کہ بھائی جو بھی چیف گیسٹ ہے وہ کس وقت آئے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اپنے آپ کو ایک نئے کلچر کی شکل دے دی ہے. جی راجہ صاحب,
1: تو شاہ صاحب جب آپ 70-71 میں آئے کہ آئے تھے تو یہی کلچر تھا؟
2: بالکل یہ کلچر نہیں تھا, بالکل ہر چیز جو تھی وہ اعتدال پہ تھی. یہاں پہ لوگوں کو ان کے نام سے بلایا جاتا تھا, کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا یہ کون سے فرقے سے تعلق رکھتا ہے, کون سی مسجد میں یہ نماز پڑھتا ہے, کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. تو یہاں پہ ایک اس وقت ایک بالکل ہی علیحدہ کلچر تھا, اور ہم نے ڈنمارک کے کلچر کو فوراً اپنا کلچر سمجھ کے اپنا لیا. اب یہاں پہ پرابلم یہ آتی ہے کہ کیا ہم اس کلچر میں اپنی اولاد کو بھیجنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو. اور ہماری اولادیں جو ہیں ان کو یہ سکھلایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے قوم میں جانا ہے تو آپ کے پاس ٹیٹرا لینڈ کروزر ہونی چاہیے, بڑی گاڑی ہونی چاہیے, وہاں کو آپ کرائے پہ لیں جس طریقے سے بھی لیں. تو یہاں پہ بھی ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ فلانی شادی.
1: شاہ صاحب ہم دوسروں کی بات کر رہے ہیں, تو آپ چھٹیوں پہ جائیں گے تو آپ کے پاس کون سی لینڈ کروزر ہوگی؟
2: میرے پاس چنچلی ہوگی, میرے پاس ڈائیو گاڑی ہوگی, بس میں تو بالکل جیسے جاتا ہوں تو میں وہاں گاڑیوں کو میں.
1: شاہ صاحب آپ نے بات ذکر کیا, آپ نے تلبوز کا سیل کا ذکر کیا, تو آج کل جو ٹیکسیوں پر سیل لگی ہوئی ہے جو ہے اتنے روٹ پہ جائیں فلاں کمپنی کی جائیں تو دو جو ہے وہ 50% ہے, 40% ہے, 80% ہے, کھانے کی چھوٹ ملتی ہے, تو شاہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟
2: دیکھیں جی جو ٹیکسیوں کی چھوٹ ہے تو ٹیکسی سیلس کے جو ہے یہ بالکل ہی ختم ہو کے رہ گئی ہے. اب تو یہ قسم کی فیکٹریاں بن گئی ہیں, بڑی بڑی سیلس کیپ جو ہیں انہوں نے گاڑیاں خرید لی ہیں. اب وہ جو ہیں وہ خود ہی اپنی مرضی سے یہ چیز رکھتے ہیں کہ کیا وہ اپنا یہ جو.
1: شاہ صاحب اس پر ہم تفصیل گفتگو کریں گے پارٹ ٹو میں.
2: ٹھیک ہے, اللہ حافظ.
1: سامعین ناظرین, یہ تھے سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب جو کہ تھنک ٹینک ہے. یہ پارٹ ون تھا, تو پارٹ ٹو کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ آئیں گے.
3: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। सामाइन, आज का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामाइन, हमेशा की तरह हम कोशिश करते हैं कि जो भी ताज़ा तरीन मालूमात हों आपके साथ शेयर करें, ताकि हमें भी पता चलता रहे, आपको भी पता चलता रहे कि क्या हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप आए दिन अदार आपकी आवाज़ पर बाकी मीडिया पर भी सुनते रहते हैं, किसी तारफ़ के मोहताज हैं, अब्बास रिज़वी साहब हमारे साथ हैं। अब्बास साहब खुश आमदीद।
1: शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।
0: अब्बास साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद का इफ्तिताह हुआ है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
1: जी, पिछले दिनों में यहाँ पर नागो के इलाके में वीवे वाई पर एक मस्जिद इमाम अली का इफ्तिताह हुआ है, जो कि एक नहायत आलाशान खूबसूरत मस्जिद होने के अलावा एक रवायती मस्जिद की शक्ल सूरत रखती है, जिसमें गुम्बद भी है और मीनार भी है, और उसके बाहर जो मेहराब बनी हुई है, उसके बाहर का जो गेट है और एंट्रेंस है, वो एक नहायत समझें कि खूबसूरत मस्जिद से जैसे मस्जिद के एंट्रेंस होती रहती है। तो उसमें बहुत सारी नक्शकारी हुई है और बहुत सारे काम हुए हैं, और अंदरून मस्जिद भी जो है एक बहुत बड़ा गुंबद है और रोशनी का बड़ा अच्छा इंतजाम है, बड़ी बड़ी खिड़कियां वहां पर, और फर्स्ट फ्लोर पर उन्होंने जो है मुख्तलिफ किस्म के हॉल्स और ऐसी जगहों का उन्होंने इंतजाम कर रखा है, जहाँ पर कि वो मुख्तलिफ लोगों के सवालात जरूर एक मुसलमान, और खसूसन उसी दौरान में पूछा गया था कि अगर यहाँ पर खवातीन आएं और वो मुसलमान ना हो तो क्या उनके सर पर हजाब होना जरूरी है, इस किस्म की बहुत सारी बातें पूछी थी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो सिर्फ ये है कि आप जो है एक ऐसे तरीके से अपनी सतर पोशी करें कि जिसमें कि मस्जिद की बेहरमती ना हो तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, और जिस किस्म के भी सवाल आपके जहन में हों यहाँ पर आप पेश करें। मस्जिद बनने में काफी चार मरहल साल का वक्त गुजर गया है। दरअसल यहाँ पर रस्सा कशी होती रही है, क्योंकि मस्जिद के शुरू के आगाज में ही किसी ने अफवाहें फैला दी थी कि इस मस्जिद की सरमायाकारी के पीछे ईरान का हाथ है, और उस जमाने में ईरान आपको जैसे पता है जेर आताब था, और बहुत सारी जो है कुवतें कोशिश कर रही थी कि ईरान का किसी किस्म का यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस ना हो, लेकिन बाद में पता चला कि मस्जिद की तामीर में जितनी भी डोनेशंस हो रही हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की हैं, और उसमें ईरानी हुकूमत का कोई ऐसा अमल दखल जो है शामिल नहीं। तो चार साल की जो है डोनेशंस के बाद लोगों की फराख दिलाना जो है डोनेशंस के बाद ये मस्जिद क़याम में आई, और मुझे भी उसको देखने का शर्फ हासिल हुआ। मैं कोशिश करता हूँ कि जिस भी मस्जिद का इफ्तिताह हो उसके इफ्तिताह में चाहे वो मुझे बुलाएं या ना बुलाएं मैं जरूर जाऊँ। इस दफ़ा सुबह के वक्त में उन्होंने VIPs को बुलाया था, लेकिन हमेशा की तरह इस दफ़ा भी मुझे हर मस्जिद के इफ्तिताह में इग्नोर किया गया, मुझे नहीं बुलाया। लेकिन मैंने शाम में जब आम पब्लिक के लिए मस्जिद के दरवाजे खुले तो मैं उसमें गया, और मैंने जाकर मस्जिद में मस्जिद को देखा, उसके मुख्तलिफ जो थे फैसिलिटीज उनको देखा, जो वहाँ पर कोशिश की कि जो इमाम साहिबान हैं या जो वहाँ पर लर्नड लोग हैं उनसे बात हो सके, लेकिन जो मेरा ख्याल है उनके बड़े इमाम जो हैं वो मौजूद नहीं थे, जिनको ये लोग शेख कहते हैं, लेकिन एक यंग इमाम थे, उनका नाम निसार है, उन्होंने बहुत सारे ऑडिटोरियम में, बहुत बड़े ऑडिटोरियम में लोगों से खिताब किया और उनके सवालात के जवाब दिया। तो मैंने उनसे यही सवाल किया था कि मस्जिद के बारे में डेनिश मेनस्ट्रीम का ये ख्याल होता है कि यहाँ पर अब जो है लोग आकर वो रेडिकलाइज हो जाएंगे और हमारे डेनिश माशरे के खिलाफ काम करेंगे, तो आप लोगों का क्या एजेंडा है, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसने उनके नौजवान रिप्रेजेंटेटिव जो थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि हम सबसे पहले यहाँ के लोगों को जो भी हमारे पास आएगा उसमें दर्ज देंगे कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखे, अपनी नींद मुकम्मल करे, अपने इर्द गिर्द के लोगों को उनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार रखे या ऐसा रवैया उनके साथ रखे जो कि एक अच्छा इंसान दूसरे इंसान के साथ रख सकता है। ये सारी चीज़ें उसको मिलकर जो है सरप्लस देंगी, और जब इंसान में सरप्लस एनर्जी होती है तो उसको अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, और उसके बाद जो है हम यहाँ अपनी जो तालीमात होंगी उसमें भी हम आहंगी अखुवत भाईचारे का दर्श देते हैं। इस्लाम का मकसद ही बुनियादी यही है कि चाहे वो किसी मुआशरे में इस्लाम का वजूद हो तो वहाँ पर वो अमन और भाईचारे का माहौल पैदा करे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम यंगस्टर्स को मतलब किसी तरीके से रेडिकलाइज होने का जो है ना बहाना जो है वो ना देखे। उसके बाद मैं थोड़ा वहां पर घूमा, चंद तस्वीर नहीं, उसके बाद मैं आ गया। उसके बाद उन्होंने ये सिस्टम रखा है, मुझे बाद में किसी ने बताया था कि उन्होंने ओपन सेशन रखे हैं, दिन मुझे याद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है जुमे की बात हो रही थी, जुमेरात की बात हो रही थी। तो उस दौरान में कोई भी चाहे किसी अकीदे से ताल्लुक रखता हो इंसान, वो आए, उसके जहन में कुछ ख्याल हो, चाहे वो शरा के बारे में हो, चाहे वो किसी और मतलब सिखा के बारे में हो, किसी और चीज के बारे में हो, तो वहाँ पर बड़ी ओपनली जो है ना बात हो सकती है। और जो मैंने लोग देखे वहाँ पर, जितने भी इंतजामिया में मुझे लोग नजर आए हैं, वो सब के सब यंगस्टर्स थे। और जो एक चीज मुझे जाती तौर पर अच्छी लगी कि मैंने दूसरी मस्जिद जो है वहाँ पर अपनी क्या उसका नाम है जो पत्थर वाली मस्जिद है, उसमें भी देखा था कि उन्होंने लोग ऐसे रखे हैं कि जो बात कर सकते हैं, डेनिश मिजाज को समझते हैं, डेनिश जुबान पर अबू रखते हैं। तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं कि अगर हमने इस्लाम का सही और मुस्बत आसर देना है तो हम यहाँ की मेन स्ट्रीम के साथ जो है हमारा डायलॉग रहे और हम उनकी किसी भी बात का जवाब दे सकें और उनको जो भी बात हो खोल कर बता सकें। क्योंकि अमूमन ये होता है कि आधी बात होती है और आधी जो है वो गुम हो जाती है, जिसमें कि शुभात पैदा होते हैं और गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। तो जिसको कहते हैं ना तबू होना, कोई ऐसा कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिस पर बात ना हो सके। तो मैं उससे देखकर मुतमिन हूँ, आप खुदा करे कि ऐसा ही हो वहाँ पर जो काम हो और जो मस्जिद अपने फराइज पूरा करना चाहती है वो इसी पर राय में हो कि वहाँ पर लोग इस्लाम के बारे में एक मुस्बत जो है तासर हासिल कर सकें।
0: अब्बास साहब जी, बड़ी अच्छी कोशिश है। देखें, अब मस्जिदें बनना शुरू हो गई, उनको टाइटल भी मस्जिद का मिल गया है, तो अब मुसलमानों को भी हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ नमाज पढ़ने की आज़ादी है, रोज़ा रखने की आज़ादी है, ईद करने की आज़ादी है, हज करने की आज़ादी है, उमरा करने के लिए आप जा सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर रहा, कोई आपको रोक नहीं रहा। तो फिर मुसलमानों की भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं।
1: हाँ, वो सबसे बड़ी तो जिम्मेदारी मुसलमान पर यही है कि वो इस्लाम की सही जो है ना तस्वीर पेश करे और बताया कि मुसलमान जो है किसी भी माशरे में जहाँ पर कि उसको आज़ादी है नफ्स और उसको आज़ादी गुफ्तार, आज़ादी तकरीर, आज़ादी तहरीर है, वो वहाँ पर उसकी उसके हदूद में रहकर बाकायदा न सिर्फ इंटीग्रेट हो सकता है बल्कि वहाँ पर उस जो मेन स्ट्रीम है या मुल्क जो है उसकी तामीर में उस पर जो है वो एक
0: बस। अब जो पाकिस्तानी नसाद जो है वो उज़्मा थी अल्टरनेटिव पार्टी में, उन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, वोट्स भी अच्छे लिए, लेकिन अब खबरों में है कि उन्होंने अपनी पार्टी को खैराबाद कह दिया, इसमें कोई सदाकत है?
1: ये बात जरूर है क्योंकि मैंने कल फेसबुक पर पढ़ी और उन्होंने अपनी फेसबुक पर भी इसको पोस्ट किया था कि मैं मतलब इस अल्टरनेटिव पार्टी से मैं इसकी रुकनियत खत्म कर रही हूँ। और उन्होंने जवाब ये पेश किया है कि इनके एक बयान को गलत पैराय में तशहीर दी गई और उसके बाद उन पर पाबंदी आयद कर दी गई कि वो उसके बारे में बात ना करें, बल्कि उन्हें कहा कि आप खामोश हो जाएं। और इस वजह से इलेक्शन के जो चंद हफ्ते थे उसमें वो सही कंपेनिंग नहीं कर पाई।
0: अब्बास साहब, आप सारा साल एक्टिव रहते हैं, लोगों के सवालों के जवाब भी देते रहते हैं, तो हमारे लोग महासवा एक आध को छोड़कर जब पार्टी को छोड़ते हैं तो किसी बंदे से, किसी वोटर सपोर्टर से मशवरा नहीं करते?
1: ये मुझे नहीं पता कि उज़्मा ने इसमें इस बारे में किसी से कंसल्ट किया है, ये कंसल्टेशन की या नहीं की, लेकिन जाहिर है कि उनके जो करीबी लोग थे या जिनके साथ उन्होंने उनके वर्किंग रिलेशनशिप थे उनके साथ उन्होंने बात की होगी, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तानी कम्युनिटी का ताल्लुक है उसके बारे में मुझे पता नहीं कि उन्होंने किसी से मशवरा किया या नहीं किया। तो ये एक अच्छी बात है, कहते हैं कि अगर इंसान किसी शशपंच के आलम में हो तो उसके लिए बहुत बेहतर मशवरा यही हो सकता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी से कंसल्ट कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात होती है।
0: अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप काफी मसरूफ हैं, इंशाल्लाह आपको सही रहेगा आपसे।
1: जरूर शुक्रिया, और मेरी तरफ से खुदा हाफिज,
0: खुदा हाफिज तमाम
1: सामईन की खिदमत में सलामत।
0: सामाइन ये थे अब्बास रिजवी साहब जो कि काफ़ी मसरूफ थे, अपनी मसरूफियात में से उन्होंने चूँकि मीटिंग पे जा रहे थे तो जल्दी जल्दी में उनसे बातें की हैं।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

उस वक्त की। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: मुसलमान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मुसलमान, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मुसलमान इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मौजूद सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामईन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पे मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए, मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है, और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किया है। लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूल एंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वजीर आज़म साहब ने की, एक और ज्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वजीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। मुआज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियां इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के खिलाफ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने हॉलैंड में फिल्म बनाई थी और जिस्म पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को हॉलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के खिलाफ बोलती रही। फिर इस वजीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है? ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाब बनाकर एक इशू बनाकर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाब के तहत ये लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई? ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीजें इंट्रोड्यूस कराई और इनको घर बैठे बैठे इतनी बिजनेस मिल गई कि ये लोग पागल हो गए। और पिया कियास्को कहती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, इन सब मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में भेज देते हैं, और अगर इन मुसलमानों के मुल्कों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था जो मिलियन एंड मिलियन के हिसाब से आप लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो पिया कियास्को से पूछे क्या ये सब चीज़ें डेंस के फोल्क पार्टी वाले खरीदेंगे? पिया कियास्को को बता दे डेनमार्क ने जो तरक्की की है وہ ڈنس کے فال کے فارٹی سے نہیں کیے بلکہ انہی انواندا لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائندہ باد.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज।
1: लाख पर्दों में रहूं, भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

0: म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज आपकी आवाज
1: हफीज होशियारपुरी।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: गजल पेशे खिदमत है हसरत मुहानी की।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पे दी गई है, जो थके थके से तो हौसले।